0: मातरम
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य

1.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, सक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बनने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। ये निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो श्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था

0: मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता है, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

Washington. परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुखी है। ये कथन श्री रामकृष्ण परमहंस का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 313। इसमें आज आप सुनेंगे लंका कांड। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं, इसका भाग एक। कलाकार गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। प्रस्तुति छाया गांगुली की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर। हम हैं राही प्यार के। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8:00 और 8:15 पर। सुनिए त्रिवेणी में आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2:00 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आज आप सुनेंगे नए गीत। इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। ये केंद्रित होगा संगीतकार राम लक्ष्मण पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। सुबह 11:00 सुनिए रंग तरंग। 12:00 हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:00 विविध भारती से, और श्रोता फेसबुक कमेंट्स द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। दोपहर 2:15 पर सुनिए दोपहर समाचार, और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दिन में 3:00 और दोपहर बाद 4:00 सुनिए पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। साहित्यकार लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ से ममता सिंह की बातचीत आज आप सुनेंगे। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह, क्षमा कीजिए, शाम 5:30 से लेकर शाम 6:30 तक। इसी बीच 6:00 सुनिए हिंदी में समाचार। शाम का झरोखा होगा 6:30 पर। सुनेंगे आप जानकारी आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी 6:35 पर संध्या रंजन। शाम 7:00 सुनिए जयमाला कार्यक्रम, और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग अनुराग।

हवा महल में सुनिए नाटिका पर्दाफाश, लेखन कुंभेश श्रीवास्तव का, निर्देशन पुरुषोत्तम दार्भेकर। कार्यक्रम का समय रात्रि 8 बजे। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे।

रात्रि का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार राम लक्ष्मण पर. आलेख और स्वर प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले. छायागीत कार्यक्रम सुनना ना भूलें रात्रि 10 बजे. आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी. रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग. ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की. ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 313. आज इसमें आप सुनेंगे लंका कांड. आइए सुनवाते हैं.

हे राक्षस राज, तू बड़ा अभिमानी है। मैं तो रघुनाथ के सेवक का सेवक हूँ। यदि प्रभु के अपमान का विचार न होता तो मैं तुझे धरती पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरी स्त्रियों सहित सीता जी को यहाँ से ले जाता, किंतु ऐसा करना मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो जीते जी मृतक के समान है, उसे मारने से क्या लाभ? उल्टी दिशा में चलने वाले कामी, कंजूस, मूर्ख, दरिद्र, बदनाम, अत्यंत वृद्ध, चिरंतन रोगी, हर पल क्रोधी, भगवत विद्रोही, वेद और संतों का विरोध करने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, पर निंदक और महापापी, ये 14 प्रकार के प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान होते हैं। बस यही सोचकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तू अब ऐसे वचन न बोल जिससे मेरा क्रोध और भड़क उठे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगता है। सोचता है, इस वानर का काल आ पहुंचा है। श्री राम के प्रति अवमानना के शब्द सुनकर अंगद ने दांत किटकिटाकर घोर गर्जन के साथ अपने हाथ धरती पर पटके तो भूचाल सा आ गया। रावण के सभासद एक दूसरे पर गिर पड़े। रावण के जो मुकुट धरती पर गिर पड़े, उन्हें अंगद ने उठाकर उस दिशा में फेंक दिया जिधर श्री राम थे।

0: आज से हम संगीत श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है ख्याल और तराने की विशेषताएं। शास्त्रीय संगीत की इन शैलियों पर सौदाहरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। आज हम आपको ख्याल के बारे में बताएंगे। ख्याल का अर्थ है चिंतन, ध्यान। योगी, ज्ञानी, ध्यानी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं तो पहले उस आकार को मन मस्तिष्क में बैठा कर फिर चिंतन करते हैं, क्योंकि केवल मेडिटेशन करना कोरी कल्पना है। पहले इमेज बनाकर फिर इमेजिनेशन करने के बाद मेडिटेशन करने की प्रणाली है। यही ख्याल प्रणाली अर्थात चिंतन प्रणाली का स्वरूप है। राग के स्वरूप की आउटलाइन बनाकर बढ़त करते हुए राग रंग भर के उस आकार को साकार करना ही राग को साकार करना है। इस प्रकार चिंतन से चयन करके स्वरों के द्वारा चयनदारी उत्पन्न करना ही ख्याल है। स्वर साधना ईश्वर की वह आराधना उपासना है जिससे वासना दूर होती है। तो प्रस्तुत है मेरी स्वरचित बंदिश राग जनसम्मोहिनी में।

ख्याल गायन में हारमोनियस सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। एक एक स्वर की क्रमबद्ध बढ़त करने से माधुर्य उत्पन्न होता है। एक एक स्वर का स्वाद लेना चाहिए, उसका लुत्फ उठाना चाहिए। गायन में बेतरतीब भी नहीं होनी चाहिए। क्रम व राग की प्रकृति, चलन एवं उसके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। गायन में उद्दंडता या व्यतिक्रम होने पर चिंतन अर्थात ख्याल बेख्याल होने लगता है। जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक को नागरिकता के नियमों का बोध होना व पालन करना जरूरी है, उसी प्रकार शास्त्रीय गायन की दुनिया में सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। बढ़ी हुई लय में ख्याल गायन में दो आवृत्ति में बंदिश पूरी करनी होती है, किंतु इस गायकी की विशेषता यह है कि विलंबित लय में एक ही बार में पूरी रचना और राग का सौंदर्य मुखरित होने लगता है। तो सुनिए राग नटभैरव में यह बंदिश जो झूमरा ताल में निबद्ध है।

ख्याल विलंबित लय मध्य लय तथा द्रुत लय में गाए जाते हैं। विलंबित में झूमरा एक ताल, आड़ा चौताल, तिलवाड़ा, तीन ताल, रूपक ताल आदि आदि तालों में गाए जाते हैं। मध्य लय एवं द्रुत लय में तीन ताल, एक ताल, आड़ा चौताल, रूपक, सूल ताल, झपताल आदि तालों में प्रायः गाए जाते हैं। किंतु इंदौर घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खां विलंबित ख्याल प्रायः झूमरा ताल में ही गाते थे। यही क्रम स्वर्गीय उस्ताद बहरे अब्दुल वहीद खान साहब का अमीर खान से पूर्व रहा। तो सुनिए राग दरबारी की यह बंदिश, जिसमें एक ढंग अपना ही रंग लिए हुए।

0: ताल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में आज आपने इस श्रृंखला की पहली कड़ी सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर इनका साथ दिया था पुरुषोत्तम वालावलकर ने। तबले पर संगत की थी ओमकार गुलवाड़ी ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बड़ी बहन इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और प्रेम लता ने। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा है, हुस्नलाल भगतराम का संगीत।

रमेश शास्त्री का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, जिसे संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था बरसात।

अभी आपने ही सुना चांदनी रात फिल्म का गीत अमीर बाई कर्नाटकी और सादत की आवाजों में, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म आन से, आवाज मोहम्मद रफी की। शकील बदायूनी ने इसे लिखा है और धुन बनाई है नौशाद ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सात बजकर 30 मिनट पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:15 पर सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 पर प्रसारित होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इसके अंतर्गत आज की बात में प्रदूषण हटाओ ओजोन परत बचाओ विश्व ओजोन दिवस। साथ ही डॉक्टर शिवांश कुमार से भेंटवार्ता होगी, भारत देश को क्या हासिल हुआ ब्रिक्स से। नौ बजे आपके संदेश आपके गीत 9:30 पर सजीव फोनिंग हेलो अयोध्या और 1 बजे सुनिएगा फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग 12:30 और गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि का समय होगा 2:00।

दोपहर 2:30 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना। इसके अंतर्गत चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी दिवस पर। साथ ही आकर्षण होगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुरमाला। शाम 5:00 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस और दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। साथ ही खेल संसार गीत के अलावा व्यक्ति विशेष में जानिएगा MS सुबुलक्ष्मी के बारे में। शाम 5:30 पर लोक संगीत, 6:10 पर शाम सुहानी और 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा 6:45 पर। इसके अंतर्गत चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड पर। साथ ही लोकगीत, बाजार भाव, मौसम का हाल के अतिरिक्त डॉक्टर विवेक सिंह से भेंटवार्ता होगी। खरीफ दलहनी फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग, कारण, लक्षण एवं बचाव। रात्रि 8:00 हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे जापान में हो रहे एशियन गेम्स 2026 पर विशेष प्रसारण। रात्रि 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर सुनिएगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का लिया फैसला। लोगों के बीच यूपीआई से लेन देन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा, छोटे व्यापारियों के लिए भी 2000 रुपए तक का लेन देन रहेगा निःशुल्क। और प्रदेश में शिक्षकों के 15012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कल यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है।
4: इस परियोजना का लगभग 90% वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और शेष 10% राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में समझौते को जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जहां 1562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल विद्युत भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट में साल के 11 महीने एथेनॉल बनाने का काम होगा।
5: 19 वर्ष पहले रेल शुगर फैक्ट्री बंद होती, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इथेनॉल प्लांट जो गन्ने से मक्का और धान, गन्ना समाप्त होने के बाद मक्का और धान से इथेनॉल बनाया जाएगा। ये प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। जो भी इथेनॉल की मात्रा 3,96,00,000 लीटर एक साल में इथेनॉल बनेगा।
3: मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिपरिषद ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रदेश के पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए

0: की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह करीब 3 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि जंगल नकहा नंबर 2 में 300 लोगों की क्षमता वाला ये कल्याण मंडपम 2 तल में बनाया गया है। मुख्यमंत्री आज ही आईएमए के चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर प्रदेश भर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक कर इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हापुड़ जिले के प्रभारी मंत्री के वी मलिक ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर 1 माह तक चलने वाले इस अभियान की कार्ययोजना के बारे में चर्चा की। शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों सेवा संकल्प अभियान के सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कराने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है।
1: सेवा संकल्प के अभियान को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन और संगठन के समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार की है। 17 सितम्बर को शाहजहांपुर जनपद में रक्तदान का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद सबसे पहले लगातार 17 अक्टूबर तक बहुत सारे अभियानों के माध्यम से कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थी को देने का काम भी शुरू होगा।
0: प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी।
2: मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए निर्माण कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। साथ ही निर्माण के अंतिम भुगतान का ऑडिट भी थर्ड पार्टी से कराने का फैसला लिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि वहां अब राम कथा संग्रहालय का काम शुरू होगा।
3: संग्रहालय का जो सबसे बड़ा कार्य अब शुरुआत होगी आने वाले 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका हार्डवेयर होगा सॉफ्टवेयर होगा वह बनाना है और उसको अंतिम रूप दिया जाए। अनुमान कि टेंडर फाइनलाइज जो कि अक्टूबर के अंत तक कदाचित हो पाएगा उसके बाद लगभग 6 महीने लगेंगे गैलरी को कम्प्लीट करने में।
2: प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों और बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक शहरी के 11,508 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग के 2,607 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में

0: कल अपनी किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव भी साझा किए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता है। ये कार्रवाई भारत में चल रहे कैब और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफार्म की सेक्टर वाइड जांच के बाद की गई है। जांच के दौरान CCPA ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिथम कन्फर्म शेमिंग जैसा था, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए 2023 के दिशा निर्देशों के तहत पहचाना गया डार्क पैटर्न है। इसमें उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होने पर राइड खोने का डर पैदा करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा यह कदम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने PRD जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का लिया फैसला। लोगों के बीच UPI से लेन देन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा, छोटे व्यापारियों के लिए भी 2,000 रुपए तक का लेन देन रहेगा निःशुल्क। और प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
7: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: कार्यक्रम अमृत कलश में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश जी की आरती से।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अभी ये सुनिए संजीव अभ्यंकर की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बात।
3: टोल कर ही नहीं, इनकर भी मिलता है,
4: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। FM 101.9 MHz प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभाग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। वही व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में एनएसजी की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य

0: उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
5: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी फिर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुफ्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन

0: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ति के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदले का भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार

0: प्रभात का यंग समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: रफ्तार रफ्तार नजर
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सभी का स्वागत है।
5: देखता हूँ,
1: आइए सबसे पहले सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।
5: ना बना ले मुझे, दिल में बसा ले मुझे, तू है मेरी रूहे सफर, रफ्ता रफ्ता नजर हो गई बेखबर।

आकाशवाणी अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा। दिनांक 20 सितंबर 2026 रविवार को प्रातः 8:30 से 9:30 तक आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से सुप्रसिद्ध सूर्य कुंड मेले तथा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसको आप 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और अपने मोबाइल सेट पर न्यूज ऑन AIR और वेब OTT ऐप पर सुन सकेंगे। तो आकाशवाणी अयोध्या के इस अनूठे कार्यक्रम से जुड़े और भगवान सूर्य को समर्पित लोक संस्कृति के इस महान पर्व पर रेडियो के माध्यम से पुण्य लाभ प्राप्त करें।

0: मंगलवार, गुरुवार और शनिवार
1: शाम 6:50 से।
2: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
3: प्रणाम अयोध्या।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: क्या आपको तेज बुखार है? इसे नजरअंदाज ना करें।
6: तेज बुखार शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सही जांच और इलाज के लिए मिलें
5: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: मछली मंडी, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या।
5: फोन करें 6386907006।
2: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ शोभित द्विवेदी। दोस्तों, आज विश्व ओजोन दिवस है। यह दिवस हर साल आज ही के दिन 16 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली ओजोन परत के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ओजोन गैस की परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, या एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यदि पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो इससे मनुष्यों में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और पेड़ पौधों व समुद्री जीवों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान प्रदूषण से होता है। लगातार प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप कर इंसान ने खुद को प्रकृति के सामने लखड़ा किया, जहां प्रकृति उसका विनाश कर सकती है। जंगलों वनों की कटाई कर असंतुलन पैदा किया जा रहा है। गाड़ियों ने हवा को प्रदूषित कर रखा है, तो वहीं उस जल को भी इंसान ने प्रदूषित कर रखा है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन संचालित होता है। दिनों दिन बढ़ रही औद्योगिक गतिविधियों के कारण आज हमारे जीवन को बचाने वाली ओजोन परत को खतरा पैदा हो गया है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक समझौते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। इसी समझौते की याद में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1994 में हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।

0: अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता, भारत देश को क्या हासिल हुआ ब्रिक्स से। डॉक्टर शिवांश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से बातचीत कर रही हैं दिशा श्रीवास्तव।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिवांश सर। सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आज हमारा विषय है कि भारत देश को क्या हासिल हुआ ब्रिक्स से। सबसे पहले तो ये बताइए, आखिर ब्रिक्स है क्या?
2: ब्रिक्स को दुनिया के प्रमुख उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय और सहयोगी समूह कहा जाता है। इसका नाम इसके शुरुआती सदस्य देशों के अंग्रेजी के पहले अक्षरों से मिलकर बना है, जैसे बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। वर्तमान में इन देशों के अलावा 6 और पूर्ण सदस्य इसके राष्ट्र हैं, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिनका नाम जिम ओ'नील द्वारा इसको दिया गया। ब्रिक्स की औपचारिक शुरुआत वैसे तो 2006 में संयुक्त राज्य महासभा, जिसको हम UNGA भी बोलते हैं, उसके बैठक के दौरान न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में हुई। इसका जो पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन था 16 जून 2009 को रूस के शहर में आयोजित हुआ था। वर्ष 2006 में ब्रिक्स का जो विस्तार हुआ, आखिर में 2009 में जब इसमें साउथ अफ्रीका का जुड़ा हुआ, तब ये पूरा नाम इसका ब्रिक्स कहलाया।
1: जैसे हर चीज के कुछ प्रमुख स्तंभ होते हैं, उसी तरह ब्रिक्स सहयोग का भी कुछ प्रमुख स्तंभ होगा, तो वो कौन कौन से हैं?
2: ब्रिक्स की प्रमुख गतिविधियां हैं, उसमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी परामर्श, आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग, सांस्कृतिक व जन से जन संपर्क भी इसी में ही आता है। जो सारी बैठकें वित्त की शिखर सम्मेलन आयोजित की जाती हैं, ये इसी के इर्द गिर्द आयोजित की जाती हैं।
1: वैसे आज के समय में ब्रिक्स का महत्व क्या है?
2: ब्रिक्स वैसे तो गैर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, उसका साझा लक्ष्य आर्थिक और राजनीतिक प्रयासों का समन्वय है। ब्रिक्स को आमतौर पे दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन, उभरते बाजार समन्वय, बहुपक्षवाद एवं ग्लोबल साउथ के साथ पहचाना जाता है। जनवरी 2024 में इसमें कई सारे और राष्ट्रों का समूह और भी आया जुड़ने के लिए, तो इसका विस्तार हो गया। वो राष्ट्र मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE इसमें शामिल हो गए। अभी हाल ही में एक देश और भी शामिल हुआ है इसमें 2025 में, इंडोनेशिया। इस समय तो वर्तमान में ये समूह बढ़ती राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय शक्ति को दिखाता है। समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1/4 से अधिक का योगदान है और विश्व की लगभग आधी आबादी इसी ब्रिक्स में ही है।
1: और आपने जैसे बताया कि ये नए देश कुछ जुड़े हैं, जिनमें मिस्र हो गया और भी कई सारे हैं, तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है और इनके जुड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा?
2: देखिए, वर्तमान में मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, जिसमें अमेरिका और ईरान का युद्ध है। उसके अलावा आपस में भी ईरान, सऊदी और UAE को लेकर जो युद्ध का एक माहौल रहता है, तो इन सब देशों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद एक कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयासों के चलते इससे दुनिया को निजात मिल सकती है। और बड़ी आबादी जनसंख्या वाले देश जैसे कि चीन हो गया, भारत और इंडोनेशिया हो गया, तो ये बड़ी आबादी वाले जो देश एक साथ आते हैं, तो इसका विस्तार स्वतः अपने आप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, ग्लोबल साउथ के भी नाम से जानते हैं। और सामने जो ब्रिक्स के सामने जो देश हैं, जिनका वर्ल्ड बैंक है या जिनको आप बोलते हो अमेरिका, या जो सबसे पहले शुरुआत में अमेरिका के सामने कभी USSR होता था, तो अब इन दोनों से दुनिया छुटकारा पा चुकी है और एक नया आयाम ढूंढ रही है या नया विकल्प ढूंढ रही है। तो ब्रिक्स ऐसे देशों का समूह है जो कारोबार करना चाहता है, जो तमाम और रास्ते तलाशना चाहता है, सभी देशों का सम्मान करे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहता है सारी दुनिया।
1: अभी हाल ही में 12-13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स सम्मेलन हमारे भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, तो इससे भारत को क्या हासिल हुआ?
2: ये तो भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल था कि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी प्रदान की। इस बार भारत में यह जो सम्मेलन था, उसका मुख्य विषय था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। पश्चिम एशिया पे तनाव पे चिंता हुई, एक तरफा टैरिफ का विरोध हुआ, संघर्ष निवारण और कूटनीति पे चर्चा हुई, समाधान और इकोसिस्टम की बात कही। जैसा कि आप जानते हैं, वैश्विक समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में

0: जिक्र किया कि किस प्रकार से एक समाधान का इकोसिस्टम बनाया जाएगा।
1: बिल्कुल, तो जैसे डॉलर की जब जगह लेने की बात आती है तो क्या ब्रिक्स देशों में से कोई ऐसी मुद्रा है जो उसकी जगह ले सकती है?
0: अभी जो नई दिल्ली घोषणा पत्र आया है 12 और 13 सितंबर 2026 को, उसमें इसकी कोई औपचारिक बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक बड़ा ब्रिक्स समूह जो है वो ये चाहता है कि डॉलर पर निर्भरता कम हो, तो उसके लिए उन्होंने किसी का विरोध ना करके सीधे बोला है कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार होगा। और आप जानते हैं भारत की यूपीआई पूरे विश्व में प्रतिष्ठित है, यूपीआई और डिजिटल करेंसी का विकल्प भी उनके सामने रखा गया है, तो कॉमन करेंसी का कोई औपचारिक शुरुआत तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डॉलर पर निर्भरता घटाने की बात कही गई है।
1: बिल्कुल, यानी काफी इसका अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आप ब्रिक्स जैसे समूह को किस तरह से देखते हैं?
0: यदि आप अमेरिका ईरान युद्ध देखेंगे जो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, एक बड़ा ऊर्जा संकट अभी लोग सफर कर रहे हैं, हर देश के लोग परेशान हैं, एक तरफा टैरिफ का पूरा जो अमेरिका ने दिया लोगों को, किसी की उम्मीद नहीं थी इस प्रकार से, जो ब्रिटेन वो संस्थाएं उन्होंने बनाई भी थी उसमें भी WTO जो उन्होंने बनाया पूरे समूचे विश्व के लिए, खुद WTO का उल्लंघन है इस प्रकार की टैरिफ नीति, और तमाम बढ़ती जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, ये एक जो समूह है वो विकल्प तलाश रहा है। अभी तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में ये समूह की सफलता ही है कि ईरान, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जो है इस मंच का हिस्सा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और तनाव जो है वो भी एक ईरान और सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के मध्य जो है आम सहमति बनाना, ये अपने आप में एक जटिल कूटनीति चुनौती थी, और भारत ने इसको कर दिखाया। एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो अभी आया है वो दिखाता है कि भारत की एक कूटनीतिक कुशलता का ये अनूठा एक उदाहरण है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आसान नहीं है किसी भी डिक्लेरेशन तक पहुंचना जिसमें सर्वसम्मति की जरूरत हो, और आप जानते हैं कि ब्रिक्स में सभी देशों की जब तक कोई सहमति नहीं बन जाती है तब तक कोई डिक्लेरेशन साइन नहीं होता है।
1: और ब्रिक्स के आगे कौन कौन सी चुनौतियां हैं इसके बारे में कुछ बताइए।
0: देखिए, चुनौती की बात करेंगे तो भारत और चीन आपस में इस प्रकार से कुछ रिश्ते हैं जिनका आप एक समूह पे एक मंच पे लाना ये कठिन है। आपने सुना कि इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान भी इसी के सदस्य हैं, तो इनको भी मंच पे लाना एक आसान नहीं है। तो आने वाले समय में इन देशों को आपस में बैठने में जो समस्याएं हैं जो इनकी नीतियों को लेकर हैं, इसके अलावा ब्रिक्स अभी डॉलर का कह सकते हैं विकल्प तलाश रहा है, वो एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। बाकी ऊर्जा संकट, खाद्य संकट, तमाम प्रकार के विश्व में जो भी संकट उत्पन्न हुए हैं उससे भी निपटना आपस में ही इन लोगों के लिए एक बड़ा कह सकते चुनौती है।
1: और पश्चिमी जगत यानी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो किस तरह से देखती हैं ब्रिक्स को?
0: अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि चीन और भारत जैसे देशों में संबंध स्थापित हो, क्योंकि चीन उसका बड़ा प्रतिद्वंदी है और अमेरिका रूस के प्रति भी उतना ही प्रतिद्वंदता रखता है। ऊपर से जो डॉलर का प्रभुत्व है वो किसी भी पैमाने से कम नहीं देखना चाहता है, और जाहिर सी बात है जब ब्रिक्स जैसे समूह विस्तार होगा उसका और विस्तार हो भी रहा है तो वो डॉलर को तो कतई भी आपस में व्यापार करना वो लाना नहीं चाहेंगे किसी भी तरह से, और अगर आ रहा है डॉलर तब तक के लिए आ रहा है जब तक इसके कोई विकल्प नहीं मिल जाता है। तो पश्चिमी जगत तो ग्लोबल साउथ को या इतनी बड़ी आबादी वाले जगत को तो एक मार्केट के रूप में देखता है, बाजार के रूप में देखता है, और बाजार किसी भी तरह से नुकसान होगा वो उसको देखेगा, ऐसा कोई बड़ा समूह उभर के नहीं आया मेरे सामने। और संयुक्त राष्ट्र के सामने अभी रिफॉर्म्स की बड़ी चुनौती है, उसके 5 परमानेंट मेंबर्स अभी भी वो 5 ही हैं, उसमें कोई भी प्रकार के सुधार नहीं हुए हैं। नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें भी ये बात उठी, संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़े संस्था में सुधार होना चाहिए।
1: फाइनल कमेंट, आप ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है इस पर क्या बोलना चाहेंगे?
0: तमाम चुनौतियों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की बात की गई है, और सभी साझे समूह के हिस्सेदार थे वो बड़े ही तन्मयता से वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने इसको एक्सेप्ट किया है। हमें आगे देखना होगा अगले शिखर सम्मेलन जो कि चीन में आयोजित होना है उसके पहले तक इसमें किन बिंदुओं पे काम हो पाता है और किस प्रकार से आपस में सहयोग ये और बढ़ता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ब्रिक्स के बारे में काफी अच्छे से हमारे श्रोताओं को बताया।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता, भारत देश को क्या हासिल हुआ ब्रिक्स से, डॉक्टर शिवांश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से बातचीत कर रही थी।

0: तीन दिशा श्रीवास्तव।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा।

0: अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या। आपके संदेश,
3: संदेश से
1: आते हैं आपके गीत।
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
4: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आइए सुनते हैं एक गीत नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज में। फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

0: गौरव भाई, एक नजर डाल लेते हैं आज के समाचार पत्रों की कुछ स्थानीय खबरों पर। राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में 110 बेड के नए ट्रामा सेंटर में मंगलवार से इमरजेंसी सेवा शुरू हो गई। पुराने भवन में आने वाले मरीजों को अब नए सेंटर में शिफ्ट कर इलाज दिया जा रहा है। अभी इमरजेंसी सेवा शुरू की गई है। ट्रामा सेंटर का औपचारिक उद्घाटन इसी माह होना है। डामासीमन स्टेडियम में मंगलवार से शुरू हुई होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के पहले दिन 700 अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 400 मीटर के ट्रैक पर 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करना अनिवार्य था। एक अभ्यर्थी को निर्धारित दूरी पूरी करने के लिए मैदान के करीब 12 चक्कर लगाने पड़े। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी सुबह 4 बजे से ही स्टेडियम पहुँचने लगे थे। अहिंसा, शांति और संयम के साथ आत्मशुद्धि और मुक्ति की साधना का संदेश देने वाला जैन समाज का दशलक्षण महापर्व मंगलवार से जैन मंदिर रायगंज में श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में मंगलवार को राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। स्पिक मैके अयोध्या चैप्टर के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकार उस्ताद भुनगार खान मुंगाड़ियार और उनके दल ने राजस्थानी लोक संगीत की प्रस्तुतियाँ दी। काल बेलिया नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप ने विद्यार्थियों और शिक्षकों का ध्यान खींचा। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आते ही रामनगरी में भी भक्ति और उल्लास का माहौल छा गया। घर घर में छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, लेकिन साहबगंज में इस बार जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वह सचमुच अद्भुत है। यहां 16 फीट ऊंची गजानन की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये थी आज के समाचार पत्रों की कुछ स्थानीय खबरें। इसी के साथ हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: अयोध्या
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हुए हैं, आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके संदेश आपके गीत।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित द्विवेदी। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई। इसके लिए हमें संदेश भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से। आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। इसी गीत की फरमाइश की है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने भी। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई।

अब लीजिए सुनिए अग्निपथ फिल्म का गीत, जिसके लिए हमें संदेश मिला है ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल का। इसी गीत के लिए एक और फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, आप सबकी फरमाइश पर अग्निपथ फिल्म का ये गीत।

नमस्कार, मैं श्री फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए इज्जत फिल्म का गीत जिसके लिए हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी और शबनम बानो का। ये एक और संदेश है जेल रोड बक्सर से, आप हैं राज एस डी अजनबी और फातिमा राज। इसी गीत की फरमाइश के लिए डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से भी संदेश आया है दयाशंकर जयपुरिया और प्रभा देवी जयपुरिया का। आप सबकी फरमाइश पर इज्जत फिल्म का ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। रंग फिल्म का गीत सुनिए आप सबकी फरमाइश पर। ग्राम भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद।

और आप लीजिए सुनिए प्रोग्राम का ये अंतिम नगमा। फिल्म का नाम है बेताब, पसंद आप सबकी। मालवा रेडियो श्रोता संघ बनाया है ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से। आप हैं जगदीश धाकड़ नाइमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। कृष्णा पार्क दिल्ली से भी इसी गीत की फरमाइश है सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना और गुरुवंश सिंह जौड़ा की। तो आप सबकी फरमाइश पर प्रोग्राम का ये अंतिम नगमा, फिल्म का नाम बेताब।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को। आपसे बस कुछ ही देर बाद 9:30 पर सुनना न भूलिए सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। नंबर हमारा वही पुराना जाना पहचाना 73-76-80-40-90।

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी
1: सुनना ना भूले। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार
0: शाम 6:50 से।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6:00 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: अभी आप सुन रहे थे

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: जी हाँ, शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बड़े ही बेसब्री से इंतजार, यानी सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूँ शोभित द्विवेदी और हमारे साथ
4: आज मैं हूँ आरजे रक्षा।
0: जी हाँ, मिलाइए फोन, उठाए डायल कीजिए 7376804090 और कीजिए हमसे बातें और सुनिए अपनी ही पसंद के नगमे। और रक्षा कैसी हैं आप, पहले ये बताइए।
4: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं यहाँ पर आके और भी अच्छी हो गई हूँ क्योंकि आज आपसे मुलाकात हो रही है और अपने श्रोताओं से बातें होंगी।
0: जी बिल्कुल, ये बताइए आप बाहर से आ रही, बाहर का मौसम कैसा है?
4: बाहर का मौसम तो इस समय बहुत अच्छा हो रहा है शोभित, मिला जुला मौसम है, धूप छांव हो रही है, बारिश, हाँ बारिश होने के आसार लग रहे हैं।
0: हाँ, बारिश इधर कई दिनों से हुई भी नहीं
4: है। हाँ, लेकिन लग रहा है कि हो जाएगी आज।
0: चलिए आपने कहा है आप और उठा देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है आज के,
4: तो चलिए बात करते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो
5: हेलो नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
5: रणधीर श्रीवास्तव, जनपद अयोध्या, मौजा उदयपुर, रामनगर किया।
0: कैसे हैं रणधीर जी?
5: सर आशीर्वाद है आप लोगों का सबका।
0: अरे आशीर्वाद तो आपका।
4: क्या करते हैं आप?
5: हम खेती करते हैं सर।
4: अरे वाह, खेती करने के लिए तो इस समय मौसम बहुत अनुकूल है
5: जी।
4: खेती करने के लिए इस समय मौसम तो बहुत अच्छा है।
5: अरे मौसम बारिश हो ही नहीं रही है सर, क्या किया जाए।
4: नहीं इधर बीच कुछ दिनों से नहीं हो रही है, लेकिन पहले तो बारिश हो रही थी।
5: हाँ हाँ बारिश तो हो रही थी, लेकिन अब इस समय धान को पानी की जरूरत।
4: हाँ हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: नहीं बारिश भी होगी और जल्दी ही बारिश होगी रणधीर जी, मौसम बन रहा है।
5: जी जी जी जी, जी।
0: तो गाना कौन सा सुनेंगे आज
5: आप? हमें फिल्म का नाम है जवाब हम देंगे और उसी में से कोई भी गीत सुनवा दीजिए।
4: चलिए हम आपको आपकी पसंद का गीत तो सुनवा देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप खेती के अलावा और भी कुछ करते हैं?
5: जी हम वैद्य का काम करते हैं।
4: अरे वाह, वैद्य का काम करते हैं, तो आप हमारी श्रोताओं को ये बताइए कि इस समय मौसम जैसा चल रहा है तो इस समय लोगों को फीवर भी हो रहा है, सर्दी जुखाम भी हो रहा है ना, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए?
5: अब जैसे आप ये समझिए कि खान पान में थोड़ा सा दिक्कत।
4: जी जी,
5: नहीं खान पान सही रखे।
4: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने,
0: लेकिन वैद्य जी सुनिए, जो दवाई आप बताए हैं यानी जो गाना आप बताए हैं वो तो नहीं है हमारे पास,
5: तो आप अंधा कानून से सुनवा लीजिए।
0: अंधा कानून से सुनवा दें आपको।
4: तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप इस फिल्म का?
5: कोई नहीं, गीत सुनवा दीजिए।
4: तो चलिए हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रक्षा देखो फोन लाइन खुलते ही हमारे दोस्तों की कॉल हमारे पास आने लगी है।
1: हाँ और चलिए फटाफट से लेते हैं, देखते हैं कि कौन से कॉलर है लाइन पर।
0: बिल्कुल। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
2: जी हमारा नाम निर्मला।
0: निर्मला जी कहाँ से फोन लगाया है? जी क्या करती है? तो अभी तो सुबह का समय है, काम तो सब शुरू होंगे आपके घर के?
2: हाँ सब काम शुरू है, बच्चे स्कूल चले गए।
1: अच्छा ये बताइए घर के काम के
2: आज हमारा फोन लगता है, बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे फोन नहीं लग रहा।
0: जी कई दिन से ट्राई कर रही हैं?
2: काफी दिन से ट्राई कर रही
1: हूँ। तो चलिए बहुत खुशी है आपसे बात करके, आज आपकी कॉल लग गई।
2: कल छोटा बच्चा हमारा फोन कर रहा था, कह रहा मम्मी फोन नहीं लग रहा है, हम क्या लगेगा बेटा, आज तो स्कूल चला गया है।
1: देखिए आपने दिल से चाहा और कॉल लग गई।
2: हाँ आज मैं पहली बार लगाया अभी आज।
1: अच्छा निर्मला जी ये बताइए कि आप फ्री टाइम में क्या करती हैं, घर के कामों के अलावा आप और क्या करना पसंद करती हैं?
2: फ्री टाइम में थोड़ा बहुत है ऐसे चल देते हैं, गैया रखते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: और सिलाई थोड़ा हो जाती है।
1: अरे वाह, तब तो आप मल्टी टैलेंटेड है, काफी चीजें कर लेती हैं आप।
2: बस मैम जी आपकी कृपा है।
0: चलिए गाना कौन सा सुनेंगी आज?
2: सर जी आप अपनी पसंद का ही सुना दीजिए।
0: हमारी पसंद का सुनेंगी?
2: हमारी कोई नहीं है।
0: अच्छा चलिए देखते हैं हमारी पसंद आपको पसंद आती है कि नहीं, क्यों रक्षा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है निर्मला जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।

0: बिल्कुल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्यों शोभित?
1: बिल्कुल, और पार्टी हमारी पूरी 10 बजे तक चलेगी।
0: बिल्कुल, और भी आगे चलेगी, लेकिन 10 बजे तक हम अपने श्रोताओं से बात करेंगे हेलो अयोध्या में। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं अगले कॉलर हमारे कौन से हैं।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताइए अपना, कहाँ से फोन लगाया है?
2: जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी सर, मैं सर ग्राम पौध संदारा तहसील भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से मनोहर लाल मेहर बोल रहा हूँ सर।
1: जी मनोहर लाल जी, कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया है सर।
1: तो आपकी तो कॉल लगती रहती है अक्सर।
2: क्या सर?
1: आपकी कॉल तो अक्सर लगती रहती है।
2: नहीं सर, आपके बात तो बहुत दिन में लगाया, डेढ़ दो महीने में लगाया सर।
1: डेढ़ दो महीने बाद लग रही इनकी कॉल रक्षा।
0: तो ऐसा क्यों है कि आपने इतने समय के बाद कॉल की? हेलो
2: जी।
1: पहले मनोहर लाल जी, आपके पीछे आवाज कैसी आ रही है?
2: ये तो पास में बोल रहे हैं।
1: कौन बोल रहा है? मोहल्ले में है, पीछे आवाज आ रही बच्चों की कुछ।
2: हाँ अपने बच्चे बच्ची पड़ोसी में है।
1: पड़ोसी में है, कहिए थोड़ा शांत रहे ना, या आप थोड़ा दूर हो जाइए।
2: ठीक है ठीक है ठीक है।
1: चलिए गाना कौन सा सुनेंगे ये बताइए।
2: गाना वो सुनेंगे अपने पत्ता, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जय जी पार्वती महादेवा।
1: वही तो पूरी आरती है, बता दियो आप। चलो ठीक है, अग्निपथ का गाना सुनवा रहे हैं आपको।
0: कॉल करने के लिए थैंक यू।

0: ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
2: मुझे तो मोतियाबिंद हो गया है।
3: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीवार्ड, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: संजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हमारे साथ हमारे अगले साथी कौन है, आइए देखते हैं। हेलो
7: हेलो, नमस्ते सर।
6: जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से फोन किया है?
7: अंशु बोल रहे, शहादतगंज फैजाबाद।
6: अंशु
7: जी सर,
6: क्या करती हैं
7: सर? घर का ही काम वाम करते हैं सर।
6: तो घर का काम हो गया आज की नहीं?
7: जी सर हो गया, नहाने जा रहे थे, कॉल लगाए, देखा पहले बात कर ले सबसे, सब बहाए।
6: अच्छा तो गाना कौन सा सुनेंगी
7: सर? तेरी मेहरबानियां का कोई भी गाना सुना दीजिए सर।
8: गाना तो बहुत अच्छा पसंद किया है, लेकिन चलिए ये बताइए कि आप घर के काम के अलावा और भी कोई काम करती हैं?
7: हम कहीं नहीं जाते, घर में ही रहते हैं।
8: अच्छा तो ये बताइए, हाँ हाँ, खाने में सबसे अच्छा आप क्या बना लेती हैं?
7: मैं वैसे तो बिटिया बनाती हैं।
8: हाँ अरे वाह,
7: बड़ी बिटिया की शादी कर दी।
8: अच्छा,
7: तो हम भी बना लेते हैं कभी, जैसे वो सेंडा एंडा बनाना हुआ।
6: नहीं ये अंशु जी, अंशु
7: जी
6: सर, ये सोच के बताइएगा कि जो आप जो बताएंगी खिलाना भी पड़ेगा आपको।
7: जी सर बिल्कुल बिल्कुल, आइए दे रहेगा।
6: तो आप बताइए क्या अच्छा बनाती हैं आप?
7: जी सर
6: क्या अच्छा बनाती हैं आप बताइए
7: सर? अच्छा तो सब कुछ बना लेते हैं।
8: अरे बात, अब तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम लोग चाहे जब आए अच्छा खाने को मिल जाएगा हम लोगों को।
7: जी बिल्कुल बिल्कुल।
8: तो चलिए,
7: बना बिटिया भी बहुत अच्छा खाना बना लेती है, हम भी बना लेते हैं।
6: ठीक है अंशु जी, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे, गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का
7: जी सर। नमस्ते
6: जी, नमस्कार।

0: दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची की अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा। दिनांक 20 सितंबर 2026 रविवार को प्रातः 8:30 से 9:30 तक आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से सुप्रसिद्ध सूर्य कुंड मेले तथा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसको आप 101.9 MHz और अपने मोबाइल सेट पर न्यूज ऑन AIR और वेब OTT ऐप पर सुन सकेंगे। तो आकाशवाणी अयोध्या के इस अनूठे कार्यक्रम से जुड़ें और भगवान सूर्य को समर्पित लोक संस्कृति के इस महान पर्व पर रेडियो के माध्यम से पुण्य लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं कौन है। हेलो
1: जी सर, ये राम राम।
0: राम राम, नाम बताइए।
1: सर मैं संदीप शर्मा, शक्ति मेनपालन, नयपुरवा जंतरा रोड से बात कर रहा था।
0: क्या हाल है संदीप भाई
1: जी? बहुत बढ़िया है।
0: क्या करते हैं
1: ये? हमारा मेन पार्लर है जंतरा रोड पे, शक्ति मेन पार्लर के नाम से।
0: जंतरा रोड तो हमारे आकाशवाणी परिसर के बगल में ही है शायद।
1: जी जी बिल्कुल बगल में ही है।
0: तो पड़ोसी हुए?
1: जी जी
0: है कि नहीं?
1: बिल्कुल आपको पड़ोसी है सर।
0: तो पहली कॉल लगी, इससे पहले भी लग चुकी है?
1: नहीं, इससे पहले भी काफी पहले भी लग चुकी, कई बार हमारी कॉल लग चुकी है।
0: तो दुकान खुली हुई है आज?
1: जी बिल्कुल दुकान खुली है, हमारे दोस्त भी बैठे हुए, एक हमारे विक्की भाई साहब है, एक हर्षित भाई साहब है, सब बैठ के सुन रहे हैं।
0: तो
1: जी
2: अच्छा ये बताइए आपको कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ के अच्छे लगते हैं आकाशवाणी अयोध्या के?
1: कार्यक्रम तो मैडम ये जो है सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हमारे यहाँ आपका आकाशवाणी चलता ही रहता है।
2: मतलब आप सुनते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं और कार्यक्रमों को भी सुनते रहते हैं?
1: रहते हैं, हमारे होम थिएटर में कनेक्ट है, वो चलता ही रहता है।
0: ऊपर से पड़ोसी भी हैं, इतना तो इतना तो करेंगे ही रक्षा। ये
2: बिल्कुल सही कहा शोभित
1: जी, जी। उसे आपके FM के गायक हमारे पिताजी भी हैं, हमारे पिताजी का कई सॉन्ग आपके यहाँ रिलीज हुआ है।
0: जी क्या नाम है, शुभ नाम क्या है पिताजी का?
1: पिताजी का नारायण शर्मा है। होली का कई गाने रिलीज हुए हैं, बाकी शाम को जो आता सखी सहेली उसमें भी आता है।
0: जी चलिए संदीप भाई बहुत अच्छा लगा बात कर। गाना आज कौन सा सुनेंगे?
1: गाना हमारा था गदर पिक्चर का गाना है सर, मैं निकला गड्डी लेके।
0: चलिए हम गड्डी निकाल रहे हैं आपके लिए, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन, और गाने का नाम है देवा हो देवा गणपति देवा हमसे बढ़कर को। ये गाना सुनने में हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़ा त्योहार और बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है मैम।
1: जी महाराष्ट्र में तो गणपति की बहुत ज्यादा धूम रहती है।
0: जी मैम जी सर 10 दिन चलता है खाना पीना कीर्तन और भजन। हाँ। बहुत मंगलमय वातावरण है सर महाराष्ट्र।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। कॉल करने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गड्डी तो लगभग हमारी मंजिल तक पहुंचने ही वाली है, क्यों शोभित?
1: बिल्कुल रक्षा, सिर्फ 5 मिनट हमारे पास और बचे हुए हैं।
0: हाँ, तो फटाफट से कॉल ले लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: सीतारामपुर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैम।
0: किस फिल्म का गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
2: मुझे आपके कार्यक्रम में अभी सुनना है।

0: और हेलो अयोध्या का सफर धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक कॉल हम और अटेंड कर सकते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना जल्दी से।
1: समा परवीन बोल रही हूँ, जिला सुल्तानपुर।
0: जी समा, कैसी हैं?
1: अच्छी हूँ।
0: समा, गाना हम नहीं सुनवा पाएंगे आपकी पसंद का, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है
1: जी।
0: लेकिन हमने कॉल आपकी ले लिया है।
2: क्या करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ
0: हैं। घर का काम हो गया समा आज?
1: जी सर, काम हो गया, झाड़ू लगा रखी, फोन लगा रखी, लग ही नहीं रहा था, अभी लास्ट में लगा।
0: झाड़ू लग गई
1: जी।
0: चाय पी लिया
1: जी?
0: खाना भी बन गया?
1: खाना भी बन गया।
2: अरे वाह, आप तो सुपर फास्ट हैं।
0: हम ये नहीं पूछेंगे रक्षा, लेकिन इनसे कि बना क्या है।
2: हाँ,
0: वरना हमको भूख लग जाएगी यहाँ पर।
2: सही का।
1: भी हो गया, खाना भी बन गया, काम भी हो गया, सब तो प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: बहुत अच्छे श्यामा
1: जी, नहीं रहा था, अभी लगा।
0: चलिए ठीक है, बात करके अच्छा लगा श्यामा जी, और किसी और दिन बातें होती तो आपकी पसंद का गाना भी सुनवाएंगे। कॉल करने के लिए थैंक यू।

0: तो दोस्तों सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या का सफर आज बस यहीं तक। दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को। आपसे लेकर शाम 5 बजे तक आप रहेंगे आरजे रक्षा के साथ।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी अयोध्या है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: जी नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
2: जी
1: अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और

0: और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर?
1: अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
0: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
1: देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहाँ न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल तो मैं करूंगा।
0: तो इसी बात पे गाना हो जाए आपकी पसंद का?
1: जरूर।
0: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
1: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था
0: जी,
1: तो उस जमाने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी शंकर हुसैन, उसमें एक गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं।

0: संघर्ष तो खूब किया
1: जी।
0: और बहुत समय लगा मुझे लगता है पहचान बनाने में। तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: के कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग बुनियाद काफी देर तक बनाते रहते हैं तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया, और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिशिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था
1: जी, उसी
0: से बात बनी ना?
1: जी जी जी, उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह, तो ये कंपटीशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है, मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपको आपके चलते हैं या चल रहे हैं, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास अगर पहले दो मरीज आए और वो आपके हाथों मारे जाएं, तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता है।
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत किए, शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की, एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और सीरियल,
1: ये आप शिकायत कर रही हैं या बता रही हैं? समझ नहीं आ रहा।
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी ऑन करती हूँ तो आप ही आप दिखाई देते हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो असल में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे।
0: अच्छा, anyway,
1: तो क्या कह रही थी आप?
0: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है?
1: नहीं, अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो, और है भी थोड़ा सा, वहाँ पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर में।
0: होते हैं।
1: थिएटर में
0: जी।
1: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फर्क नहीं। हाँ, डायरेक्शनल टेक्निक्स में फर्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉर्ट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहां निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है।
0: फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिक

0: ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना.
1: क्यों हम लोग टेलीविजन में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं.
0: यही बात तो उगलवाना चाहते
1: गुस्सा आ गया, गुस्सा दिलवा के.
0: अच्छा, जब शुरू शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर से माफ कीजिए छूत की बीमारी समझते थे. कहते थे कि नहीं, छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं. क्या ख्यालात हैं इस बारे में?
1: देखिए, मेरे ख्यालात जो है इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं. मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया. लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहाँ पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शंस हैं. आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है. सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है. इट इज़ अ ग्रेट मैजिक, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थिंक सिनेमा इज. तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है. लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है. जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल.
0: बहुत अच्छी बात है. अच्छा, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए.
1: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं
0: जो आपको पसंद हो.
1: गालिब की एक गजल है, मुझे बड़ी पसंद है और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है. आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक.
0: वाह वाह.

पवन जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब वो उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे

0: निकली।
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं, उसी में आ रहे हैं। सीधी बात है।
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: रोजी रोटी का सवाल है,
1: नहीं रोजी रोटी का भाई, वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
0: बिजनेस
1: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
1: नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा जो लागत है मेरी, वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी? पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप, पॉपुलर हर जो चीज है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था इनिशियली,
0: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
1: एक तो
0: कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिलेगा।
1: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पर ट्रेन में बम्बई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूँ और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं कहूँ कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
0: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहे, कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
1: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है, ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाए और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही नहीं मिल यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहे मगर खाएंगे क्या?
0: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है, तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
1: नहीं नहीं, क्यों, मैं जेलेसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सैक्रिफाइस और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सैक्रिफाइस करने की वो है
0: ताकत
1: इसी वजह से जब से

0: हमारे बच्चे हुए हैं, अब तक उसने कोई काम नहीं किया. शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी. तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं. लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ. तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर है तो घर नहीं है. उसके जहन में घर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए.
1: ये तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
0: नहीं
1: पति के लिए.
0: नहीं नहीं, वो वजह बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी. तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का. और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड.
1: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना,
0: सुंदर सी बीवी के लिए.
1: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए क्यों नहीं.
0: तो चलिए बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं.
1: कौन सी फिल्म का?
0: उत्सव का. मुझे बहुत अच्छा लगता है मन क्यों महका.

0: अच्छा, आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी आप क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ और मेरा ना कोई चचा ना कोई ताया ना कोई अंकल ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था।

0: कि मैं मुंबई जाकर एक्टर बनूं। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं। तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस पे जाऊं, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था। जो दोस्त लोग दोस्त थे हमारे, और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, उन वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे। तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फैन था, देव साहब का फैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिले देव साहब के फैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
1: तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी?
0: नहीं,
1: या कोई ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर?
0: मुझे बेसिकली क्या, सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ। समझा? तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया।
1: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना?
0: नहीं, स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था।
1: नहीं,
0: इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।
1: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे, या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा आप?
0: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को यह कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं, तो why not? I think it's the noblest profession.
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: अच्छा, आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहते हैं। तो ये, आपकी क्या ख्याल है इस बारे में?
0: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊंचे होंगे, क्योंकि और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था
1: जी,
0: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था। तो देखिए, एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़ी आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है, एक 60वां भी होगा वहां। तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अब तेरा नंबर 60 यहाँ आया, कहीं कोई और चीज में ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए, ये
1: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ, चप्पा चप्पा कोशिश करते रहना चाहिए। इसी बात पे आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म में, हो जाए
0: बिल्कुल हो जाए,
1: जलाइए चप्पा
0: जलाइए माचिस।
1: तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले
0: जी।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। इसीलिए मैं हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना,
1: बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने सा लगता था, मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वी यूज्ड टू एंजॉय दैट नंबर, तो वो सुनवा देते हैं।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन. आप लाइए प्रोड्यूसर तो मैं यही कर डालूंगा.
0: 20-25 साल हो गए आपको लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की बाग
1: कभी मैं उसका मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो. अब देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था. बड़ा मजा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में. लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीखते हैं. साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में. तो ये मीडियम इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूँ तो मैं ज़रूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए गोता
0: चांस लेना.
1: हाँ, चांस लेना चाहूंगा.
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी.
0: किसी में भी. अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं. ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है? क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ. तो अगर आप मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है. हाँ, देखिए आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूं डायलॉग लाइन को यूं करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए. आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स. हम लोग कठपुतलियां नहीं है. एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियां. हम सोचने वाले जीव जंतु हैं. और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज जो है या ये लाइन ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी या के सच्ची लगेगी. सच्चा लगना बड़ा जरूरी है.
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी है. कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना. वो बुरा है या अच्छा है, भाड़ में जाए.
0: वाह वाह, बहुत अच्छा. अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ गई, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं.

0: को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती। आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए, ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। मैं कोशिश नहीं करता पीछे ना देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है। मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूँ,
0: मतलब जो छूट गया वो छूट गया।
1: मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है, या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सब भी नहीं। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
0: वाह वाह।
1: हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है,
0: मतलब छैया छैया।
1: हाँ, छैया।
0: तो आइए फिर सुनते हैं छैया छैया।
1: बेशक
0: है, आपको पसंद है ना?
1: बहुत पसंद है।

0: देखिए बेसिकली
1: मतलब 24 घंटे बैंकिंग करते रहते हैं वेदर कैमरा इज ऑन और
0: नहीं। ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ कैमरे के सामने उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूं।
1: अच्छा
0: तो हाँ तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते रहते हैं तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा मैं मुझे शौक है खेलने के। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में स्कूल में भी और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं और टेनिस से बहुत लगाव है बहुत इश्क है और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
1: अच्छा तो आप उनकी मदद भी करती होंगे किचन में या वो आपकी ही मदद करती रहती हैं?
0: नहीं मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती है कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि और अकेला रहा हूँ जिंदगी में लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है मुझे नहीं बनाना आता।
1: अच्छा आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
0: या एक अभिमान कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग उनके साथ कर रहा हूँ मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी 3 ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। ये ख़त्म होने वाले हैं कुछ सांस जैसे हुआ ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई विल टेक ऑन। एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को।
1: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप?
0: हाँ जितना अपनी पूरी एबिलिटी अपना पूरा कंसंट्रेशन में जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे आपको क्या पसंद है?
1: मुझे आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी सत्ते पे
0: सत्ता जी हाँ
1: है ना
0: हाँ तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। चलिए साहब

0: कमल जी
1: जनाब,
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभिनय नहीं करता, मैंने जैसे शुरू में बताया मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में, तो वहां इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह, तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ इस काम से कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है।
1: हाँ, बेकार
0: ही। कर ही नहीं सकता एक्टर बनके।
1: नहीं नहीं, एक्टर बनके बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इसको इससे मतलब अगर इश्क हो जाए, अगर इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा, कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा, तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किन के साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मुझे मैंने काम किया है ऑलरेडी उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मजा आया सबके साथ काम करने में, और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं तो मैं कह नहीं सकूंगा, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं, वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो जरा रेपिटेटिव हो जाता है।
0: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर की इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ गया।
1: नहीं नहीं, मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ,
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
1: मूड अच्छा हो जाए, चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता है।
0: ठीक है।
1: तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: ट्यूशन जिन्हें कहे, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जानी मानी भजन गायिका एम एस सुब्बालक्ष्मी का जन्मदिन है। हम उन्हीं की याद में ये भजन आपको सुनवा रहे हैं।

एमएस सुबह लक्ष्मी की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना। और आइए एक बार फिर इसी आवाज को सुनते हैं। ये भक्ति पद भी संत मीराबाई का ही है।

भजन गायिका एमएस सुब्बालक्ष्मी के जन्मदिन पर हमने उन्हें इस कार्यक्रम में भजन के जरिए आज याद किया। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और गैर फिल्मी गीत, स्वर जावेद अली का। गीतकार और संगीतकार हैं सुहित अभ्यंकर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश आवाजें मुबारक बेगम, जानी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की, और ये अजीज गाजी की लिखी कव्वाली है। संगीत विपिन और महबूब का है।

और आइए अब सुनते हैं पापोन की आवाज। इसे श्वेता बोथरा ने लिखा है और धुन बनाई है पुनीत दीक्षित ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में रोशन नादान का ये कलाम।

चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार का लिखा ये पारंपरिक गीत, आवाजें मीका सिंह, यो यो हनी सिंह और साथियों की।

0: उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
2: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
4: चिट्ठी ना कोई संदेह
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आपने ये भक्ति पद सुना। आइए लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये नानक का शब्द। संगीत दिया है सिंह बंधु ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद मेहदी हसन का गाया ये राजस्थानी लोकगीत मांडगायकी के रूप में।

जाने केसरिया महबूब से मुखातिब है।

माँ जोने के सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, हर मोती ना रो थाल, मोतियों का थाल भर के।

केसरिया बालम आहू ने पधारो मारे देश। अभी आपने उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी लोकगीत सुना और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार के लिखे बोल। गाने वाले कलाकार भूपेंद्र भूपेन हजारिका, नितिन मुकेश और साथी। इस गैर फिल्मी रचना को संगीत दिया है भूपेन हजारिका ने।

0: इस गैर फिल्मी रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा

0: घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम गीतकार प्रसून जोशी के लिखे कुछ गीत लेकर आए हैं। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे संगीतकार राम लक्ष्मण को भी। तो पहले सुनते हैं राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में ये गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण का संगीत, नूर कसकार का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, फिल्म का नाम महबूब मेरे महबूब।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। ये आकाशवाणी अयोध्या है। प्रस्तुत है अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: आकाशवाणी के प्यारे प्यारे श्रोता भाई बहनी का हमरी ओर से सादर नमस्कार। हम हुई आपके आपन साथी RJ रक्षा श्रीवास्तव और आज हम लेके आए हैं आप सबै के मन पसंद अवधि लोकगीतन से सजे कार्यक्रम लोक रंग। आवा चला सुना जाए ई लोकगीत।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी
5: सुनना ना भूले। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार
4: शाम 6:50 से
6: लोक रंग कार्यक्रम आप सबे सुनत है आकाशवाणी अयोध्या से। आवा चला सुना जाए शारदा सिन्हा के स्वर में ई पारंपरिक लोकगीत।

0: क्या आपको तेज बुखार है? इसे नजरअंदाज ना करें।
1: तेज बुखार शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सही जांच और इलाज के लिए मिलें
0: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: मछली मंडी, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या।
0: फोन करें 6386907006।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार

0: अभी आप सुन रहे थे अवधी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: क्या आपको तेज बुखार है? इसे नजरअंदाज ना करें।
4: तेज बुखार शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सही जांच और इलाज के लिए मिलें
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: मछली मंडी, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या।
3: फोन करें 6386907006।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
5: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और आज मैं हूं आपके साथ आरजे रक्षा श्रीवास्तव। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। कार्यक्रम में सबसे पहली फरमाइश हमारे पास आई है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी की, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे। बागपत यूपी से संजय ढींगिया। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर। भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्कीन। आप सबने पसंद किया है फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत, आवाज है सुखविंदर सिंह की। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुस्तुम ने कहा, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म अनाड़ी के गीत के लिए। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, समर्थ रेसिडेंसी अक्कल रोड जिला सोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लोढ़े, भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, जोकीहाटी दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, ग्राम नवागांव मुढ़ीपार जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल साहू, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म अनाड़ी का ये गीत। आवाज है साधना सरगम और उदित नारायण की।

कार्यक्रम में अगली फेसबुक फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म फकीरा के गीत के लिए। बाजार रोड मुंगीसापुर से जाकिर मंसूरी, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, राज पैलेस मौनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेचा, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ यूपी से दिलशाद हुसैन, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है सांगली जिले के जतशहर से अल्ताफ हुजरजी की, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक चांदेड़, और उन्हें जिला एमपी से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़। तो चलिए आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म फकीरा का ये गीत। युगल स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से। कार्यक्रम में अगली फेसबुक फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म अपना देश के गीत के लिए। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद प्रकाश मिड्ढा, कस्बा उघटी बदायूं से धीरज गुप्ता, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है बत्रे बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण होंगड़े, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेड़ी से नानाजी लामसे। तो आइए चलिए आप सबकी पसंद पर फिल्म अपना देश का ये गीत सुनते हैं। आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: मुकेश की आवाज में फिल्म आनंद के गीत के लिए ये फरमाइश हमारे पास आई है। ग्रामा पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर यूपी से मनीराम पाल, कालका से शुभचंद्र बजाज, रघुवीर नगर से दिलावर खान, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव चौहान, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मिस्किन, कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, हरदोई रोड लखनऊ यूपी से मास्टर खिल्लू परवेज, चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म आनंद का ये गीत। आवाज है मुकेश की।
1: नहीं नहीं

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल।

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

विशेष सूचना। आकाशवाणी अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा। दिनांक 20 सितंबर 2026 रविवार को प्रातः 8:30 से 9:30 तक आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से सुप्रसिद्ध सूर्यकुंड मेले तथा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसको आप 101.9 मेगाहर्ट्ज और अपने मोबाइल सेट पर न्यूज ऑन AIR और वेब्स OTT पर सुन सकेंगे। तो आकाशवाणी अयोध्या के इस अनूठे कार्यक्रम से जुड़ें और भगवान सूर्य को समर्पित लोक संस्कृति के इस महान पर्व पर रेडियो के माध्यम से पुण्य लाभ प्राप्त करें। सूचना समाप्त हुई।

कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में जो अगली फरमाइश हमारे पास आई है वो है फिल्म सरगम के गीत के लिए। कोल सिटी बरगाना से अफजाल ताज, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला एमपी से गोविंद वैष्णव, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, गांव खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बरासा, कलानौर से नरिंदर शर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है पांजरा बोरी जिला भंडारा महाराष्ट्र से बबन राम टेके, रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से गंगा सिंह रावत और नगरिया कला बरेली से एमडी अक्रम अंसारी। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म सरगम का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

प्रेम कहानी। इस फिल्म के गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है सालार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा महराजुद्दीन, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, लगान पंडिरिया छत्तीसगढ़ से राघव बघेल, बक्सेना दातागंज बदायूं से विमल सिंह, कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र दास। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूलक, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म प्रेम कहानी का ये गीत। आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म बेटा के गीत के लिए। जिला पटियाला पंजाब से।

तत्ते नाभा ग्राम अचौरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सकावत हुसैन मंसूरी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। इसी फिल्म के गीत की फरमाइश हमारे पास आई है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, अड़ार नांदगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से संजय मार्कंडेय, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, उच्च भट्टी विलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, बीरशहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म बेटा का ये गीत। आवाज है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की।

कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत हमने लिया है फिल्म साजन बिना सुहागन से। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, पटियाली रोड गंज डुंडवारा यूपी से एम खलील कुरैशी, उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई। इसी फिल्म के गीत की फरमाइश हमारे पास आई है गांव भटनी जिला मंदसौर एमपी से ईश्वर मेहर, बाटडा रोड मडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, आकोट से विनायक बिंडे, बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म साजन बिना सुहागन का ये गीत। आवाज है यशुदास और अनुराधा पौडवाल की।

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी
1: सुनना ना भूले प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार
0: शाम 6:50 से।
2: फेसबुक श्रोताओं के साथ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, ये आकाशवाणी अयोध्या है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
3: मुझे नौ लखा मांगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
8: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 से शाम 4 तक। कॉल करें 94532 21909।
2: गीतांजलि कार्यक्रम का सबसे पहला गीत हमने लिया है सलमा आगा की आवाज में।

0: ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
2: मुझे तो मोतिया बिंद हो गया है।
3: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा।

0: मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी। शुगर से खराब हुए आंखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
1: विशेष सूचना। आकाशवाणी अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा। दिनांक 20 सितंबर 2026 रविवार को प्रातः 8:30 से 9:30 तक आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से सुप्रसिद्ध सूर्यकुंड मेले तथा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसको आप 101.9 मेगाहर्ट्ज और अपने मोबाइल सेट पर न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर सुन सकेंगे। तो आकाशवाणी अयोध्या के इस अनूठे कार्यक्रम से जुड़े और भगवान सूर्य को समर्पित लोक संस्कृत के इस महान पर्व पर रेडियो के माध्यम से पुण्य लाभ प्राप्त करें। सूचना समाप्त हुई।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि 101.9 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी अयोध्या है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 2:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
1: The question should not only be
2: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
0: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान

0: नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है।

0: और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
5: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी थी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम अंगना

लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
3: ब्रो, ये फटा है।
4: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: अंगना कार्यक्रम में हाजिर है आज आपके सखी मितू, आप सभी का हमार प्यार भरा नमस्कार। सखी सली, दिल है तो धड़कन है और धड़कन है तो जीवन है, और जीवन है तबे तो आपन घर आंगन में रौनक है। और भाई, हमारे घर आंगन के रौनक होती ना अपन इस सखी सहेली। और जब सखी सहेली आपन बाजा खोल के अंगनैया में बैठ जाती तभी तो हमारे सभी के उत्साह भी बढ़त है, और कार्यक्रम में नीक नीक बात करे के बढ़िया बढ़िया गीत को नहीं सुनवावे के मन भी करत है। तो भाई, आज है बुधवार और कार्यक्रम हुई आप सभी के फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला के। कार्यक्रम तो आगे बढ़ावा जाए मुला, उससे पहले बात करब आज के चर्चा के, जो उनकी है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी दिवस के बारे में। सखी, आज है 16 सितंबर और पूरा विश्व ई दिवस का मनावत है, यानी अपन दिल के ख्याल रखे वाला दिन। वैसे तो अपन दिल के ख्याल हमेशा रखे के चाहिए, मुला जागरूक करेकता है ई दिवस मनावा जाता है। और अपनी यहाँ देखो कहो जाते है ना कि जान है तो जहान है, और ई जीव के जो आधार होते ना वो होते दिल के धक धक, यानी धक धक रुका तो जीवन खत्म। और ये दिल के ख्याल रखा अपन सभी के जिम्मेवारी भी बनत है, और वो जिम्मेवारी का होते है वो पे बात करब मुला। उससे पहले अपन जो फरमाइश आई है वो का शामिल करी थे अपन पहले गीत गीताएं, जो उनकी है गणेश भगवान के प्रभु महाराज गजानन के। और फरमाइश करत थी सुनीता पटवा, गायत्री पटवा, विनीता कृष्टि, ग्रामधर देही सरगांव से, साथ ही साथ प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, सुधीर नूतन, प्रेमलता, संदीप जगमोहन मॉडल टाउन से गणेश वंदना सुने के फरमाइश करते हैं, आशीष बारी, जया

रावत, अजिता रावत, आशीष रावत, ग्राम गोदनपुर जगदीशपुर बस्ती से ही प्रभु गजानन के गीत सुने के फरमाइश करत हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से प्रभु महाराज गजानंद गीत सुने के फरमाइश करत हैं। साथे हीरामणि वर्मा दत्तरेगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से यही गीत के फरमाइश करत हैं। नेहा धारा रोड से गणेश भजन का सुने के फरमाइश करत हैं। तो चलो इन सब के फरमाइश का पूरा किंजाई गणेश भजन से।

तो देखो सखी, अभी हम बात कर रहे हैं दिल के, ना दिल यानी कि कार्डियो, कार्डियो जो कार्डियोलॉजी दिवस है ओके, मतलब का है कार्डियो मतलब होते दिल और लॉजी मतलब होते देखभाल। देखो भाई, अपन सखी सहेली परिवार के हर सदस्य के दिल के ख्याल रखा थी और अपन बारी आवत है तो भाई वे लापरवाही करा थी, खाए पिए माँ अपन देख रेख करे माँ, ना तो वे ठहरे जाती न घूमे जाती न कोनो मेर के व्यायाम करती। तो भाई हम तो यही कही थे ना कि आज से यही प्रण लें कि जो खाना खाएं उस सबका तो अच्छा पौष्टिक खिलावे ही, आपन भी पौष्टिक भोजन ही करें, रोज कम से कम 30 से 45 मिनट तक जरूर ठहरें और टेंशन का कहें ना ना, यानी कि अगर ये सब के ध्यान रखब तो आपन सभी के दिल जो है बढ़िया धक धक करत रहे। और यही के साथ ही लेते हैं आज के अगली फरमाइश जो उनकी आई है हेमंत कुमार श्रीवास्तव भैया जी के, जो उनकी लिखा था कि सवेरे झुनझुनवा गीत सुनवा दीजिए। और यही के साथ ही जो है मीका प्रिंक हरदेव बलविंदर जयतेज गांधी चौक रोपर पंजाब से कोनो भी गीत में आप नाम शामिल होता है कहा थे, मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे रजनी खांडे तुषार खांडे समीर कोनो भी गीत में अपन नाम का शामिल करेगा कहा थे, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन नाजमा बेगम रियाज रिफाकत रिहान समरीन परवीन माहिरा नूर सुरेश गंगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी निमित जलालाबाद वेस्ट से ये भी कोनो भी गीत में अपन नाम शामिल करके कहा थे। तो चलो इनका ये गीत सुनवाई थे।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
1: टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: सुना थे सखी, सुना थे वो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
7: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
8: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
6: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
7: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या। आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: तो देखो भाई सखी सहेली, जब हमने सब है कम नमक कम तेल वाला भोजन करब, रोज 45 मिनट कम से कम टहरब, तनाव कम ले, बीड़ी सिगरेट शराब

से दूरी बनाए के रखा तो भाई दिल कैसे ना स्वस्थ रहे। बोला अगर केहू के दिल बीमार हो भी जाता है ना तो भाई डॉक्टर जो उनकी हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं और उनके साथ जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं वह वो मरीज के दिल के देखभाल करते हैं और उनके जान बचाव के पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो भाई हम सभी का उनका याद रखब, उनके सम्मान करब, कभो ना भूले के चाहे। तो भाई अपन दिल के ख्याल रखा और दूसरन का भी ख्याल रखे के कहा ये, और ये दिवस के यही संदेश भी है। और यही के साथ ही लेते हैं आज के अगली फरमाइश जो उनकी है रेलिया बैरन गाने की तय फरमाइश की तय नाम शामिल करे थे छत्तीसगढ़ पथरिया भेरवा से चंदूलाल नारायणी नोमी स्नेहा और वानिया रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशार सलमानी नौसा सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू ग्राम लसूरिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डोंगी त्यूरता डबरीवारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम जय मरकाम जोगेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा सुरेंद्र मोहन सहोदरी चंद्रपाल। तो चलो सखी सहेली इनके फरमाइश का पूरा किन जाए ई गीत के माध्यम से।

सकी सहेली अचलित है अपन रसोई की बारी और आज बतोबे हम अजवाइन के फायदे के बारे में। सगी सहेली अजवाइन पाचन सुधारे की ताय गैस और पेट फूले से राहत दे में तथा सर्दी जुकाम का ठीक करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। अच्छा पाचन की ताय आधा चम्मच अजवाइन का थोड़ा सा सेंधा नमक के माँ मिलाए के जो है ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, थोड़ा सा खाए के ऊपर से गुनगुना पानी पी लें तो पाचन मजबूत होते हैं। और यही के साथ लेते हैं अगली फरमाइश जो उनकी है सिंदूर बंगाल की ताय कार्यक्रम में जो फरमाइश करा थी वो है वह लिखा थी कि बेहद खूबसूरत लगता है आपका यह अंगना कार्यक्रम, सभी दीदी जी लोग बेहतरीन ढंग से प्रस्तुति देती हैं, दिल को छू लेने वाली मधुर अवधि भाषा में कार्यक्रम को चार चांद लग जाता है, सभी जानकारियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करता है। लिखे वाले हैं ओजस, रवि, अनिल, अशोक दुबे, आंचल दुबे, अवनी बेबी, रजत, शिवम और उनके मम्मी पापा। तो सखी सहेली ई फरमाइश का चलो सुना जाए लिखने के साथ है और फरमाइश जोन है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरेडी नाना जी बेरेडी से लिखा थे नाना जी लाम से मीना तेजस जय हर्षिता ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने अर्चना गोंडा ने प्रणय कुमारी प्रसिद्धि हीरामणि ऊंचे गांव महाराष्ट्र से देवानंद सिंधे। तो चलो सुना जाए गीत।

तो सखी सहेली अगर ठंडक लग जाए ना तो तेल का गरम करें, अजवाइन डाल के ओका पका लें, और सर्दी हो जाए तो तलवा और सीनामा उसे मालिश करें, इससे भी सर्दी दूर होते। एक ही साथ ले थे आज की आखिरी फरमाइश, जो उनकी फरमाइश कर रही हैं संतोष खंड से, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, श्रीमती अनीता बाई खंड से, प्रियंका, सुनीला, सुनीता और शशिलता जायसवाल उनके मम्मी पापा गोसाईगंज से लिखते हैं, यही गीत के फरमाइश करते हैं, मैंने रातों कहरवा खूब सुना। तो चलो सुना जाए ये गीत का।

तो देखो सखी सहेली, कार्यक्रम के समय समाप्त होते हैं और जो भी श्रोता ये कार्यक्रम में शामिल है उनका कृतज्ञ बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले कार्यक्रम में फिर नीक नीत की गीत गौनी और जानकारी के साथ ही फिर मिला जाए। तब तक के लिए मितु का दे अनुमति, नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियाँ बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियाँ और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहाँ की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहाँ कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो

0: मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना? श्रोताओ, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था, तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: Very good.
1: That you all are good. Do you like going to the garden?
2: Yes, I like it.
1: What do you see in the garden? Tell me. Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
3: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
4: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
5: I like to see butterflies.
1: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
6: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
1: Very good, that there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: So children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
2: garden.
1: Wonderful. You have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
2: Yes, ma'am.

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.

0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
1: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियाँ लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा।

0: उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
1: हाँ,
0: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
1: जी,
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी,
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
2: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
2: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
2: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
2: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
2: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
2: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
2: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
2: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
2: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
2: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें

0: एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है? हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार

0: पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी अयोध्या है। आइए सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अमृता
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सखी सहेली, और कार्यक्रम हम फिर से लेकर आ गए हैं अंतराल के बाद, है ना?
3: जी बिल्कुल। चंचल, सृष्टि की रचना जब हुई, ऐसे हमारी एक सखी ने लिख भेजा है कि तब से मनुष्यों ने खास अवसरों पर मिलजुलकर जो कार्यक्रम संपन्न किए वे कालांतर में त्योहारों का उन्होंने रूप ले लिया, और आने वाली पीढ़ियों ने नित नए प्रयोग कर उसमें कुछ जोड़ भी दिया, और अब ये कहती हैं कि उसी लोग उन्हें उसी बातों को ही आधार मानकर एक निश्चित दिन पर ऐसे आयोजनों की परंपरा करते चले आ रहे हैं, और हम आज भी पूर्वजों की जो राह है उस पर चलते हुए उन सभी परंपराओं का पालन करते हुए हम नियत तिथि पर होली दिवाली रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाते चलते आ रहे हैं।
2: और भाई जिस तरह से एक नियमित क्रम चलता रहता है त्योहारों का, हमारे कार्यक्रम में भी हमारी बातें कुछ जानकारियां और गानों का एक क्रम चलता रहता है, तो गाना सुन ले।
3: चलिए सुनते हैं।

0: तो भाई जब हम घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे नहीं पूछते कि वो कौन है, क्योंकि हम सबको जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ अजनबी चेहरे भी आते हैं और वो भी हमारे चिर परिचित बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और त्योहारों के बीच में जब अगर एक सुंदर सी साड़ी पहनने को मिल जाए ना घर की महिलाओं को, घर की एक महिला को, जो उसके जो चेहरे की मुस्कान जो होती है, वो जो खुशी होती है, वो एक अलग ही होती है। और ऐसे में अगर मोठड़ा साड़ी मिल जाए राजस्थान के प्रसिद्ध, तो फिर तो बात ही क्या है।
0: बिल्कुल, और राजस्थान की बहुत कहते हैं ना कि डिमांड वाली साड़ियों में से ये एक है, और लहरिया का ही एक वर्जन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा लहरिया होता है ना उससे मिलता जुलता ही ये होता है। लहरिया में बस सीधी सीधी लहरें होती हैं, लेकिन जो मोठड़ा साड़ी है उसमें जो लहरें होती हैं वो एक दूसरे को काटती हुई थोड़ी सी आड़ी तिरछी, और फिर वो चौकोर बन जाती हैं, आड़ी तिरछी जब काटती हैं, और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दो लहरिया साड़ी एक के ऊपर एक चढ़ा दी गई हो, और इसी की वजह से इसका जो डिजाइन है वो ज्यादा भरा भरा और आकर्षक लगता है।
1: बिल्कुल, कुछ और खास बातें हैं चंचल इस मोठड़ा साड़ी की, जैसे लहरिया से थोड़ी अलग बनाती है इसको। लहरिया में एक साथ दो रंग होते हैं, पर मोठड़ा में जहां दो रंग मिलते हैं वहां तीसरा रंग अपने आप बन जाता है। जैसे लाल और पीला मोठड़े के बीच में नारंगी आपको दिखेगा, और यही इसका असली आकर्षण भी है।
0: बिल्कुल, और मोठ राजस्थानी में किसी दाने या गांठ को कहा जाता है, और क्योंकि ये जो साड़ी होती है इसे बांधने के समय गांठें लगाई जाती हैं, और मोटी मोटी गांठें लगाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम मोठड़ा साड़ी पड़ गया। और ये साड़ी बंधेज की तकनीक से ही बनाई जाती है। इसमें कपड़े को दो बार अलग अलग दिशा में बांध कर रंगा जाता है, पहले एक रंग में रंगकर सुखाया जाता है और फिर दूसरी दिशा में बांधकर दूसरे रंगों में इसको रंगा जाता है।
1: बिल्कुल, और पहले ये साड़ियां सूती कपड़ा माने कि कॉटन में बना करती थी, लेकिन आजकल अब तो शिफॉन में भी बनने लगी है, जॉर्जेट में भी बनने लगी है ये वाली साड़ियां, और क्योंकि शिफॉन बहुत हल्की होती है और आप चाहें तो रोजमर्रा में भी इसको पहन सकते हैं, इस वजह से ही इसकी मांग भी बहुत ज्यादा होने लगी है बाजार में।
0: हाँ, लहरिया और मोठड़ा जो है ना ये ज्यादातर इसी मौसम में पहना जाता है, और ये होते हैं थोड़ी चिपचिपी गर्मी वाले दिन
1: जी।
0: तो क्या होता है कि जो ऐसी हल्की फुल्की साड़ियां हो जो हमें तकलीफ ना दें, हमें बहुत आराम एक महसूस कराए, इसीलिए सूती जॉर्जेट शिफॉन ऐसे कपड़े में इन साड़ियों की डिमांड जो है वो ज्यादा
1: होने लग जाती है। और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रंग भी इसमें है, जैसे कि पिंक रानी जो गुलाबी कलर
0: थोड़ा गहरा वाला होता ना, रानी महारानी की पिंक जिसे कहते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ में लाल पीला हरे रंग का एक अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करती है महिलाएं। तो ये गोटा पट्टी वाला मोठड़ा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रक्षाबंधन पर जो सोगी की रस्म में गोटा वर्क वाला मोठड़ा उपहार में भी दिया जाता है।
0: और राजस्थान में मोठड़ा को सुहाग और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दीपा, नई दुल्हन जब पीहर से आती है तो उसका जो पहला सावन का तोहफा आता है उसमें मोठड़ा साड़ी भी कई बार रखी जाती है, और कुछ कुछ जगह पर इसका जरूरी भी माना जाता है। सावन, तीज, रक्षाबंधन में तो पहनते ही है, इसके अलावा शादी ब्याह में भी बहुत पहनी जाती है मोठड़ा साड़ी। और राजस्थान में मान्यता ऐसी है कि सावन में लहरिया मोठड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है।
1: बिल्कुल, और एक संदेश आया है, ये कहती है कि ये पारंपरिक हस्तकला है राजस्थान की, इसमें कपड़े को एक दिशा

0: में मोड़ने के बाद दूसरी दिशा में भी लहरिया लाइन काटी जाती है। साथ में इन्होंने भी यही कहा है कि शिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन, कोटा, डोरिया जैसे हल्के मुलायम कपड़ों में पहना जाता है। इसमें गोटा पट्टी, जरी, आरी, तिरी वर्क और खूबसूरत बॉर्डर का भी काम किया जाता है, जिससे पहनने पर ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है।
1: अभी महिलाओं को कई बार लगता है ना कि हमारे वार्डरोब में साड़ी नहीं है तो ले ली जाए, कई बार हमारा बजट भी हमें लगता है कि रोक देता है, तो ये साड़ी जो है क्योंकि हल्की फुल्की भी आती है और वर्क वाली भी आती है, तो 300-400 रुपए से शुरू होकर 4-5 हजार तक आप जैसी कीमत में लेना चाहें वैसी साड़ी आप ले सकती हैं इसमें। और प्लेन, गोटा वर्क वाली और इन्हीं के अनुसार इनकी जो कीमत है वो अलग अलग मिल सकती है बाजार में। जब भी मोटर साड़ी लेनी हो तो थोड़ी सी पहचान जो है इसकी वो कर ले, और पहचान करने के लिए क्या करना है कि असली मोटरा जो है वो हाथ से बनाया जाता है, उसके जो रंग की किनारी है वो थोड़ी सी अनियमित मिलेगी आपको, और पीछे की तरफ जो है रंग थोड़ा थोड़ा हल्का दिखेगा। मशीन प्रिंट वाली जो साड़ी होती है उसके पीछे सफेद रंग रहता है, तो थोड़ी सी पहचान करके आप साड़ी लीजिए और बस उत्सवों पर, त्योहारों पर और किसी भी खास मौके पर पहन लीजिए।

0: चंचल देखिए त्योहार आए हैं, घर में बहुत साज सज्जा भी कर ली है, बहुत सारी चीजें भी बन गई हैं। कुछ आदान प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे तोहफों का?
1: तोहफों का भी होता है, और कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं हमारे पास पड़ोस में वहाँ भी वही उत्सव मनाया जा रहा है, तो कई बार जो बहुत सारे पकवान घर में बनते हैं उनका भी आदान प्रदान होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों का भी आदान प्रदान होता है। अगर मान लीजिए मेरे घर में आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी कढ़ाई मेरे घर में नहीं है, बहुत बड़ा भगोना मेरे घर में नहीं है, कितनी सामग्री बनाई जा सके, तो वो भी हम पड़ोस के घर से ले लेते हैं।

0: बार, और बहुत सारी चीजें सजावट की भी कई बार आदान प्रदान होती हैं, और जो घर में मेहमान होते हैं उनके साथ में आपसी प्रेम भावनाएं, इनका आदान प्रदान
1: होता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी श्रोता ने लिखा है कि आदान प्रदान ये विनिमय प्रथा का एक प्रकार है, जिसमें लेन देन या अदल बदल की एक प्रक्रिया है, जिसमें दो पक्षों के बीच वस्तुओं के अलावा अपने अपने विचारों का भी आदान प्रदान किया जाता है। अब वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सखी सहेली इस फेसबुक पेज पर हमारे द्वारा लिखी कमेंट उद्घोषिकाएं हमारी पढ़ती हैं, यानी सहेलियां पढ़ती हैं, तो इस प्रक्रिया में भी विचारों का वर्चुअल आदान प्रदान होता है।
0: क्या
1: बिल्कुल
0: बात है?
1: सही कहा आपने भाई, आप अगर संदेश नहीं लिखेंगे हाँ। तो फिर ये कार्यक्रम की खूबसूरती कैसे बनेगी और ये आदान प्रदान कैसे पूर्ण होगा।
0: और ये बहुत जरूरी आदान प्रदान है, और इसी को लेकर एक और संदेश है। इसमें लिखा गया है कि रिश्ते एक सुंदर आदान प्रदान है, जहाँ कोई अपना समय देता है, कोई विश्वास, कोई प्रेम बांटता है, कोई मौन में भी साथ निभाता है। इन छोटे छोटे हिस्सों में जीवन की बहुत बड़ी खुशियां बन जाती हैं।
1: बिल्कुल। एक संदेश और आया है, वो कहते हैं कि पहले आदान प्रदान पड़ोसी में चीजों का होता था, चीजों के बीच भावनाओं और विचारों का भी हो जाता था, मन की बातों का आदान प्रदान होता है। ये रिश्ते कभी कभी इतने अंतरिम हो जाते हैं कि अपनी रास की बातें भी हम पास पड़ोसियों से कर लेते हैं। शायद इसी आदान प्रदान से रिश्तों में अपनापन आता है। पर अगर कभी मतभेद हो जाए तो यही राजदार अपनी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आदान प्रदान तो करें, साथ में उन्होंने एक सावधानी दी है कि थोड़ा संभल कर करें, ये हमारा अनुभव है।
0: एक अन्य संदेश में एक बात कही गई है, आदान प्रदान हमारी आवश्यकता भी है, कर्तव्य भी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं जहां हमें तमाम जरूरतों के लिए एक दूसरे से लेना भी पड़ता है और उनकी जरूरत होने पर उन्हें देना भी पड़ता है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चीजें अपने सामर्थ्य से हम खरीद लाते हैं या उत्पादित भी कर लेते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें अक्सर सबसे ज्यादा आदान प्रदान में लेना देना पड़ता है। जैसा कि हम सब एक शादी में तमाम पैसे खर्च करने के लिए एक दूसरे लोगों से मदद ले लेते हैं, बाद में उन्हें वो पैसा लौटा भी देते हैं, इसी तरह से उनकी डिमांड पर कई बार उनके लिए पैसे की व्यवस्था कर देते हैं और वो आदमी भी हमें बाद में भुगतान कर देता है। तो बिल्कुल इस तरह का जब आदान प्रदान होता है तो रिश्तों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए और हमारे कार्यक्रम का जो तालमेल है वो ना बिगड़ जाए, इसलिए गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए सुनते हैं।

0: भाई हमने बहुत सारे त्योहारों की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आदान प्रदान की बात भी कर ली, जो त्योहार हमारे धरोहर है परंपरा इनकी बात भी कर ली, हम क्या पहनेंगे मोढ़ा साड़ी उसकी बात भी कर ली, लेकिन अभी तक खाने पीने की कोई बात नहीं हुई।
1: अरे भाई हो रही है ना, देखिए मोदक बनेंगे, बहुत प्रकार के मोदक होते हैं, तो जिसमें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि उकड़ी चे मोदक होते हैं जो कि भाप में पके हुए सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक मोदक हैं।
0: और ये उकड़ी चे मोदक यानी कि चावल के आटे के मोदक होते हैं जो खास तौर पर महाराष्ट्र में इन्हीं मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा
1: जी
0: को।
1: ये बता रही है कि चावल के आटे के आवरण और ताजे नारियल गुड़ की भराई वाले ये मोदक भाप में पकाए जाते हैं। उसके अलावा तले हुए मोदक भी होते हैं, इन्हें गेहूं के आटे या मैदे से बनाकर तेल घी में आप तल के बना सकते हैं। फिर मावा यानी कि जिसे खोया बोलते हैं वो मोदक भी होते हैं, तो इसमें चीनी और मेवो को झटपट तैयार किए जाने वाले ये मोदक होते हैं, मतलब अंदर जो फीलिंग है वो मावे के साथ चीनी और सूखे मेवो की होगी। और बेसन के भी मोदक बनते हैं जिसमें भुने हुए बेसन और घी से लड्डू की तरह बनाए जाने वाले मोदक होते हैं। चॉकलेट मोदक भी होते हैं जिसमें चॉकलेट के स्वाद वाले आधुनिक और इंस्टेंट मोदक बनाए जाते हैं। साथ में हमारी सखी बता रही है कि ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकते हैं जिसमें अंदर जो भरावन है वो ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम पिस्ता इन सब का भी आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रकार बता दिए।
0: इसी तरह से प्रकार ही बताने के लिए एक और संदेश आया है और इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं, सभी के घर में मोदक का स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है, बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए मोदक अलग अलग तरह के स्वाद में नजर आते हैं। चावल के आटे के आवरण वाले, नारियल की गुड़ की भरावन वाले मोदक होते हैं, तले हुए मोदक में मैदे गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और भरावन नारियल या ड्राई फ्रूट्स की जाती है और ये घी में तले जाते हैं। मावा मोदक भी बनते हैं जिनमें मावा चीनी और मेवे से के मिश्रण से इन्हें बनाया जाता है। चॉकलेट मोदक जो है बच्चों के बड़े लोकप्रिय होते हैं जो चॉकलेट और मावा से बनाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट के मोदक में काजू पिस्ता बादाम इस तरह की चीजों से इनको बनाया जाता है। तिल और गुड़ के मोदक भी बनाए जाते हैं और तिल गुड़ से पारंपरिक स्वाद वाले मोदक बन जाते हैं। खोया पनीर या दूध वाले मोदक भी होते हैं जो दूध से बनी सामग्री से तैयार किए जाते हैं।
1: जी हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोदक के कई प्रकार होते हैं पर हम कैसे बनाते हैं, वो बता रही हैं कि हम मावा में सभी प्रकार के सूखे मेवे डालकर और चीनी मिलाकर घी में तलकर बनाते हैं। अगर चीनी मावा में न डाले तो उसकी चाशनी बनाकर मोदक को घी में तलकर इसे चाशनी में डाल देते हैं और मोदक को चाशनी में लपेट देते हैं, तो वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं इनके घर में, इस तरह से हमारी सखी ने लिखा है। और साथ में बता रही हैं कि बच्चों और युवाओं के बीच में ये चॉकलेट मोदक है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें चॉकलेट और बिस्किट का या फिर नट्स जो आप सूखे मेवे हैं उसका मिश्रण भरकर मोदक का आकार दे सकते हैं। फिर एक मोदक का प्रकार बताया है रसवंती या रसमलाई मोदक, इसमें ताजे पनीर मिल्क पाउडर चीनी और केसर पिस्ता के मिश्रण से बनने वाला है ये मोदक, बहुत नरम और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा मावा और पनीर मोदक भी बनता है जिसमें मावा और यानी खोया चीनी इलायची पाउडर मिलाकर आसानी से जो मोदक का मोल्ड होता है ना उससे उसकी मदद से बन जाता है। फिर एक और है जिसमें कि बेसन सूजी वाला, जैसे कि हमारी एक और सखी ने लिखा था कि बेसन और बारीक सूजी को घी में भूनकर और चाशनी या बूरा मिलाकर सांचे में आप इसे तैयार कर सकते हैं।
0: तो चलिए ये तो हुई बहुत सारे मोदक की बात, अब एक गीत सुन लिया जाए।
1: चलिए

0: आज के मेहमान। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो साहित्यकार हैं, कथक की नृत्यांगना और कथक पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और वायुसेना से भी उनका अच्छा खासा जुड़ाव रहा है और यायावरी उनकी विशेषता है। वो है जानी मानी साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्ते ममता, बहुत आभार आपका।
0: मनीषा जी, चलिए आपको हम बचपन के गलियारों में ले चलते हैं जहां से आपने रेडियो में कदम रखा था और मेरे ख्याल से राजस्थान आकाशवाणी। तो किस जगह पर आपने पहली बार अपनी आवाज रेडियो पर सुनी दी और कैजुअल अनाउंसर के रूप में थी?
1: बिल्कुल बिल्कुल ममता, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और अगर मैं बचपन में कहूँ तो बच्चों के कार्यक्रम आते थे तो हम स्कूल की तरफ से आकाशवाणी में जाते ही थे। और उदयपुर की बात है, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी तब कैजुअल अनाउंसर्स के लिए एक विज्ञापन निकला था और हमारा कॉलेज और हॉस्टल और आकाशवाणी एकदम पास पास ही थे तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने ऑडिशन दिया और हो गया। उसके बाद मैं लंबे समय तक, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई एमफिल नहीं कर लिया तब तक मैं आकाश

0: बचपन से लिख ली। जब मैं किशोरावस्था में थी तब माँ कहती थी कुछ लिखो, क्योंकि मेरी माँ को भी साहित्य में बहुत रुचि थी और वो कविताएं लिखती थी, तो मैं माँ की डायरी देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी कविताएं लिखूं। तो मैंने किशोरावस्था में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम में जो मछली है उसको और एक किशोरी लड़की की जो मानसिकता है उसको कंपेयर करते हुए बचपन में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम।
1: जी जी
0: हाँ, बस ये कि मेरा मन इस एक्वेरियम में मचलती हुई मछली जैसा है, उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी। और तब मैं 12 साल की थी तो मैंने कविताएं पहले लिखना शुरू किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे कविताओं में ज्यादा जगह नहीं मिल पाती अपने आप को अभिव्यक्त करने की, तो मैं कहानी की तरफ आई।
1: जी, तो पहली कहानी छपने की बड़ी लोगों को खुशी होती है और इंतजार भी होता है, तो पहली कहानी छपने का वो इंतजार और वो खुशी साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के
0: बिल्कुल
1: साथ।
0: ममता, मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी और मैं भेजा करती थी, साक्षात्कार एक पत्रिका होती थी, भैरव जी उसके संपादक थे, हंस में मैं बहुत सारी कहानियां भेजती थी, और तुम हैरत में पड़ जाओगी कि तब संपादक बड़े कड़क होते थे और मेरी बहुत सारी कहानियां वापस आ जाती थी, और उस निराशा को मेरे जो सहयात्री हैं अंशु वो देखते थे, तो कई बार वो जो खेत सहित पत्र आता था ना उसको ऑफिस में ही फाड़ देते थे, आके बताते नहीं थे कि कहानी लौट आई है। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसको स्वीकार किया, मतलब 5-6 कहानियों के खेत सहित वापस आने के बाद एक कहानी प्रेत कामना राजेंद्र यादव जी ने स्वीकार की, और जब वो छपी तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था। और सच पूछो तो मैं साहित्य की दुनिया में बस एक कहानी के लिए आई थी, वो अलग बात है कि साहित्य की दुनिया ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो कहानी छपी उसके बाद मेरे पास फोन आया कि अगली कहानी कब। तो मुझे लगता है कि आपकी जो नियति होती है वो निश्चित कर लेती है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने तो कथक भी चुना था अपने लिए, मैंने उसके अलावा बहुत सारी रेडियो में भी जाने का सोचा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ क्योंकि वायुसेना अधिकारी की पत्नी थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि हर 3 साल बाद सामान बांधो और चल पड़ो
1: जी।
0: तो मुझे लगा कि लिखना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहानी लिखी और वो छपी।
1: आपने जिक्र किया अंशु जी का जो आपके पति हैं, और वायुसेना का जिक्र किया कि वायुसेना अधिकारी, तो वायुसेना में पति होना बहुत ही कड़क मिजाज होता है और माहौल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो कैसे आपने साधा, अपने जीवन को कैसे जोड़ा?
0: मैं सच बताऊं ना तो मैं जितने सैन्य अधिकारियों से मिली हूँ उनसे नरम मिजाज कोई नहीं होता, वो होते होंगे अपनी कार्यशैली में डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासन होता है, समय की एक सीमा रेखा को वो समझते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत औपचारिकताएं भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेना में पत्नियों का सम्मान बहुत है, और क्योंकि हम बहुत सारे समय अकेले रहती हैं तो आपस में एक परिवार की तरह रहता है। तो अंशु से तो मतलब अगर मैं बात कहूँ तो उनसे बड़ा मेरे लिए सपोर्टर कोई नहीं रहा, उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया कि मैं लिखूं, और तुम्हें याद होगा कि मैं एक हिंदी नेस्ट से एक साहित्यिक पत्रिका वेब पोर्टल जो कि हिंदी का पहला वेब पोर्टल है वो हमने शुरू किया था, वो अंशु ने ही चाहा था कि मैं साहित्य में इस तरह से इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने उनकी सहायता से उसे आरंभ किया था
1: जी।
0: तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, कड़क वो नहीं है बिल्कुल भी, और अनुशासित है।
1: वैसे तो बहुत नरम दिल लगते हैं बातचीत में, क्योंकि हमारी भी मुलाकात हो चुकी है, और आपकी जो एक कार्यशाला है उस कार्यशाला में बाकायदा वो सहयात्री से नजर आते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पति का साथ आपकी निजी जिंदगी में तो होता ही है, लेकिन आपकी व्यावसायिक जिंदगी में जहाँ पे आपका लेखन है वहां पर अगर पति पूरी तरह समर्पित हो तो ये बड़ी बात है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और अब बात चल रही है अंशु जी की, आपके जीवन साथी की, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक गाना होना चाहिए उनके नाम।
0: बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हमारी सगाई हुई थी तो मुझसे कहा गया कि कोई गाना सुनाइए, तो मुझे उनकी आंखें देखकर एक ही गाना याद आया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
1: तो सुनते हैं घर फिल्म का ये गाना।

0: गाने के बाद मनीषा जी हम आपके साहित्यिक दुनिया पर दस्तक देते हैं। आपके 7 उपन्यास पूरे हो चुके हैं और अपने साहित्य की दुनिया में उपन्यास लिखना बहुत चुनौती की बात होती है, तो कहाँ से शुरू करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी लेखन यात्रा बहुत लंबी है। हम शिगाफ से शुरुआत करते हैं, कैसे आपके जहन में ये विचार आया, विस्थापन की बातें हैं इसमें?
1: बिल्कुल ममता, अगर मैं कहूँ तो कश्मीर हम लोग रहे हैं तो,
0: और कश्मीर का पूरा परिदृश्य है।
1: हाँ, कश्मीर मेरा रहना हुआ और वहाँ के अनुभवों को देखना हुआ, तो मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि जब भी कोई एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पेड़ भी उस विस्थापन को झेलता है। तो जब वहां से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने ही उस आतंकवाद का सारा दुख झेला है, जो लोग रह गए थे और उन लोगों ने भी अपनी खुली जड़ों के साथ उस विस्थापन को झेला है वहीं रहकर। तो कश्मीर शिगाफ जब मैंने लिखा तो वो एक दरार की बात है, एक जमीन के भीतर पड़ जाने वाली दरार की बात है जिसका भरना मुश्किल होता है
0: जी।
1: तो मैंने उसको आंखों से देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पूरी घटनाएं देखी, काफी घटनाएं देखी। वो एक ऐसा समय था जब आपकी अगर श्रीनगर या अनंतनाग या अवंतीपुर पोस्टिंग होती है तो आपको सशस्त्र गाड़ियों में स्टेशन से सिर्फ वहां जाते थे, और मैंने कोई कश्मीर नहीं देखा था तब। पोस्टिंग हुई 1-1.5 साल और बस वहां रहे और आ गए, ऐसा मतलब कोई कश्मीर देखने की जो उत्साह था वो देख नहीं पाए। लेकिन उसके बहुत सालों बाद जब मैं लेखक बन गई, तो जब मैं युवा लेखक थी तो साहित्य अकेडमी की एक कार्यशाला हुई।
0: अभी भी युवा लेखक हैं आप कोई कह नहीं सकता कि आप
1: तो उस कार्यशाला में दोबारा से पहलगाम जाना हुआ, तब मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे जहन में आई कि मैं उनको लिखूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और वो ब्लॉग का जमाना था तो ब्लॉग पे काफी चीजें, मेरे को लगता था कि ब्लॉग को एक फॉर्म बना के शिगाफ नाम से उपन्यास लिखा जाए, तो मैंने उसको लिखा दो सहेलियों के बहाने से।
0: तो और ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ, लोगों ने इसे एक पाठशाला की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके और हम सबके बाद की पीढ़ी के युवा लेखक आते हैं, तो वो उपन्यास लिखने के लिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ कि मैंने भी उसे इसलिए पढ़ा कि देखती हूँ उपन्यास लिखने की शैली कैसी होती है और उसमें से क्या कुछ सीखा जा सकता है, तो मेरे लिए भी बहुत ये बड़ी बात है और इस उपन्यास को मैंने भी बहुत पसंद किया है। अब हम आपके उपन्यास स्वप्नपाश की बात करते हैं, जो मानसिक तनाव की और एक तरह से मानसिक रोग की बात भी है उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो कैसे आपने लिखा, क्या किसी डॉक्टर से सलाह ली, क्या आपके जहन में कहाँ से आया किरदार ये?
1: दरअसल सिज़ोफ्रेनिया शब्द पहले शिगाफ में आया था
0: जी।
1: तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, पर मुझसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं,

0: सेना में ही थे डॉक्टर दीक्षित, उन्होंने पूछा क्या तुम जानती हो सिज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता कैसे है. मैंने कहा नहीं. तो उन्होंने मुझे कुछ केसेस पढ़ने के लिए दिए
1: जी.
0: तो मैं चौंक गई कि ऐसे भ्रम होते हैं लोगों को कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनके सामने कोई बैठा है जो कि है ही नहीं. एक काल्पनिक पात्र उनके जीवन में हमेशा, या कई कई काल्पनिक पात्र हमेशा साथ चलते हैं. तो ऐसा होना, जब मैंने वैसे केस हिस्ट्रीज पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में मनोविदलन या मानसिक जो विक्षेप है उन पे बहुत कम किताबें हैं. तो क्योंकि मैं फिर यहाँ विज्ञान काम आया, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, तो मेरी उत्सुकता थी इस मनोविकारों के बारे में जानने की. तो मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने कुछ पात्रों से मिली. मैं
1: जी
0: एक ऐसे पात्र से मिली जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था. उसके बारे में मैंने जाना कि वो रास्ते में चल रहा था और रास्ते भर बात करता जाता था, सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे. तो वो अपने आप से बात करता था. हम पहले कहा करते थे ना कि ये लोग पागल हैं या ये लोग उनके ऊपर कोई साया है, तो वो सब नहीं होता था. तो मैंने बहुत गहरे से पढ़ा. तो जो सिज़ोफ्रेनिक होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनको वो सब चीजें दिखाई देती है. तो जैसे होता ना कि हमारी कोई अखबार छप के आया, उसमें डबल छपाई आ जाती है. तो ऐसे ही केमिकल लोचा है जिससे दिमाग में भ्रम पैदा होते हैं. तो मुझे लगा कि ऐसे भ्रमों के साथ जीना कितना मुश्किल होता होगा. तो मैंने गुलनाज फरीबा नाम के एक कलाकार को लिया
1: जी, जी.
0: क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बहुत ब्रिलियंट, बहुत प्रतिभाशाली लोगों में सिज़ोफ्रेनिया होता है. अगर हम देखें तो बहुत सारे पेंटर्स वॉन गॉग सहित सिज़ोफ्रेनिया के शिकार रहे हैं. तो तब मैंने उसको एक पेंटर बनाया और उसके जीवन को लिखा. तो ये लिखना मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था, इतना आसान नहीं था.
1: और पढ़ना भी बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे तो कुछ घटनाएं बहुत लोमहर्षक, मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या. जैसे वो बचपन की जो कुछ बातें उस कैरेक्टर की, लड़की कैरेक्टर है, उसके बचपन की यादें जो आपने ताजा की करवाई, कि मतलब डॉक्टर पूछ रहा है सवाल और वो अपनी यादों में जाती है, तो वो सब भी लगता है कि वो लड़कियों के साथ अमूमन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पुरुष किसी न किसी बहाने स्पर्श करते हैं, तो वो बड़ा त्रासद होता है. तो
0: अवांछित स्पर्श.
1: हाँ, और वो समाज को एक संदेश भी देता है उपन्यास. ऐसे ही एक उपन्यास है पंचकन्या, जिसे आपने लिखा है, जिसमें स्त्री पात्र हैं. तो क्या स्त्री पात्रों के जरिए कुछ समाज को संदेश भी देना चाहती हैं?
0: बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती थी कि जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, जिसको हम आयात कर लेते हैं, हम इसको पाश्चात्य दुनिया से लाते हैं कि हम सिमोन द बोवार और वर्जीनिया वुल्फ और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट जो पाश्चात्य उसमें हुई है
1: दार्शनिक,
0: तो हम उसको हूबहू भारत पे लाके लागू कर देते हैं. वही मैंने एलिस वॉकर को देखा, उन्होंने कहा कि हम लैटिन अमेरिकन औरतों का फेमिनिज्म पाश्चात्य आधुनिक स्त्रियों से अलग है, क्योंकि हम नाचना पसंद करती हैं, हम श्रृंगार करना पसंद करती हैं,
1: और गहने पहनना,
0: गहने पहनना. और वहां पे अगर पाश्चात्य बिल्कुल यूरोपियन अगर हम फेमिनिज्म की तरफ देखें, तो वहां तो वो सजने को पुरुष के लिए मान लेती हैं. तो मुझे लगा कि हमारा अपना फेमिनिज्म कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में भी रहा होगा. ऐसे ही तो नहीं हमारे यहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी या लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां हुई हैं. तब मैंने एक लेख पढ़ा था पंचकन्याओं, द वुमन ऑफ सबस्टेंस. एक आईएएस अधिकारी थे प्रदीप भट्टाचार्य जी, उन्होंने इन पंचकन्याओं पर लेख लिखा था कि ये वे स्त्रियां हैं, ये पांचों जो कन्या कही गई, लेकिन इनसे एक से अधिक पुरुषों से इनके संबंध रहे. तो मैं चौंक गई कि ऐसे फिर क्यों कन्या कहा गया होगा. तो उनका कन्या होना उन पुरुषों की छाया में होने से नहीं था, वो अपने आप में कन्या थी.
1: जी जी.
0: कि मतलब उनका पुरुष की छायाएं उनके ऊपर नहीं थी सतियों की तरह, वो अपने आप में आजाद स्त्रियां थी. और पुराणों में कहा जाता है इन पांचों स्त्रियों के स्मरण मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं. ये स्त्रियां कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी.
1: क्या बात है.
0: हाँ, तो इन सब के पैरेलल मैंने आधुनिक स्त्रियों को गढ़ा और इस उपन्यास को लिखा. तो ये मेरा शिगाफ के बाद दूसरा उपन्यास था जिसे लिख के मुझे संतुष्टि हुई.
1: जी, और आगे भी उपन्यास की यात्रा जारी है. यहाँ पर हम एक विराम देते हैं और एक गाना सुनते हैं. कौन सा?
0: बिल्कुल, एक गाना मुझे गृह प्रवेश फिल्म का बड़ा पसंद था. आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, लोग कहते हैं कि पत्थर के खुदा होते.
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना.

0: आप अगर आप न होते तो क्या होते, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक साहित्यकार न होती तो क्या होती, क्योंकि आपने कथक की दुनिया में भी कदम रखा था और विशारद किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए।
1: मैं बहुत कुछ होना चाहती थी ममता, मैं यकीन नहीं करूंगी मैं मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती
0: क्या बात है
1: लेकिन पापा के एक थप्पड़ ने और डांट ने कहा नहीं वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय नैतिकताओं का जमाना था, लड़कियों को बहुत सुरक्षित रख के चलने का जमाना था। और मैं एक बहुत छोटे शहर राजस्थान के एक बहुत छोटे कस्बे से आती हूँ, चित्तौड़गढ़ से
0: जी,
1: तो जहाँ पे सोच पाना भी मुश्किल था कि आप मुंबई जाओगे और मॉडलिंग करोगे। उसके बाद फिर मेरे को डांस मेरा दूसरा पैशन था, तो कथक मैंने सीखा, तो आधा कथक मैंने शादी से पहले कॉलेज टाइम में सीखा और आधा शादी के बाद बच्चों को थोड़ा स्कूल भेज के दोबारा सीखा
0: जी,
1: तो मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी।
1: तो बहुत सारे ऐसे सपने थे लेकिन अंततः मेरे हिस्से में एक डेस्क आई और पेन आया और कलम आई कि मुझे लिखना है। तो कथक की ये बातें कि मुझे संयोग से ग्वालियर में रायपुर घराने के एक टीचर मिल गए थे
0: जी,
1: तो मणिका जी थी, और तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया और मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी। तो बात कथक की चली है तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कथक में जब कोई इस तरह मतलब विशारद किया है तो बड़ी बात है, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्टेज परफॉर्म करूं और कोई बड़े आयोजन

0: में भाग लूं, हिस्सा लूं।
1: वही बात फिर आया भरी की आ जाती है ना कि जैसे ही ऐसा अवसर आया कि 3 साल हो, मतलब मेरे को सीखते हुए 6 साल हो गए, हाँ। तो ट्रांसफर का फरमान आ गया। और होता यह कि आप अपने गुरुजी के साथ ही आप सामूहिक कथक एकल तो होता ही है, और आरंभ में आपको सामूहिक प्रस्तुतियां देनी होती है। तो ट्रांसफर हो गया और हमारा जो समूह था उससे मेरी दूरी हो गई, तो वो कथक वहीं छूट गया। लेकिन मैंने छोटे बच्चों की क्लासेस ली और छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ कोरियोग्राफीज की।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मुझे याद है कि मैं अपने जो मनिका मैम थी उनके यहाँ जाती थी, तो मैं कथक पे भी किताबें पढ़ना पसंद करती थी। वो कहती हम लड़कियों को कहते रहते हैं किताबें पढ़ो, जो कथक का इतिहास है, तुम ही एक हो जो ढेर ढेर सारी किताबें ले जाती हो। तो तब तक मैंने, जब तक विशारद किया, मैं ना बहुत सारा कथक का इतिहास, बहुत सारा विश्लेषण वो पढ़ चुकी थी। और अगर मैं कहूँ कि उस इतिहास और विश्लेषण के चलते फिर मैंने बिरजू महाराज पे एक किताब लिखी, बिरजुलय।
0: जी जी।
1: तो मेरा सारा फिर वो रिव्यू और समीक्षा और कलात्मक समीक्षा, कलात्मक वैचारिक की तरफ ध्यान चला गया
0: जी।
1: फिर मैंने प्रेरणा श्रीमाली जी का लंबा इंटरव्यू किया, बिरजू महाराज पे किताब लिखी। तो मेरा जो कथक करने का और मंच का जो शौक था
0: पूरा
1: वो लेखन की तरफ चला आया। और आज भी मैं अगर कला वैचारिकी पे कथक पे लिखूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
0: बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना कि मेरे हिस्से में लेखन आया, मेरे ख्याल से कि अगर ये ना आता तो हम सब लोग वंचित रहते। और आपने लेखन की दुनिया में अपना नाम दर्ज किया विशिष्ट तरीके से, और महिलाओं के लिए खासतौर से ये प्रेरणा की बात है। यहाँ पर हम एक गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि बात कथक की चली है और कोई गाना ना हो जिसमें नृत्य वाली बात ना हो तो फिर अधूरा सा लगे।
1: आम्रपाली फिल्म बहुत पसंद थी और मैं उसमें वैजयंती माला के डांसेस देखती रह जाती थी, और मुझे जो बहुत पसंद था, और मैंने कॉलेज में इस गाने को एक प्रतियोगिता में किया भी था और प्रथम पुरस्कार मिला था मुझे, नील गगन की छाओ में रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
0: क्या बात है। वैसे कथक सीखा है आपने तो निश्चित रूप से डांस के साथ थोड़ा थोड़ा तो गुनगुनाती होंगी, और हमने सुना है, अगर ये गुनगुना के आप सुनाए तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: ये तो बहुत ऐसा क्लासिकल गाना है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नी

0: थे क्योंकि साहित्य की दुनिया में अपने श्रोताओं को बता दें जो साहित्य में दखल नहीं रखते कि मनीषा कुलश्रेष्ठ को इन दिनों साहित्य की मल्लिका कहा जाता है।
1: अरे
0: तो आप मल्लिका के बारे में बताइए, कहाँ से इंस्पायर हुई, क्योंकि ये एक यथार्थवादी उपन्यास है।
1: बिल्कुल, हुआ ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में बहुत पहले मल्लिका पे एक आलेख आया था जिसे मैंने पढ़ा था। उसके बाद कथादेश पत्रिका आती है, उसमें मल्लिका पर एक अंक निकला था, मल्लिका और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे। तो मैं बहुत उत्सुक हो गई थी कि मल्लिका पत्नी तो नहीं थी, अगर हम उनको कहें कि वो उनकी प्रेरणा थी, तो उनका भारतेंदु जी पे असर और मल्लिका पे जो जितने आलेख मैंने पढ़े तो मुझे उसने बड़ा आकर्षित किया कि ये मल्लिका कैसी रही होंगी जिन्होंने भारतेंदु जी के लिए पहले अनुवाद किए बंगला से हिंदी में और फिर हिंदी में खुद उपन्यास लिखे और कुछ पत्रिकाएं संपादित की और लगातार भारतेंदु जी के साथ में वे बनी रही। तो उनका एक फोटो भी उसमें छपा करता था, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक हल्की सी उदास स्त्री जो बाल विधवा रही थी। तो मुझे मल्लिका के इस चरित्र ने सालों सालों सालों हॉन्ट किया, मेरे अंदर रही और हमेशा मुझे कुरेदती रही। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, बहुत सारी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनकी जीवनियां, आत्मकथा तो वो नहीं लिख सके थे, जीवनियां जो थी वो मंगवाई मैंने श्याम सुंदर दास जी की और ब्रजरतन दास जी की। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उन किताबों में ये हुई कि जहां मल्लिका का जिक्र था उन अध्यायों का नाम था चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा। तो ये बात मुझे आहत कर गई। तब मैंने मल्लिका का लिखा हुआ पढ़ा, जितने भी उनके आधे अधूरे कुछ पूरे उपन्यास हैं वो मैंने पढ़े, और जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि मल्लिका के अंदर एक कमाल का पोटेंशियल था लिखने का, और उनकी दृष्टि उस समय में स्वतंत्रता से पहले उस समय में इतनी सुलझी हुई और खुली हुई थी कि वो बहुत अच्छे से स्त्री अधिकारों पे लिख सकती थी। तब मैंने सोचा कि मैं मल्लिका के जीवन पे लिखूं, लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि मल्लिका का बचपन, मल्लिका के बनारस आने से पहले का जीवन किसी को कुछ नहीं मालूम था, वो सब मुझे कल्पनाओं से और थोड़े तथ्यों से बुनना पड़ा। मैंने कहीं पढ़ा कि वो बंकिम जी के ही कुल से कहीं दूर से संबंधित थी, तो मैंने उसमें बंकिम जी को भी एक पात्र के तौर पर रखा और मल्लिका काफी करीब उनको बताया कि मल्लिका उनसे प्रेरणा लेती थी। और मजेदार ये बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बंकिम के उपन्यासों का मल्लिका की सहायता से अनुवाद भी। और एक और जो बात है, उपन्यास शब्द हिंदी साहित्य में प्रेमिका के जरिए आया उपन्यास, क्योंकि अपने यहाँ बंगला में नॉवल को उपन्यास कहते थे, बाकी गुजराती और मराठी में नवल कथा, हिंदी में आख्यान ही कहा जाता था। तो जब मल्लिका आई तो ये इस पूरी विधा का नाम अपने साथ लाई।
0: क्या बात है, ये जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, लेखन के साथ जो लेखन की जो परतें होती हैं वो लेखक ही बता सकता है, पाठक उसे पढ़ता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो एक लेखक ही बता सकता है।
1: मल्लिका लिखने के दौरान ना मुझे बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए, जैसे कि मैंने उसमें एक सीढ़ियां रची, क्योंकि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर कभी पहले नहीं देखा था, तो मैंने ऐसी सीढ़ियां रची जिनसे होके मल्लिका सीधे भारतेंदु जी के कमरे में जाती थी बिना उनकी पत्नी को पता चले, और भी लेखक उसी से जाते होंगे, मैंने ऐसी कल्पना की। और जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जब मल्लिका का वहां पे विमोचन हुआ और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो सीढ़ियां वहां थी।
0: गजब, क्या बात है।
1: तो ऐसे ऐसे अगर मैं कहूँ कि इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: और वो उपन्यास खूब चर्चित भी हुआ, सराहा भी गया, निश्चित रूप से जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें पढ़ना चाहिए, तो जो आपकी बातें हैं उन बातों से तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे और एक खास बात पता चलेगी कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में उपन्यास के माध्यम से जानना एक अलग तरह का अनुभव होता है। आपकी अन्य कहानियों में भी मनीषा जी सूक्ष्म परिदृश्य होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं तो शब्दों के माध्यम से दृश्य देखते हुए चलते हैं, और स्त्री पुरुष संबंधों को भी बहुत गहराई से आपने छुआ है। आप अपने शब्दों में बताइए कि कौन सी वो कहानियां हैं जिनमें ये सूक्ष्म दृष्टांत हम देख सकते हैं।
1: सबसे पहले तो कठपुतलियां ही, जिसे मेरी प्रतिनिधि कहानी कहा जाता है
0: जी।
1: तो कैसे एक ग्रामीण लड़की की शादी एक कठपुतली वाले से हो जाती है और वो अपने आप को महसूस करती है कि उसके तो धागे बांध दिए।

0: है और उसकी विवाह से पहले का एक प्रेमी होता है, वो उसे मिलती है. ऐसी कहानी है जिसमें कोई विलन नहीं था, उसमें समय विलन है. तो वो लिखने में मुझे आनंद आया क्योंकि मैं मरुस्थल के उन दृश्यों से वाकिफ हूँ. मैंने वो आंधियां देखी हैं, पीली आंधियां जिनमें घिर के मटके से पानी भर के लाने वाली स्त्रियां घिर जाती हैं और खो जाती हैं.
1: क्या बात
0: तो
1: है? राजस्थान
0: तो मैं मरुस्थल रचना चाहती थी. मैं वो दृश्य रचना चाहती थी जो हिंदी के पाठक ने नहीं पढ़े थे. तो मैंने इसलिए भी कठपुतलियां लिखा. और खाप पंचायतों का दौर था तो वहां पर क्योंकि वो अनचाहा गर्भ है उसे सुगना को, तो उसके पर इल्जाम लगता है और उसकी हथेलियों पे गर्म ईंट रखने का एक दृश्य है. तो वो मैंने रचा, एक आंधी का दृश्य रचा. तो कठपुतलियां मेरी आरंभिक कहानियों में से है. तब मुझे पता चला कि कहानी में दृश्यात्मकता की कितनी आवश्यकता और कितना महत्व होता है, क्योंकि वो दृश्य आपको उनमें एक छोटी सी खिड़की खोलते हैं और कहानी में प्रवेश देते हैं. तो बतौर पाठक भी मुझे वो कहानियां पसंद आती हैं जिनमें सूक्ष्म दृश्यात्मकता हो. जैसे उसमें एक सांप है जो टेढ़ा चलने वाला सांप है जिसको साइड वाइंडर कहते हैं. तो वो सांप क्योंकि वो मरुस्थल में ही मिलता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है.
1: क्या बात है.
0: तो आप सूक्ष्म प्रकृति को भी वहां पे पात्र बनाएं. और कोई भी दृश्य रचे तो हमेशा कहा जाता है ना, कहानी लिखिए नहीं, दिखाइए. तो मैं इस बात में बहुत गहरा यकीन करती हूँ कि कहानी को दिखाया जाए.
1: क्या बात है. तो आपकी बातों को सुनते हुए हमें खुद लग रहा है कि मैं एक खुद पाठक बन गई हूँ और आपकी कहानियों को याद कर रही हूँ. वो दृश्य मेरे सामने चल रहे हैं कि सचमुच लिखते समय ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए. जो हमारे लेखन की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ये एक मास्टरपीस है ये बातें, और पाठशाला की तरह ये, और रेडियो सुन सुन के तो बहुत कुछ सीखा जाता है. तो आपकी ये बातें सुनकर हमें लगता है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग सीखेंगे. या अब हम आपके इस पर आते हैं, शाल भंजिका. तो शाल भंजिका के बारे में भी बताइए कि कैसे आपके मन में विचार आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको लिखने की.
0: शाल भंजिका की प्रेरणा, क्योंकि शाल भंजिका तो एक प्रेम कथा है, तो कोई इसके लिए एक खास किस्म की ऐसे प्रेरणा या इस किताब ने मुझे लंबा अपने भीतर रखा और उसके बाद मैंने रचा, ऐसी बात इसके साथ नहीं थी. इसको मैं सीधे ही लिखती चली गई क्योंकि मेरे पास
1: मुश्किल होता है प्रेम कहानी लिखना.
0: रविंद्र कालिया जी का फोन आया था कि मुझे तुम्हारा एक लघु उपन्यास चाहिए जो मुझे ज्ञानोदय में छापना है पूरा का पूरा. तो उस दबाव के तहत तब मैं देखती थी कि फिल्म मेकर्स, तब नए नए फिल्म मेकर्स आए थे और उनकी हिंदी फिल्म में ही और विदेशी फिल्मों में भी वो अलग तरह से स्त्रियों को अपनी कहानियों में ला रहे थे. तो मैंने एक फिल्म मेकर और उसकी पूर्व प्रेमिका जिसको वो रचना चाहता है, वो अपनी फिल्म में लाना चाहता है, उसके लिए वो जीवन भर भटकता है, ढूंढता है वैसी ही कोई पात्र. तो मुझे लगा कि ये जो तलाश है इसको मैं लिखूं. और ये अनायास ही ऐसे ही लिखी गई छोटी सी किताब है. और सब इसको पढ़ते हैं तो पूछते हैं शाल भंजिका नाम क्यों, क्योंकि शाल भंजिकाएं वो होती हैं जो एक डाल को पकड़ के खड़ी होती हैं. बौद्ध काल की मूर्तियों को कहा जाता है जो उर्वरता का प्रतीक है. इसमें जो मेरी नायिका पद्मा है हमेशा एक पेड़ की डाल पकड़ के फोटो खिंचाती है.
1: अच्छा.
0: तो वो जो फिल्म मेकर है वो हमेशा कहते हैं तो हमेशा फोटो खिंचाते हुए शाल भंजिका क्यों बन जाती हो. तो एक सिंबॉलिक तरीके से इसका शीर्षक आया है
1: जी. और कितनी सारी परतें खुल रही हैं आपकी आपके लेखन की, क्योंकि पढ़ते समय ये बातें हमारे जहन में नहीं आती हैं. यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं.
0: बिल्कुल, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती.
1: क्या बात है. हम सबका पसंदीदा गाना फिल्म तुम्हारे लिए, लता दीदी की आवाज, सुनते हैं यही गाना.

0: मनीषा जी, एक साहित्य के अलावा आप में जो गुण हमें दिखाई देता है बतौर एक पाठक और सोशल मीडिया के जरिए भी हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके भीतर एक यायावरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, मुझे लगता है सच होगी। और आप विदेशों की यात्रा बहुत की है, वहां से भी कुछ उपन्यास आपने जहन में लाया है, त्रिमाया और किनाया की हम बात करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल ममता, मेरी देश में जो एक खास किस्म की यायावरी रही तो हुआ ये कि मेरे लास्ट जो तीन पोस्टिंग्स थी संयोग से ऐसी हुई कि मुझे मात्र सत्तात्मक समाजों का पता चला।
0: अच्छा।
1: जल्दापारा हमारी पोस्टिंग थी, वहां पे हाथियों की मात्र सत्ताएं थी और मैंने हाथियों के रेस्क्यू सेंटर और हाथियों के झुंड के जरिए वहां जाकर पहली बार जाना कि इनके झुंड का मुखिया हाथी नहीं, हथिनी होती है। और बड़ी सूझबूझ से वो हथिनियां अपना परिवार बड़ा बड़ा 50-50, 60-60 हाथियों का लेकर चलती हैं। वो पोस्टिंग हुई, उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई शिलोंग। शिलोंग में खासी समाज था जहाँ पे मातृवंशीय प्रणालियां होती हैं, वहाँ स्त्री मुखिया होती है और स्त्री की जितनी जायदाद है वो सबसे छोटी बेटी को मिलती है।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद हमारी तीसरी पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में वहाँ नायर समाज था जहाँ पे लंबे समय तक मातृवंशीय प्रणाली चली थी समाज की। तो मुझे लगा कि ये चीज कुछ मुझे कह रही है कि मैं मात्र सत्तात्मक समाजों और मातृवंशीय समाजों के बारे में पढ़ूं और जानूं और लिखूं। तो मैंने हाथियों से शुरू किया पढ़ना और मैंने देखा कि हमारी मातृवंशीय प्रणालियों को तो बहुत चुनौतियां हैं।
0: जी जी।
1: जैसे नायर जो मातृवंशीय प्रणाली थी उसे तो समाप्त कर दिया गया था पुरुषों के इंटरवेंशन से, क्योंकि उनको शर्म आती थी कि उनके पिता कौन है उन्हें नहीं पता।
0: बिल्कुल।
1: तो जब वो ब्रिटिश राज्य आया और बर्तानवी नैतिकता, जो जिसे हम विक्टोरियन नैतिकता कहते हैं, वो आई, तो नायर समाज ने अपने आप को बदलने का ठाना और रानी सेतु लक्ष्मी के हस्ताक्षर से मात्र सत्ता समाप्त कर दी गई।
0: जी जी।
1: तो यही खासी समाज भी एक आजकल झेल रहा है कि इनकी जो मातृवंशीय प्रणाली है इसको समाप्त करने की बार बार आंदोलन होते हैं। लेकिन हाथियों में सदियों सदियों सदियों से अभी तक कुल माताएं हैं, उनको कोई नर हाथी आके चुनौती नहीं देते कि तुम अपना ये कुल खत्म कर दो।
0: जी।
1: तो इसके बरक्स मैंने मनुष्यों और हाथियों के व्यवहार को और मात्र सत्तात्मक समाजों के अच्छाइयों और बुराइयों को, दोनों को त्रिमाया उपन्यास

0: में लिखा, तो एक तो यायावरी मुझे यहाँ काम आई।
1: यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं, मुझे बताइए कि त्रिमाया जो हाथियों की ये जो बातें आप बता रही, इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें, तो ये आपको कहाँ से पता चली, किस तरह का रिसर्च किया आपने और कहाँ से? दूसरी बात की ये कितना चुनौतीपूर्ण था? ये
0: बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले तो शौकिया मैंने रिसर्च किया क्योंकि मैं जल्दापारा में थी, वहां रेस्क्यू सेंटर था हाथियों का, तो वहां पे एक लैला नाम की हथिनी थी और ढेर सारे अनाथ हाथियों के बच्चे थे। उन सबको लैला ने बड़ा किया और लैला ने अपना एक झुंड बना लिया और वो जंगल में विचरने लगी, और कई बार रेस्क्यू सेंटर आती थी और जंगल में चली जाती थी, उसका अपना झुंड था। तब मैंने जानना शुरू किया, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हाथियों के कॉरिडोर्स के बारे में, मैंने रिसर्च किया कि कैसे हम मनुष्यों ने हाथियों के कॉरिडोर चाय बागानों में और खेतों में बदल डाले हैं, और वो आज भी वहीं से गुजरना चाहते हैं क्योंकि वो सदियों से उनकी जो स्मृति में संचित है। तो वो बड़ा संघर्ष है जिसको हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको भी मैं इस किताब में लाई हूँ। तो रिसर्च की, लेकिन ये बड़ी आनंदी रिसर्च थी और लिखते समय बड़ा आनंद आया क्योंकि मुझे अपने अंदर एक हाथी को उतारना पड़ा, मुझे महसूस करना पड़ा मेरे एक सूंड है।
1: जी जी जी,
0: जो प्रेम में कैसे काम आती है, भूख में कैसे काम आती है,
1: क्या बात है।
0: तो मुझे हाथी वाला चैप्टर लिखने में, जो माया है, माया द एलिफेंट, उसको लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। हालांकि माया मार्गरेटा और माया को लिखने में भी आनंद आया, लेकिन ये सबसे तो पूरा रिसर्च बेस्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोधात्मक उपन्यास लिखते हैं, उसको बर्फ के नीचे जैसे झील होती है ना, तो वो जो झील का पानी है वो शोध हो, ऊपर बर्फ रहे, तो ऊपर रचनात्मकता रहे, कहानी रहे, शोध अंदर से झांकता रहे।
1: क्या बात है।
0: तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोध, मेरे ज्यादातर उपन्यास शोध पर रखे, स्वप्नपाश भी, मल्लिका भी और पंचकन्या भी और अब त्रिमाया, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि शोध कहानी पे हावी ना हो।
1: बिल्कुल, तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं और जो मर्म है वो बचा रहे हैं, और ये तो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। और आपने बताया भी कि सूंड के जरिए प्रेम करना, कैसे ये कल्पना भी करना कितना मुश्किल होता है कि आप उस हाथी के भीतर उसके मन में घुस के
0: पर काया प्रवेश।
1: और शोध परक मुझे लगता है एक और उपन्यास है आपका जो यायावरी पर है, किनाया
0: जी,
1: और विदेशों की यात्रा के दौरान, उसमें तो बहुत सारे राइटर्स भी हैं जो
0: नहीं वो घुमक्कड़ी, वो अलग है, वो घुमक्कड़ी अंग्रेजी साहित्य के गलियारों से, वो तो यात्रा वृत्तांत थी है। लेकिन किनाया मैं तुर्की गई थी, तो तुर्की की यात्रा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वहां पर जितनी आजादी है उतना ही अपनी परंपराओं से एक जुड़ाव है, खास किस्म का स्त्रियों का। तो मैंने वहां स्त्रियों को बहुत उन्मुक्त भी देखा और उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी देखा। दरअसल मैं गई थी अपनी बहन के साथ जो कि एक पर्यावरणविद है, वो सॉल्ट लेक पे काम करती है, वो सॉल्ट लेक सोसाइटी की एनुअल मीट थी। तो मेरी दीदी मुझे एक अपने साथी की तरह ले गई थी, तो वहां पे सारे साइंटिस्ट थे जो पर्यावरण की चिंता करते थे, और सुबह वो बोलते थे कि एक दिन पानी सिर्फ आंख में रह जाएगा, और शाम को जम के डांस करते थे, मस्ती करते थे। तो मैं यही कहती थी, आप लोग सुबह तो इतना डरा देते हो और शाम को आप लोग पार्टी करते हो। तो उनमें से किसी ने मुझे पूछा कि तुम्हें हम में से कोई नायक नायिका मिला क्या, क्या तुम कुछ लिखोगी क्या? तो मैंने कहा आप सब तो मिडिल एज्ड हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, मिडिल एज्ड रोमांस नहीं करते? तो इस कथा में, क्योंकि मैं तुर्की की जो यात्रा थी,
1: आपकी किताब में भी है
0: बिल्कुल, तो मैं इस तुर्की की यात्रा थी, मैं इसको केवल यात्रा वृत्तांत में नहीं ढालना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मध्य वयस्य स्त्री पुरुषों के बीच के प्रेम की जो एक गहनता है, एक अनुभव है, और वो जो मनोविज्ञान है, उसको मैं इस उपन्यास में यात्रा के साथ लेके आऊं। तो इसमें समूचे आपको तुर्की घूमने को भी मिलेगा, और दो मध्य वयस्य, एक जो इतिहासकार है और एक पर्यावरणवादी स्त्री है, दोनों के बीच का प्रेम, एक परिपक्व प्रेम जिसको हम सच में जिसे मैच्योर प्रेम कहते हैं, वो इसमें मिलेगा।
1: उस प्रेम से मतलब वो देह से आगे है, वो प्रेम हमें लगता है
0: देह है उसमें, लेकिन देह से आगे वहां पर उस तरह की खींचतान नहीं है जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेम में हम बहुत खींचते हैं एक दूसरे को और अधिकार जमाते हैं, वहां वो अधिकार वाली भावनाएं नहीं है। एक दूसरे को उन्मुक्त छोड़ के, एक दूसरे के ऊपर बिना बोझ बने जो वो प्रेम है वो उसकी है कि तुम दोनों आजाद भी हैं, हमारी वो आजादी भी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये प्रेम से ज्यादा मित्रता और साथ और एक उन्मुक्तता की बात भी है।

0: बहुत बढ़िया लग रही है बातें आपकी, और ऐसे लग रहा है कि वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये प्रेरक बातें हैं। किनाया हमारी भी अधूरी छूट गई है, तो इसलिए मुझे अब लग रहा है कि अब किसी तरह से ये किताब लेकर कहीं से पढ़ूंगी। और पर्यावरण की बात आप कर रही थी मनीषा जी, और ये जो त्रिमाया है, हाथियों का पूरा समूह है, तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाती हैं, उसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल ममता, सबसे पहले तो मेरा पूरा परिवार बायोलॉजिस्टों का परिवार है, उनमें से मेरी बेटी तक चला आया है वो पूरा जीनोटाइप। मेरे ताऊ जी बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उन पूरी कॉन्फ्रेंसेस में पूरे विश्व भर में जाते थे। मेरी बहन जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके साथ मैं सॉल्ट लेक सोसाइटी में गई, मेरी बेटी, मेरे भाई हैं वो असद रहमानी जी के साथ काम करते हैं और वो पक्षी वैज्ञानिक हैं,
0: तो रेडियो से बहुत प्रेम करते हैं,
1: रेडियो से जो आपकी आवाज से ममता प्रेम करते हैं,
0: शुक्रिया।
1: मनोज कुलश्रेष्ठ उनका नाम है, तो
0: सखी
1: सहेली उनका प्रिय कार्यक्रम है।
0: जी जी।
1: तो उन सबके सानिध्य में मैं रही, बचपन से पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम रही घर में। कोई ना कोई, कभी जयपुर में मेरे भाई का काम चल रहा होता था, कभी मेरी बहन सांभर लेक के पक्षियों पे काम कर रही होती थी, तो ये सारा माहौल घर में रहा। तो इस मुहिम को एक अपरोक्ष तौर पे मैं चलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जमीनी काम तो नहीं कर पाती हूँ कि मैंने जमीनी काम किए हों और मैंने कहीं जमीन पे कोई आंदोलन किए हों, लेकिन मेरे लेखन में और लगातार जब मैं लिखती हूँ पर्यावरण पे, तो उसके बहाने मेरा एक काम चलता रहता है और सोशल मीडिया पे भी मेरी उपस्थिति रहती है। और कभी भी इस तरह जयपुर में अगर कोई जंगल कट रहा है तो मैं वहां जरूर जाके खड़ी होती हूँ, और मेरे लेखन में ये बड़ी शिद्दत से आता है। तो किनाया में भी आया है कि कैसे सॉल्ट लेक सिमट रहे हैं।
0: बात इसकी विदेशी जो लिखी आपने तुर्की के बारे में, तो वहाँ कुछ साहित्यकारों को आपने देखा, जैसे मैंने आपकी किताब में पढ़ा था घुमक्कड़ी, तो उसमें शेक्सपियर का नाम है, वर्ड्सवर्थ का,
1: तो वो एक अलग मुहिम थी। हुआ ये कि 3 बार मुझे इंग्लैंड जाना हुआ, एक बार अवार्ड फंक्शन था, उसके अलावा भी 2 बार मुझे और जाना पड़ा इंग्लैंड। तो हुआ ये कि पहली बार में मैं फ्रॉयड के घर गई, कीट्स के घर गई, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम के, उसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है वो वाला हिस्सा भी घूम के, इस पूरे देश के लेखकों को जिनको हम सब बहुत क्लासिक की तरह पढ़ते आए हैं, उसमें वर्ड्सवर्थ भी है, तो जेम्स जॉयस भी है, तो इन सबको पढ़ा जाए, मतलब इन सबके घरों में जाया जाए। और मजेदार बात यह कि उन सबके घरों को बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम्स में बदला हुआ है और उनको ट्रस्ट चला रही है, और वो जो पूरे शहर है, जैसे अगर मैं बात कहूं तो जेन ऑस्टन का म्यूजियम है, वहां पे बिल्कुल माहौल बनाया जाता है कि आप जाएंगे तो मिस्टर डार्सी आपको मिलेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के वो वस्त्र पहने हुए,
0: अच्छा,
1: और जेन ऑस्टन के चीजें मिलेंगी। तो जब एक यात्रा में ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे जुनून आ गया। मैंने कहा अब मैं स्कॉटलैंड भी जाऊंगी और मैं नदर्न आयरलैंड भी जाऊंगी और हो सका तो डबलिन भी जाऊंगी। तो मैंने ऐसे करके पूरी यात्रा की 3 बार में, और मैंने सारे जितने भी इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के लेखक थे उन सबके जितने संभव हो सकते थे, थॉमस हार्डी तक, सबके घर जा जाके वहां उस माहौल को महसूस किया और उस पे किताब लिखी घुमक्कड़ी, साहित्य के गलियारों से।
0: क्या बात है। तो लिखने के मकसद से आप गई थी या घूमने गई थी?
1: पहली बार तो मैं घूमने गई थी, और संयोग से मैं जैसे अब मैं कोलकाता भी जाती हूँ तो मैं ठाकुरबाड़ी जरूर जाती हूँ, तो ऐसे ही मैं गई थी। तो मैंने कहा कीट्स हाउस तो जाएंगे, कीट्स को इतना पढ़ा है हमने, तो कीट्स के घर गए, तो मुझे लगा कि यार ये जुनून है, इस जुनून को तो पूरा किया जाए, फिर वो जुनून बन गया। शुरुआत में तो मैं ऐसे घूमने ही गई थी।
0: तो लिखने को इतना तवज्जो देती हैं, इसलिए आपका लेखन संसार इतना विराट है। आप मनीषा जी अपने श्रोताओं को बता दें कि राजस्थान की रहने वाली है, जहाँ पर लोक संस्कृति, लोक कला बेशुमार है, आपके लेखन में क्या आप इस्तेमाल करती हैं आप अपने लेखन में?
1: बिल्कुल, शुरुआत में तो मेरी जितनी अगर कहें कि सारी जो कहानियां जिनको लोग याद करते हैं, कठपुतलियां, कुर्जा, स्वांग, ठगिनी, सब में राजस्थान आया है। किरदार कहानी है जिसमें जयपुर के अंदरूनी इलाके आए हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं राजस्थान के माहौल को एक अलग ढंग से, सब अलग अलग तरीके से अपने जमीन को याद करते हैं, सब अलग अलग ढंग से उसके दृश्य गढ़ते हैं, तो मैंने अपने ढंग से अपने राजस्थान को अपनी कहानियों में रखा है।
0: क्या बात है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं.
1: बिल्कुल.
0: राजस्थान को याद करते हुए सुनाएंगे या कोई और?
1: हाँ, तो राजस्थान को याद करते हुए वो जो साथ
0: हिंदुस्तान.
1: हाँ बिल्कुल, पीतल की मोरी गागरी. चलो
0: तो चलते हैं राजस्थान की ओर और सुनते हैं यही गाना.

0: इस गाने के बाद मनीषा जी कुछ कहानियों का जिक्र छूट गया है, तो वो कौन सी कहानियां हैं जो आपकी बहुत पसंदीदा कहानियां हैं? वैसे मुझे लगता है 60-70 कहानियां हो
1: ज्यादा ही है, ममता 100 से ज्यादा कहानियां लिख ली है।
0: तो कुछ पसंदीदा कहानियों का जिक्र कीजिए आप।
1: मेरा अभी अभी एक कहानी संग्रह आया मन्या, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और बहुत उसको प्रशंसा मिली। खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट को हम भूल जाते हैं
0: जी जी,
1: हम जब आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कहानियां हैं उसमें है। तो चाय बागानों में बहुत रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरा रहना हुआ, तो वहां से जो चुन के मैं कहानियां लाई थी तो वन्या में वो कहानियां हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं।
0: और दो चार कहानियों का जिक्र कीजिए जो आपके दिल के करीब।
1: जैसे उसमें वन्या में एक कहानी है नीला घर, वो मेरे दिल के करीब है, और एक कहानी है नर्सरी, वो एक गेंद कहानी कह रही है कि गेंद है तो कैसे बच्चों की नर्सरी से निकल के चाय बागान में घूमती है और उससे पूरा का पूरा चाय बागानों का आपको जो एक सामाजिक ढांचा है वो समझ में आ जाता है, आर्थिक ढांचा भी
0: जी। और अपने श्रोताओं को बता दें कि तकरीबन 100 कहानियां हैं मनीषा जी के, 7 उपन्यास हो चुके हैं, यात्रा वृत्तांत, कथक पर कुछ किताबें, ये सब अनगिनत है। तो एक हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक इतने विशाल विराट साहित्यकार से हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बचपन के संसार में ले चलते हैं। बचपन में कैसी थी, पढ़ाई के दिनों में शरारती या फिर सीधी सादी, क्या वहीं से बीज पड़ गया था?
1: बहुत शरारती, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा कहानीकार जरूर बनता है जिसे बहाने बनाने आते हैं। तो मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं अपनी मम्मी को होमवर्क नहीं करने की, और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी कि मैंने ना पढ़ाई में बहुत झंडे गाड़े हों।
0: अच्छा,
1: क्योंकि विज्ञान वैसे भी एक कठिन विषय होता है, तो लेकिन हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल मिला
0: जी।
1: तो मैं शैतान बच्ची थी लेकिन बहुत जिज्ञासु थी, और साहित्य से मेरा प्रेम था और बचपन से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था
0: जी। मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें हो रही है कि हमें लग रहा है कि अभी और आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे लगता है जो लोग लिखना चाहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला तो। लेकिन अब बातचीत को विराम देना पड़ेगा, फिर कभी एक लंबी बातचीत करेंगे आपसे। इस वादे के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी बातचीत को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
4: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: नमस्कार श्रोता दोस्तों, उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सपनों की ओर कदम और आगे बढ़ा रहे होंगे। कार्यक्रम युवाणी को लेकर उपस्थित हूं मैं आपकी दोस्त जीनत। दोस्तों, युवा होना सिर्फ उम्र का पड़ाव नहीं, बल्कि नई सोच, नए सवाल और कुछ नया कर गुजरने का जज्बा भी है। और युवाणी कार्यक्रम इसी जज्बे को आवाज देने का एक खूबसूरत मंच है। तो आज है तारीख 16 सितंबर। हम चर्चा करने जा रहे हैं युवाणी कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण दिवस की। दोस्तों, आज का दिन हमें एक ऐसी अदृश्य ढाल की याद दिलाता है जो धरती पर जीवन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ओजोन परत। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों, विशेष रूप से UVB का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है साथियों, लोगों को ओजोन परत के महत्व और उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। आपको ये भी बता दें मित्रों कि इस दिवस की शुरुआत की कहानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई है। हुआ यूं साथियों कि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण दिवस की, जो है दक्षिण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथियों, आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी देश के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है, लेकिन दुनिया के सभी देशों को विज्ञान, शोध यानी रिसर्च और आधुनिक तकनीकों तक समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। विकासशील देशों के सामने संसाधनों, शोध और तकनीकी पहुंच से

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती केंद्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के ठीक 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

जुड़ी कई चुनौतियां हैं। इसीलिए ये दिवस इस बात पर जोर देता है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ तक भी पहुंचे। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के कई विकासशील देश आते हैं। दोस्तों, विज्ञान का असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दिखाई देता है। आधुनिक तकनीक किसानों को बेहतर खेती में मदद कर सकती है, डिजिटल माध्यम एडुकेशन को अधिक सुलभ बना सकते हैं और वैज्ञानिक नवाचार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की चर्चा। चलिए यहाँ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और अब समय है हमारे खास सेगमेंट का जो है व्यक्ति विशेष। आज हम बात करेंगे साथियों भारतीय शास्त्रीय संगीत की ऐसी महान गायिका की जिनकी आवाज ने भारतीय संगीत की पहचान को दुनिया के मंच तक पहुंचाया। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी की बात होगी आज। तारीख 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी षडमुख विडुबु सुब्बुलक्ष्मी का बचपन संगीत के वातावरण में बीता। उनकी माँ वीणा वादक थीं। महज 10 वर्ष की आयु में सुब्बुलक्ष्मी ने पहली रिकॉर्डिंग की और किशोरावस्था में ही सार्वजनिक मंचों पर अपनी पहचान बनाने लगीं। वर्ष 1933 में उन्होंने मद्रास म्यूजिक अकादमी में अपनी प्रस्तुति दी और इसके बाद दोस्तों कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में सुब्बुलक्ष्मी का नाम तेजी से स्थापित होने लगा। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी थी सुरों की शुद्धता के साथ

0: भावनाओं की गहराई, वो शास्त्रीय रागों को जितनी खूबसूरती से प्रस्तुत करती थीं, उतनी ही आत्मीयता से भक्ति गीत भजन भी गाती थीं। दोस्तों, सुब्बुलक्ष्मी ने तमिल, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी, गुजराती और बंगाली भाषा सहित कई भाषाओं की रचनाओं को अपनी आवाज दी। हिंदी श्रोताओं के बीच उनके भजनों को विशेष लोकप्रियता मिली। साथियों, उनकी प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में वैष्णव जन तो तेने कहिए का भी विशेष स्थान है। धीरे धीरे श्रोताओं, सुब्बू लक्ष्मी की आवाज भारत की सीमाओं से बाहर पहुंची। उन्होंने एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल, कॉर्नेगी हॉल जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी और साल 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी गाया। वहां सुब्बू लक्ष्मी ने संस्कृत की रचना मैंत्रिंग भजत प्रस्तुत किया, जिसने विश्व मंच पर भारतीय संगीत की गरिमा को सबके सामने रखा। दोस्तों, एमएस सुब्बुलक्ष्मी की संगीत साधना को देश और दुनिया में अनेक सम्मानों से नवाजा गया। साल 1954 में पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1968 में संगीत कला निधि, वर्ष 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1975 में पद्म विभूषण से सुब्बुलक्ष्मी को सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों, वर्ष 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, एमएस सुब्बुलक्ष्मी की पहचान केवल पुरस्कारों से नहीं थी, उनकी असली पहचान थी उनकी साधना, विनम्रता और संगीत के प्रति उनका समर्पण। उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से अनेक सामाजिक संस्थाओं के लिए धन जुटाने का भी कार्य किया। सुब्बुलक्ष्मी का जीवन दोस्तों हमें सिखाता है कि प्रतिभा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण आवश्यक है। जीवन के अंतिम वर्षों में सुब्बुलक्ष्मी ने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली। 11 दिसंबर 2004 को 88 वर्ष की आयु में एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी का निधन हो गया। उनके निधन के साथ भारतीय संगीत की दुनिया ने एक महान स्वर साधिका को खो दिया, लेकिन उनकी आवाज और उनका संगीत आज भी श्रोताओं के बीच जीवित है। इसी के साथ व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। अब आइए यहां लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532921909। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
2: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
2: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
3: मन का रेडियो बजने दे जरा।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत।

0: योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596424 और 7800037222।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोता दोस्तों का युवाणी कार्यक्रम में। आज आपके साथ मैं हूँ जीनत। और अब साथियों, आप हमें बताइए कि अपने खान पान का आप किस तरह से ध्यान रखते हैं, स्वस्थ संतुलित भोजन या फिर फास्ट फूड और जंक फूड क्या चुनते हैं। इसी विषय से जुड़े युवाओं में खान पान की आदत और उनका स्वास्थ्य, इस पर युवाओं से बातचीत करी है हमारी साथी दिशा श्रीवास्तव ने। आइए हम सभी सुनते हैं कि क्या कहते हैं हमारे ये युवा दोस्त।
2: आजकल एक चीज बहुत ट्रेंड में है, हम AI को प्रॉम्प्ट देते हैं और वो हमें रिजल्ट देता है। रिजल्ट कितना अच्छा होगा वो ये डिपेंड करता है कि हमने प्रॉम्प्ट कैसा दिया है। उसी तरह से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी वो इस पर डिपेंड करता है कि हम फूड कौन सा इंटेक कर रहे हैं, क्या हम पोषण वाले खाने खा रहे हैं या फिर फास्ट फूड पर डिपेंड है। इसी पर बात करने के लिए युवावाणी आ चुका है युवाओं के बीच। अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों से जानेंगे कि आखिर वो कितने सजग हैं अपने पोषण को लेकर।
3: आपका क्या नाम है?
4: सुमेधा पाठक।
3: आपकी एक नॉर्मल डे की जो डाइट होती है उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं?
4: फर्स्टली नॉर्मल मेरे डे की डाइट जो होती है वो स्टार्ट होती है मॉर्निंग रूटीन से। फर्स्टली मैं सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, सम स्पाउस लाइक चना, मूंगफली, सोयाबीन एंड हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट। फिर सीधे लंच। डेली बेसिस पे तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड होनी चाहिए। आजकल यूथ में स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, सारी चीजें आजकल बहुत ही कॉमन सी होती जा रही है, तो इसके पीछे क्या रीजन है?
3: ये सब कॉमन सी इसलिए होती जा रही है क्योंकि हमारा जो यूथ है वो फिजिकल एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जब हमारी बॉडी कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगी ही नहीं तो जो हमारी नीड्स है बॉडी की वो कहाँ से आएंगी। योगा करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक भी करनी चाहिए लोगों को। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये जरूर करें।
2: अच्छा, इस टाइम पोषण माह चल रहा है तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
5: हाँ, पोषण माह अभी चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। काफी अच्छी चीज है, इससे लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर भी होते हैं।
6: नमस्कार, मेरा नाम दामयन तिवारी है।
3: आज का जो यूथ है वो ज्यादातर फास्ट फूड उसे पसंद है, तो इसके कारण क्या है?
6: इसका मेन रीजन ये है क्योंकि आजकल के कॉलेज और स्कूल के बाहर गेट्स पे या हम लोग को सस्ते दाम में मिल जा रहे हैं और ये ज्यादा आकर्षक भी लगता है। हाँ। कंट्रोल में कर लिया है। हाँ। कि हम लोग उसी को ही यूज करेंगे जिससे हमें बेनिफिट तो नहीं है।
7: मेरा नाम सौम्या चौबे है।
3: सर, लास्ट 2-3 डेज में ऐसी 4-5 चीजों का नाम बताइए जो आपने खाया हो जो हेल्दी हो।
7: मैंने चोखा बाटी खाया है, घर पे बनाए हैं, और पराठे खाए हैं चने के और साग रोटी।
8: मेरा नाम अर्पित मिश्रा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ।
3: ऐसे यूथ जो अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, जिनका रूटीन नहीं सही है, जिनका इनटेक फूड का नहीं सही है, उनको क्या कहना चाहेंगे?
8: हम एक हेल्दी डाइट सबसे पहले ले, और यूथ को क्या होता है कि फोकस नहीं होता है, पढ़ाई मन नहीं लगता, तो उनको क्या लगता है कि हम बीमार हैं या हमारा मन नहीं लग रहा है, हम किसी काम के नहीं है। बट इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारे ब्रेन में विटामिन B12, B3 शरीर में और इन सारी चीजों की कमी हो गई है। तो पहले तो हमें डॉक्टर के पास जाके इसको टेस्ट कराना चाहिए और फिर अगर ऐसा कुछ है तो हमें अपनी डाइट में चीजें शामिल।
9: मेरा नाम सुभांशी पांडे है। बहुत ही सिंपल मैं खाना चाहती हूँ, बट कभी होता है कि आपको बहुत टेंटिंग लगता है फूड और बस आ जाते हैं, बट कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही खाओ।
3: अच्छा, जैसे फास्ट फूड आपने बोला टेंटिंग लगता है, और क्या क्या रीजन है कि हम लोग फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं?
9: हम लोग जैसे कि बहुत क्रेविंग हो जाते हैं जब वीडियो देखते हैं, जैसे कि रील्स में होते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा फूड ब्लॉगिंग हो रही है, तो उसकी वजह से तो कुछ ज्यादा ही लोग अट्रैक्ट होते हैं खाने को। बस यही रीजन है,
3: ट्रेंडिंग रहता है।
9: कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार ये वेस्टर्नाइजेशन है, उन लोग का ज्यादा अच्छा फूड होता होगा, जिस वजह से हम लोग उनके पे ज्यादा जाते हैं, ना कि अपने इंडियन कल्चर पे और अपने फूड पे आते हैं।
10: मेरा नाम ओमवीर है।
3: आज का यूथ फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहा है, तो मतलब उसको कहाँ से ऐसी इंस्पिरेशन मिल जा रही है?
10: आजकल के जो यूथ को इंस्पिरेशन मिल रही है, सबसे पहले तो चीज है रील एंड ब्लॉग्स, क्योंकि ब्लॉग्स लोग बनाते हैं वो सिर्फ वायरल होने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके ब्लॉग से जो सामने वाला देख रहा है, जो आप फास्ट फूड के बारे में आप उसे दिखा रहे हो, वो जाके बंदा वो खाएगा ही, तो उसके बाद वो बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा।
3: ऐसे कौन से फास्ट फूड्स हैं जिनको बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए?
10: सबसे पहला तो आज तो मोमोज, देन उसके बाद आपके हैं स्प्रिंग रोल्स हैं एंड पिज्जा। पिज्जा में भी चीजेस हैं, कबाब पराठा हो गया और फ्रेंच फ्राइज हो गया। इन सब चीजों की काफी सारे आइटम्स हैं जो कि हर आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग सेंटर के बाहर जाएंगे तो ये आपको जरूर मिलेंगे।

0: होंगे।
1: बिल्कुल, मतलब ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ऑयली चीजें स्पेशली और बाहर की चीजें।
0: बिल्कुल।
2: मेरा नाम आयुषी त्रिपाठी है और मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ।
1: तो ये बताइए, जैसे आप अपनी लाइफ को हेल्दी या अनहेल्दी, क्या है आपकी लाइफ?
2: मैं अपनी लाइफ को हेल्दी कहना चाहूंगी। इसका रीजन भी मैं बताती हूँ। मुझे पीसीओडी है। पीसीओडी में क्या होता है कि आप मतलब फास्ट फूड आपको अवॉइड करना होता है और शुगर भी आपको एकदम अवॉइड कर देना होता है। तो मैंने मतलब लगभग 2 मंथ्स हो गए मैंने शुगर इंटेक नहीं किया है और मैंने बाहर का एकदम से मैंने छोड़ दिया है जंक फूड और मैं प्रिजर्वेटिव फूड भी नहीं खाती। पैक्ड आइटम्स, दिस इज द रीजन बिहाइंड हेल्दी फूड को चूज करना।
1: इसके अलावा जैसे फूड के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं हमारे लाइफ में कि फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए
2: एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं आप, लाइक कि मतलब वॉकिंग, मेडिटेशन तो आपके माइंड को काम रखता है। जैसे हम कहते हैं कोटेशन होता है हेल्थ इज वेल्थ, तो वो मैंडेटरी है।
1: बिल्कुल।
3: मेरा नाम अभय प्रताप सिंह।
1: लोगों का क्या होता है, पैटर्न नहीं होता कि हम कभी भी फास्ट फूड खा ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पैटर्न बना रखा है कि महीने में 1 या 2 बार, तो आपका कुछ ऐसा है?
3: मेरा हाँ है, मींस जैसे कि संडे को शाम को सिर्फ मोमोज।
1: हाँ, फिर भी ठीक है,
3: जरूरी खाना है ना, मींस एक ही टेस्ट को बार बार खाना फिर मजा नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप हफ्ते में 1 बार खाते हैं, वरना अगर हम कोई चीज अपना प्लान नहीं बनाए होते तो काफी दिक्कत होती। हम कभी भी कभी निकले खा लिया हम लोगों ने कुछ।
3: अब आप ये कि मैं कभी भी कुछ भी खा ले रहे हो, मींस मोमोज है, चाउमीन है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से युवाओं को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में बताया। साथियों, चल रहा है कार्यक्रम युवाणी, अब आइए जानते हैं इस हफ्ते भर की कुछ प्रमुख खेल खबरें सेगमेंट खेल संसार में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट की, जहां पुरुष भारतीय टीम ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। दोस्तों, भारत को जीत के लिए 160 रन चाहिए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 14 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाए। आगे अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल्स में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में 8 सितंबर से 12 सितंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में बिरी टाकर ने ये खिताब अपने नाम किया। तीरंदाजी से भी अच्छी खबर है दोस्तों, भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा ने विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये भारत के पहले पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में 13 सितंबर को धीरज ने जापान के नाका निशी जुनिया को रोमांचक सूट ऑफ में 5 सेटों के कड़े मुकाबले में 6-5 से हराया। क्रिकेट से ही जुड़ी दूसरी प्रमुख खबर है दोस्तों, भारत ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपने सुनी ही होगी ये खबर। आपको बता दें 13 सितंबर को हुए फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड 129 रनों की साझेदारी की, जिसकी बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 183 रन बनाए। इसके बाद गेंदबाजों ने श्रीलंका को 19 ओवर और 4 गेंदों पर 111 रनों पर ही समेट दिया, जिसमें दोस्तों श्री चरणी ने 4 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल किए। बात करें बैडमिंटन की, तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। चीन के शेनझेन में हुए फाइनल मुकाबले में सात्विक चिराग की जोड़ी ने चीन के ही जी तिंग और रेन जियांग यू को 11-21, 21-13 और 21-17 से मात दी। हॉकी से भी अच्छी खबर है दोस्तों, चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। और साथियों, ये थी हमारी कुछ प्रमुख खेल जगत से जुड़ी खबरें। अब आइए यहाँ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों बिल्कुल हम भी आपका रास्ता देखेंगे, लेकिन अभी समय हो गया है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। लेकिन आपको याद दिला दें कि कल है गुरुवार, तो होगा लाइव फोनिंग सेगमेंट हमारा युवा संवाद, जिसमें कल हमारी आपसे बातचीत का विषय होगा ऑनलाइन खरीदारी यानी शॉपिंग, सुविधा या आदत। क्या है आपकी इस टॉपिक पर राय, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। डायल करके हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090 यानी 7376804090। फिलहाल आज के युवाणी कार्यक्रम से मुझे यानी जीनत को दे अनुमति। नमस्कार।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल।

0: कौन सी बात कब कहाँ किससे कैसे कही जाती है, अगर यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा

0: तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: हाल है
1: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
1: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा।
1: 20 सितंबर रविवार प्रातः 8:30 से 9:30 तक आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से सुप्रसिद्ध सूर्य कुंड मेला तथा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
0: सूर्य कुंड मेला का आंखों देखा हाल और स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान के साथ ये विशेष कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। 20 सितंबर प्रातः 8:30 से FM 101.9 मोबाइल सेट न्यूज ऑन एयर और वेव्स OTT पर।
1: आकाशवाणी अयोध्या के इस अनूठे कार्यक्रम से जुड़े और भगवान सूर्य को समर्पित लोक संस्कृति के इस महान पर्व पर रेडियो के माध्यम से पुण्य लाभ प्राप्त करें।

बेचन राम और साथियों के आवाज में अभी आप सुना गवाई कहरवा। कार्यक्रम लोक संगीत प्रसारित किया जाता है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आपके साथ है आज है आपका रेडियो दोस्त आरजे विवेक सोनी। और अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवावे जायत है छोटे लाल प्रजापति की आवाज में ई शिव भक्ति के गीत।

शिव भक्त में यही लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक संगीत का समय अब समाप्त होता। आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while addressing the media after the cabinet meeting in New Delhi today. He said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
3: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर।
2: The government has introduced an exemption from the requirement of registration cum membership certificate or certificate of registration for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said the measure is aimed at reducing the compliance burden for new and small export.

जहाँ प्यारे प्यारे से गीत हम तभी गा पाएंगे जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट जिसकी हम एक इकाई हैं, यूनिट हैं, उसको सुरक्षित रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, प्रोग्राम शाम सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से न्यूज ऑन एयर ऐप और 101.9 FM पर। और अब ये प्यारा सा एक और प्यारा गीत, गाँव कैसे होते हैं आइए देखते हैं कितने प्यारे होते हैं।

0: जी हाँ, गांव की बात ही अजब गजब है। वहाँ जो शुद्ध वायु मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। फिलहाल इस प्रोग्राम शाम सुहानी से आप दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त हो रहा है संस्कृत में समाचारों का, जिसे अनुप्रसारित करेंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया संस्कृत समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। करनीति चर्चायां राष्ट्रहितं प्रथमं इति सर्वोपरि निध्याय प्रौढविमर्शस्य आवश्यकता इति केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारामणस्य समाह्वानम्। अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रे पाकिस्तानीय नौसेना घटकानां अस्वीकार्य व्यवहारं विरुध्य भारतेन तीव्रापत्तिः प्रदर्शिता। नीति आयोगेन 25-अधिक-2000 भारत विद्युत संचार सूचकांकः प्रख्यापितः। विद्युत वाहनानां अंगीकरणे नवदिल्ली शीर्षस्थाने, महाराष्ट्र कर्नाटक राज्ये च द्वितीय तृतीय स्थाने वर्तेते। सऊदी अरब देशेन हूथी विद्रोहिणां ड्रोन विमानं निरुद्धम्। भविष्यद् आक्रमणानां विरोधे दृढ पदक्षेपाणां संचेतना। हुथी समूहेन आक्रमण वार्ता प्रत्याख्याता। अपि च हरियाणा राज्ये चंडीगढ़े पंजाबे पूर्वोत्तर भारतस्य च कतिचित् भागेषु अद्य अति तीव्र वृष्टेः वर्तते पूर्वानुमानम्।

0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः दृढतया प्रतिपादितवती यत् सर्वकाराय समर्प्यमाणेषु करसम्बन्धि प्रस्तावेषु मानांक न्यूनीकरणस्य करमुक्तेः सौविध्यप्रदानस्य च याचनायाः अपेक्षया राष्ट्रं प्रथमम् इति भावः सर्वोपरि स्थापनीयः। सा अद्य बेंगलुरु नगरे अन्ताराष्ट्रिय कर अनुसंधान विश्लेषण प्रतिष्ठानेन आयोजिते नवयुग कराधान विषये द्विदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रे संबोधयन्ती आसीत्। मंत्री शिक्षाविदः शोधकर्तृन् चिन्तकाञ्च समाहूय स्वतंत्र करनीति संशोधनम् सार्वजनिक संवादस्य नियमितं भागं कर्तुम् आदिष्टवती, यस्य परीक्षणं समाह्वानं परिष्कारश्च कर्तुं शक्यते। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन कर्मचारी भविष्यनिधि संघटने अनिवार्य अंशदानाय विहिता मासिक वेतन सीमा 15,000 रूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 25,000 रूप्यकाणि यावत् निर्धारिता। अद्य मंत्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् संबोधयता सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन विज्ञापितं यत् अनेन निर्णयात्मक पदक्षेपेण 150,000+ अतिरिक्ताः कर्मचारिणः EPFO अनिवार्य सामाजिकावरणे आगमिष्यन्ति, येन श्रमिकेभ्यः सामाजिक सुरक्षा कवचस्य बृहद् विस्तारो भविष्यति। अस्मिन् निर्णये सर्वकारस्य वार्षिकः व्ययभारः प्रायः 41,300,000 कोटि रूप्यकाणि संभाव्यते।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51,00,000 एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: मन्त्रिणा न्यरूप्यत यत् 4,200,000 14,200,000 पर्यन्तं दशकेऽस्मिन् भविष्यनिधेः वेतनसीमा अपरिवर्तिता एवासीत्। तदनन्तरं 14,200,000 वर्षस्य सितम्बर मासे इयं सीमा 15,000 रूप्यकाणि यावत् संवर्धिता। श्रीवैष्णवेन विशेषतया प्रतिपादितं यत् वर्तमानेन निर्णयेन सैव नीतिः अग्रे प्रसारिता, यतो हि विगत वर्षेषु वेतन वृद्धेः आय संवर्धनस्य औपचारिक उद्योग क्षेत्रस्य निरंतर विस्तारस्य च परिप्रेक्ष्ये इयं सीमा 25,000 रूप्यकाणि यावत् विहिता। विदेश मंत्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां पाकिस्तान उच्चायोगस्य कार्यवाहक प्रमुखः आहूतः, अथ च समुद्रे पाकिस्तानीय नौसेना घटकस्य अस्वीकार्य व्यवहारं विरुध्य तीव्रापत्तिः प्रकटिता। मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये स्पष्टीकृतं यत् यद्यपि अन्ताराष्ट्रिय जलक्षेत्रे घटितायामस्यां घटनायां कापि महती क्षतिः न जाता, तथापि एषः व्यवहारः 91-29 वर्षस्य अप्रैलमासे भारत पाकिस्तानयोः मध्ये सैन्य अभ्यासानां युद्धाभ्यास सञ्चालनस्य सैन्य सञ्चारस्य च पूर्वसूचना विषये सम्पन्नस्य सन्धेः सर्वथा प्रत्यक्ष उल्लंघनमस्ति। विदेश मंत्रालयेन पाकिस्तानस्य प्रभारी राजनयिकः निर्देशितः यत् सः संबद्ध पाकिस्तानीय अधिकारिभ्यः इदं संदेशं प्रेषयेत् यत् भविष्ये एतादृशीनां दुर्घटनानां निवारणार्थं सर्वे सैन्य घटकाः आवश्यकावधानं वर्तयेयुः, अथ च उभयोः पक्षयोः मध्ये सम्पन्न द्विपक्षीय संधेः प्रावधानानां पूर्ण सम्मानं कुर्युः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पञ्चविंशत्यधिक 2000 IEMI इति इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इत्यस्यानुसारं विद्युत मोबिलिटी स्वीकरणस्य विषये राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दिल्ली नगरं शीर्षस्थाने अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां नीति आयोगेन सूचकांकः लोकार्पितः, यस्मिन्

0: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम की शुरुआत हम करें उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामगढ़ चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 78007322।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: now and watch for free.
1: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के में आपके बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपका सुनवा जाए थे ई किसानी लोकगीत अरुण कुमार कोरी और साथियों के आवाज में।

कल्पना एस वर्मन और साथियों के आवाज में अभी आप सुनने हुई नकटा। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपका सुनवा जाए थे निर्गुण बब्बन निषाद और साथियों के आवाज में।

0: और देखा अब यही प्यारे से निर्गुण के बाद अब कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के अब समाप्त होते हैं।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, माफ कीजिएगा, लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:45 हुए हैं। कृषक बंधु सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी
1: सुनना ना भूले प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार
0: शाम 6:50 से।
2: पंचों जय हिंद। भाई आज के कृषि जगत कार्यक्रम में आप सब पंचन के बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात तो है भैया कि अपने यह कार्यक्रम से सबसे ज्यादा अगर लाभ होता है तो अपने किसान पंच के साथ साथ जौन भैया लोग यह क्षेत्र में रुचि रखते हैं, अनुभव ले चाहते हैं, साथ साथ

जानकारी लेवा चाहते हैं उनके लिए हम समझते हैं कि एक अच्छी बात होता है। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में अपने सबके सरकार के एक बहुत बड़ी मंशा है कि अपने सबके आर्थिक उन्नति होए, साथे साथे अपन खेती चमकाए, अपन रोजगार चमकाए, अपन जौन भी कमाई है ओके हिस्सा अपने परिवार में लागे ताकि आर्थिक उन्नति के साथ साथ परिवार में खुशहाली रहे। अब भाई देखो खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा अगर हम समझित है कि बात आवत है तो वो होता है कि अपने सबके आर्थिक उन्नति में भाई किफायत के साथ साथ अपन जौन लाभांश है वो ज्यादा से ज्यादा होए। अब वह के लिए भाई अपन योजना बनावे पड़े अपने सबका, कुछ यह तरह के काम करे के पड़े, और कभो कभो भाई कार्य में दिक्कत आवत बाटे, आप कोनो चीज ठान्यो मान लिया और वहमन आपका कोनो पूंजी में समस्या आवत है, तो वह के लिए भी अपन सरकार के एक देखो सबसे बड़ी योजना किसान क्रेडिट कार्ड है। अभी एक के बारे में अपने तमाम पंच भैया लोगन का जानकारी है, लेकिन हम अपने पंचन से एक बार फिर से साझा करी थे ये जानकारी का कि समय के मांग है, अपने सबका श्रम के आधार पर अपने खेत खलिहान का आगे बढ़ावे है, पूंजी कहूं आड़े ना आवे, यह के लिए अपन जो सरकार है ओके मनसा है कि भाई कोनो भी मेर से यह तरह की दिक्कत ना आवे, तो किसान क्रेडिट कार्ड के व्यवस्था बनाई। अब यह बदे देखो जब सरकार व्यवस्था बनाई है तो ओके कहां कहां लाभ मिल सकत है भाई, चाहे अपन खेती कीन जाए, पशुपालन कीन जाए, मछली पालन कीन जाए, कोनो भी यह तरह के व्यवसाय कीन जाए जेहमन कहूं पूंजी के समस्या आवत बाटे और अपने लगा मान लिया नाही ना, तो वह के लिए अपन किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ लेन जा सकत है। आसान किस्त पर, सस्ते दर पर अपने सबका लोन के प्रक्रिया से जौन भी सरकार अपने सबका देत है ओका आगे बढ़ा जा सकत है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान पंच का समय पर कम ब्याज पर लोन पावे में काफी मदद होता है और यह के लिए कोनो ज्यादा औपचारिकता नहीं ना, वही चीज है अपन आधार कार्ड हो के चाहिए, पैन कार्ड हो के चाहिए, साथे साथे भाई मोबाइल नंबर है आपके वह का हो के चाहिए, और हम समझे थे फोटो की आवश्यकता लागत है वो अब सबके लगा रहबे करत है, नहीं तो खिंचवाए लीन जाते वह समय पे, तो यह सब चीज से हम समझे थे कि अपने सबका लाभ मिल सकत है। और उद्देश्य एक और भी है अपने सरकार के कि जौन साहूकार ऊंचे ब्याज दर पर अपने सबका देत रहे पैसा और अपने सबके गाढ़ी कमाई ओमन चली जात रही, यह से एक बचाव भी होत बाटे। तो भाई जब सरकार इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेत बाटे अपने सबके उन्नति के बदे, अपने सबका आगे बढ़ावे के लिए, तो अपने सबके भी एक मंशा होए के चाही जानकारी के साथे साथे एक लाभ लेवे के। तो भाई किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ लेन जाए, साथे साथे यमन बीज है, खाद है, कीटनाशक है और कृषि से संबंधित जौन भी उपकरण अपने सब इस्तेमाल किए जाते हैं उनका भी खरीदा जा सकत है। यह का लेवे के लिए सभी किसान पंच का अकेले या मिलकर खेती करके या फिर पशुपालन करके, डेयरी या मत्स्य पालन करके जौन भी भैया लोग मन जुड़ा है, चाहे वह मौखिक पट्टेदार हैं, बटाईदार हैं, किराएदार हैं, कोनो यह तरह के भाई हैं अगर स्थिति में, तो उन भैया लोगन का भी यह योजना में लाभ मिल सकत है। अब इतना सब सरकार आप सबके बदे सोचत है तो आप कोशिश करो कि वह योजना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, आगे बढ़ो, साथे साथे आपके काम भी आगे बढ़े। एक बात और जान के चलो कि आपन खेत होए, चाहे भाई पशुपालन होए, चाहे अपन कोनो भी आप व्यवसाय की है, ओमन अगर समय पर सजगवाही नहीं कीन गए तो निश्चित मान के चलो घाटा हुए और वह घाटा में अपने सबका नुकसान जौन हुए वो आर्थिक रूप से घर से निकले, है ना, जौन पूंजी कमाई गई है वह मन से निकले, तो यह के लिए होता है सजगवाही साथे साथे सावधानी। यही बदे देखो आज पंचायती में एक भाई सजगवाही के बदे, सावधानी के बदे एक जानकारी लाइन है कि खरीफ दलहनी फसल में कौन मेर के रोग लाग जात हैं वह के कैसे नियंत्रण कीन जाए, कैसे पहचान कीन जाए और बचाव करके कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए डॉक्टर विवेक सिंह से हम बतवान हैं। तो चलो यह जानकारी का सुना जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। पंचों जैसे अभी आप सुने अपने सबके बीचे में डॉक्टर विवेक सिंह भैया आवा हैं, आप सह प्राध्यापक पादप रोग विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से हैं। सबसे पहले तो

0: आपके हम अपने पंचायती मां स्वागत करी थे डॉक्टर भैया, साथे साथे जाना चाहिए कि खरीफ दलहनी फसल मां तमाम मेर के रोग लाग जात हैं, एके पहचान कैसे की जाए और ओके निदान कैसे की जाए। बात चली है तो अपने पंचन के वारी से हम आपसे जाना चाहिए सबसे पहला सवाल कि यह समय पे कौन कौन से आपन जोन खरीफ के फसल हैं वो खेत मां लगी हैं।
1: इस समय खेत में उर्द, मूंग, लोबिया एवं अरहर की जो है दलहनी फसलें खेत में लगी हुई हैं।
0: और अगर देखा जाए तो इन फसलों में मुख्य रूप से उर्द, मूंग और लोबिया आप बताओ तो यहमन कौन मेर के रोग लागे के संभावना रहती है ऐसे थी।
1: इन फसलों में मुख्यतः इस मौसम में सर्कोस्पोरा धब्बा रोग, एंथ्रेक्नोज रोग तथा पीलाचित रोग जिसको मोजेक रोग भी बोलते हैं, इन रोगों के लगने की संभावना रहती है।
0: तो माने कि अपने पंचन का भाई यह से फिर एक पहचान करके उसे निदान की जरूरत है, तो सबसे पहले तो आप पहचान बतावें कि कैसे जनिए अपने पंचे कि भाई यह तरह के रोग लागे अपने फसल में।
1: रोग नियंत्रण हेतु पहचान बहुत जरूरी है। इसके लिए पहचान के लिए जैसे सर्कोस्पोरा धब्बा रोग में ये गोल धब्बे बन जाते हैं जिनका बाहरी किनारा लाल रंग का रहता है, बीच में सफ़ेद रंग का रहता है। ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं, इस तरह से पत्तियां गिर जाती हैं। इसी तरह से एंथ्रेक्नोज डिजीज में भी, बीमारी में भी ये धब्बे बन जाते हैं। इसमें अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं तथा गहरे धब्बे पत्तियों पर, उसकी फलियों पर और तनों पर धब्बे बन जाते हैं। इस तरह से पत्तियां गिर जाती हैं और पौधे सूख जाते हैं तथा इस बीमारी में दानों पर भी रोग का संक्रमण होता है। बात करते हैं मोजेक रोग के, इसमें पीले धब्बे पत्तियों पर बन जाते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं और फूल एवं फलियां कम आती हैं।
0: मानी अपने पंचन का हम समझित है, आपके बताए गए जौन पहचान है के हिसाब से अपने खेत के सजगवाही करे के जरूरत है, निगरानी करे के जरूरत है ताकि उनका जानकारी रहे कि भाई अगर रोग लागत है तो वहमन नियंत्रण के भी जरूरत है। का समझते हैं आप कि कैसे पहचान के बाद अपने पंचे इन रोगन पर नियंत्रण के दायरा शुरू करें?
1: नियंत्रण हेतु फसलों के रोग नियंत्रण में सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि रोग रहित बीज का चुनाव करें, प्रमाणित बीज ही बोएं और रोग रोधी प्रजातियों की बुवाई करें। जैसे रोग रोधी प्रजातियों में उर्द की उत्तरा किस्म हो गया IPO 11-2, मूंग की PDM 1, IPM 99-125 और लोबिया की काशी निधि, काशी कंचन, काशी उन्नति, ये रोग रोधी प्रजातियां हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। साथ ही यदि खड़ी फसल में रोग आ जाता है तो उनके नियंत्रण हेतु जो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है, सर्कोस्पोरा धब्बा रोग है तथा एंथ्रेक्नोज रोग है, ये फफूंद जनक रोग है, इसके नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इन दोनों रोगों में नियंत्रण होता है। इससे मोजेक रोग की बात करते हैं, मोजेक रोग के नियंत्रण हेतु पहले खेत में निगरानी करते रहें किसान भाई, जब कोई संक्रमित पौधा दिखाई दे तो उसको उखाड़ कर नष्ट कर दें तथा साथ ही ये रोग सफ़ेद मक्खी से फैलता है, सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु 0.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रेट को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो इससे रोग का संक्रमण और ज़्यादा नहीं होता है और इससे हानि नहीं होती है।
0: बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, कितना बढ़िया तरीके से आप एक बात बताओ हमारे पंचे ऐसे थी, आपका भाई आकाशवाणी अयोध्या के बारे से सुनत हैं तो हम समझित है कि एक कहूँ ना कहूँ कलम बंद भी करें कि रोग से बचे के सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई उका रोग रोधी बीज के चुनाव करब, है ना। और वह के लिए आपके आचार्य नरेंद्र देव वह भी अपने पंचे भाई संपर्क करके आप सबके माध्यम से उके उचित जानकारी ले सकत हैं, उके खरीद कर सकत हैं, है ना।
1: हाँ, उससे जो हमारे यहाँ रोग रोधी प्रजातियों के बीज का उत्पादन करके किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है तो किसान भाई हमारे विश्वविद्यालय से बीज प्राप्त कर सकते हैं।

0: अच्छी बात है, ये तो उनके बिया के अपन चुनाव और उनके खरीददारी के बाद भाई। लेकिन अगर पंचन का यह से संबंधित कोनो समस्या आवे तो आप सबके माध्यम से उनका कैसे भाई जानकारी मिल सकत है, कैसे बात बतकही हो सकत है, कैसे सुझाव मिल सकत है, का यह के भी कोनो आप सबके लगा तरीका है?
1: बिल्कुल, इसका किसान भाई हमारे फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

0: फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9956105265, तथा इसके साथ ही हमारे विश्वविद्यालय का टोल फ्री नंबर है, जो हमारे विश्वविद्यालय में एटिक है, उसके टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। ये तो बात रही उर्द मूंग लोबिया के, लेकिन एक अपन और खास फसल है भाई अरहर। तो अरहर की अगर बात की जाए तो यमन कौन मेर के रोग लाग सकत है और ओके नियंत्रण और ओके भाई कैसे का कुछ करे है?
0: अरहर में मुख्य रूप से तीन बीमारियां आती है, एक तो उखटा रोग, तना झुलसा रोग और बांझ रोग, ये प्रमुख रोग हैं। इसमें उखटा रोग में पहले पत्तियां मुरझा जाती हैं, नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। और बांझ तना रोग में, तना झुलसा रोग में पत्तियों पर पहले काले धब्बे, अनियमित आकार के काले धब्बे पड़ जाते हैं, तनों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है या बीज से टूट जाता है। ये अधिक नमी की और लगातार बारिश होती रहती है, उस दशा में ये रोग ज़्यादा प्रभावी होता है। बांझ रोग, इसमें हल्के पीले धब्बे बन जाते हैं तथा फूल एवं फलियाँ कम आती हैं, इससे उपज में काफी हानि होती है।
1: माने कि अपने सबका भाई यह से भी थोड़ा सा सजग रहे की जरूरत है, और का कुछ करे की जरूरत है यमन?
0: तो इनके नियंत्रण हेतु, एक तो उखटा के नियंत्रण हेतु हम 3-4 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं, क्योंकि भूम जनित रोग है। साथ ही हम बीज चार करें, कार्बेंडाजिम प्लस थेरम का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचारित करें उखटा के लिए, तथा झुलसा रोग के लिए मेटालेक्जिल से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें, तथा झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए मेटालेक्जिल प्लस कार्बेंडाजिम इस दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग में निजात मिलती है इस रोग से। और बांझ रोग, ये रोग मकड़ी द्वारा फैलता है, पिजन पी माइट जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा फैलता है। तो एक तो शुरुआत में कोई पौधा, रोगी पौधा दिखाई देता है तो उसको उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। साथ ही इसके नियंत्रण के लिए, जिससे फैले ना, तो मकड़ी नाशक एक दवा आती है, उसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, तो इस रोग से नियंत्रण मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है। हम समझे थे कि अपने पंचन के लिए एक सजगवाही के साथ साथ उनके कैसे पहचान करके यह रोग पर नियंत्रण किए जा सकते हैं के बारे में बतायो, का कुछ अपने पंचन का और अपने जोन आप खरीफ के दलहनी फसल लागत है उमन कुछ यह तरह के और अगर सावधानी की आवश्यकता है तो वो को बतावत चले।
0: बिल्कुल, किसान भाइयों से कहना चाहेंगे फसल की निगरानी करते रहें, उचित रोग की पहचान करके उचित दवा का प्रयोग करें, साथ ही खेत में जल भराव ना होने दें, तो इन सभी का ध्यान रखें, प्रमाणित बीज बोएं और उचित दवा का प्रयोग करें।
1: आपके बताई गई बात के अनुसार हम समझे थे कि अपन जो पंचे सुनिन है का और जब कुनिये अमल में लई हैं, निश्चित है उनका लाभ मिले। खरीफ दलहनी फसल में तमाम मेर के जो रोग लाग जाते हैं उनके पहचान करके कैसे नियंत्रण की जाए, एक बारे में डॉक्टर विवेक सिंह भैया, आप आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से आए के इतना बढ़िया जानकारी दियो। आप सह प्राध्यापक के पद पर पादप रोग विज्ञान विभाग पर वह अपने पंचन के लिए हमेशा सजग भी रहत हो और अपन फोन नंबर भी दियो है जिसके माध्यम से अपने पंचे यहमन कोनो समस्या आवे तो ओका भी आपसे फोन पर बात करके दूर कर सकत हैं। आपके यह जानकारी के लिए आकाशवाणी के वारी से हम आपका दई थे बहुत बहुत धन्यवाद। देखा भैया कितना निकी मेर से हम समझित है अपने सबका डॉक्टर विवेक सिंह से जो उनकी हम समझित है जानकारी मिली है, यह का सुने के साथ ही साथ थोड़ा मंथन करो और कोशिश करो आप सभी कि यमन कैसे अपने सबका अपने रोग पर नियंत्रण के सबसे पहले नियंत्रित तो तब हुए जब उनके पहचान हुए, और जब कोनो चीज के रोग जब भी होते पहचान हुए तो ओके दवा मिले, तो वैसे रोग मां जब आवे तो ओके पहचान हो जाए, ओके साथ साथ उमन ओके निदान हो जाए, तो हम समझते कि अपन फसल बच सकत है, उमन कोनो मेर के समस्या ना आए और समस्या अगर आए तो अपन देखो विशेषज्ञ भैया

0: लोगे यही बदे होते हैं कि अपने सबका फुरहर जानकारी देते हैं। साथ ही साथ कोशिश उनके यही रहा है कि हाँ भाई अपने पंचन के कोनों मेर से आर्थिक क्षति न हो पावे। साथ ही साथ उनके मंशा यही रहा था कि अपन जौन तकनीक आज बढ़ी है ओके ज्ञान मान लिया अपने सबका नहीं ना लेकिन उनके सबका अपने सबसे ज्यादा बाटे तो ओका अपने सबका वह सब देखो देते हैं। यही बदे बाजा के माध्यम से आप सबका भाई चाहे आकाशवाणी है चाहे दूरदर्शन है यह सब माध्यम से आप सबका वह जानकारी से भाई लवरेज की जात है ताकि आप सब जानो वह का अमल में लाओ अपने खेती में लगाओ और लोगन से साझा करो है ना। कोनो चीजे का अगर बढ़ावे है तो एक दूसरे से बताओ ताकि उमन कोनो और अगर भाई कोनो त्रुटि रह गई होए मान लो कोनो बात छूट गई होए तो वह मन भी अपने सबका ओका ठीक कीन जा सकते है। तो भाई अपने सब हम समझते हैं इतना सब अगर कीन जात है तो निश्चित होकर लाभ मिले और लाभ के लिए एक बात और है कि आपन खेती का आपन अगर चमकावे के कोशिश करबो तब भी आगे बढ़ सकत हो और यह बात का अपने सभी कही थे। साथ ही साथ आपन हमेशा भैया लोग भी कहा था और यही वजह देखो एक गौनई लाइन है जोन आपन वह भाई गौनई का राजबहादुर विश्वकर्मा भैया और उनके साथी भैया भी अपने सबका यही बात का चितवावा चाहते हैं। चलो सुना जाए उनके ये गौनई का
1: पछुआ की चले जा बयरिया लहरे।

भैया देखा, एक बात तो है कि अपन भाई अगर धरती हरी भरी रहे और साथ ही साथ अपने मन के भाव भी ठीक ठाक रहे और बाजार भाव भी अपने साथ रहे तो निश्चित है, मान के चलो कि अपन लाभ है। और नवीन गल्ला मंडी जनपद अयोध्या से बाजार भाव अपने सबका मिला बाटे वो कभी आपसे साझा की जाए कि चावल कामन 3,400 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, गेहूं दड़ा 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, मक्का पीली 2,370 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द दाल काली 9,700 रुपये प्रति क्विंटल, चना देसी 6,850 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर रही 7,360 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर की दाल 11,200 रुपये प्रति क्विंटल। ये तो रहा गल्ला मंडी के भाव। सब्जी के भाव कुछ एमएस से रहा, आलू सफेद 930 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज ललकई 4,140 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 2,200 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन 9,900 रुपये प्रति क्विंटल, तरोई 1,940 रुपये प्रति क्विंटल, अरवी रही 2,150 रुपये प्रति क्विंटल, बैंगन 1,910 रुपये प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 1,380 रुपये प्रति क्विंटल, अदरक 8,200 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 4,900 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी रही 1,850 रुपये प्रति क्विंटल, लौकी 1,420 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 2,800 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3,780 रुपये प्रति क्विंटल, केला पका 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, नींबू 6,550 रुपये प्रति क्विंटल, पपीता 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, सेब रहा 8,500 रुपये प्रति क्विंटल, अनार 7,050 रुपये प्रति क्विंटल, मौसम्मी 2,870 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़बट्टी 6,500 रुपये प्रति क्विंटल, चीनी रही 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। ये एक साथ ही साथ मौसम के हाल कुछ मेर से रहा। मौसम विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से मिला बाटे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और न्यूनतम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आर्द्रता अधिकतम 77% और न्यूनतम 64%।

0: प्रतिशत तक रही। हवा की गति 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिणी पूर्वी चली है। पूर्वानुमान यही है कि आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहेंगे और औसत तापमान सामान्य से 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहे के संभावनाएं। मतलब अपने सबका सजगवाही के जरूरत है और साथ ही साथ भाई यह बात की भी जरूरत है कि अपन कारभूत समय पे निपटाए के मने घर पहुंच जाए, उसके साथ ही साथ भाई अपने बाल बच्चन में पहुंच जाए, अपन खेती के प्रति अगले दिन का कुछ करे के ओके कार्य योजना बनावा जाए। और एक बात और जरूरी है कि भाई अगर कहूँ घर परिवार में कोनो व्यक्ति बीमार है, कोनो यह तरह के स्थिति है, असहाय है, तो उसके प्रति भी कुछ समय निकाल से उससे बात बात कही कीन जाए। अपन ही फर्ज है ना, अपन जिम्मेवारी है परिवार के हर सदस्य के मान सम्मान बना रहे, यह बात के भी ध्यान रखा अपने सबके लिए जरूरी है। साथ ही साथ समाज में हर व्यक्ति के यथोचित सम्मान करब और अपने सबका सम्मान पाऊ दोनों काम का भाई करब जरूरी है। तो यह सब चीज के लिए हमेशा अपन जोन भाव है उका वह मेर से रखो भैया। और हम समझित है कार्यक्रम में बहुत कुछ आप सबसे जोन रहा वो सब साझा कीन गए, फिर मेल मुलाकात हुई तब आपसे फिर बात हुई। तब तक के लिए प्रकाश का दें मती, जय हिंद।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी कृषक बंधु सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। आइए हम जानकारी दे दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। जी हां, आज रात 8 बजे आप सुन पाएंगे जापान में होने जा रहे एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर्स फॉर भारत, और आज रात 8:30 बजे सुनेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 पर महफिल गजल। आज रात 9:30 बजे आप सुन पाएंगे सरयू फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये तो थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब बातें कल की। जी हां, कल यानी बृहस्पतिवार 17 सितंबर 2026 को हमारी सभा आरंभ होगी रोज की तरह प्रातः 5:53 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन पाएंगे कल प्रातः 7:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वर संगम प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 8:15 पर। 8:30 बजे सुबह आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें आज की बात होगी जीवन के लिए सुरक्षित देखभाल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस विषय पर। कल 9:00 बजे सुनिएगा व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 बजे सरयू फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन पाएंगे कल दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 बजे फेसबुक श्रोताओं की फरमाइश हम पूरी करेंगे, कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा। कल दोपहर 2:00 बजे सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। 2:30 पर महिलाएं सुनेंगे अपने कार्यक्रम नारी जगत, जिसमें चर्चा होगी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे उम्मीद की सुबह विषय पर आधारित गीतों भरी कहानी। कल शाम 5:00 बजे कार्यक्रम युववाणी में होगा हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम।

युवा संवाद, जिसका विषय होगा ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा या आदत। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कल शाम 5:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत में तथा 6:30 पर कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के में। फिल्म गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे कल शाम 6:10 पर, रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन और 9:15 पर महफिल गजल। 9:30 सुनेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कल शाम 6:50 पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कल रात 8:00 आप सुनेंगे जापान में होने जा रहे एशियन गेम्स 2026 पर विशेष प्रसारण चीयर्स फॉर भारत। यह तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रातः 5:53 से रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इस वक्त आपसे रूबरू आपका रेडियो दोस्त RJ विवेक सोनी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:18 होने को है। कुछ ही पलों में कुछ ही संदेशों के पश्चात ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: आइए अपने जनपद की नदी को पहचाने और उसके संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं। ये सूचना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर किया 25,000 रुपए प्रतिमाह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।

0: सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
1: 25,000 रुपीस पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शंस। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15-25 वाले बैंड में थे, दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 7 अक्टूबर को शासन प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष के सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर कल से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कल श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
2: एक सेवा यात्रियों के रूप में फ्लैग ऑफ करके झंडी दिखाकर हमारे सभी अतिथिगण उनको विदा करेंगे और उसके बाद इस यात्रा पर जगह जगह पड़ाव रहेंगे और इस प्रकार से आगे यात्रा बढ़ेगी और दूसरे प्रदेशों से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरात पहुंचेगी। इसमें 20 दिन का समय लगेगा, 7 अक्टूबर तक के वडनगर पहुंचेगी यात्रा।
0: सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य में 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा, नमो सेवा अनकही कहानियां, सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा और सुशासन सेवा संवाद प्रमुख है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत कल सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया से होगी। शाम 7 बजे नागरिक अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलित कर सेवा और विकसित भारत 2047 के सामूहिक संकल्प से जुड़ेंगे। प्रदेश में प्रमुख विकास कार्यों और अवस्थापना परियोजनाओं से जुड़े चयनित स्थलों पर भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर टूल किट वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और अभियान के प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय के मार्गदर्शन में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन से लेकर जनपद स्तर तक त्रिस्तरीय समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों से जनजीवन में आए सकारात्मक बदलावों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान देश भर में कल से शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कल्याण मंडपम का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की पहचान पूरे देश में बदली है।
5: आज बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ

0: गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ, गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन का लाभ और युवा को नौकरी की गारंटी, लगातार ये सुविधाएं आज प्राप्त हो रही हैं।
1: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से संचालित चैरिटेबल ब्लड बैंक सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से बन रही है। श्री योगी ने कहा कि आज हम नए गोरखपुर, नए उत्तर प्रदेश और नए भारत का दर्शन कर रहे हैं।
0: एक नए गोरखपुर का, एक नए यूपी का, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, गोरखपुर में ब्याडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी के साथ इंसेफ्लाइटिस के उपचार के साथ साथ हर प्रकार की बीमारियों के उपचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। एम्स गोरखपुर में आ गया, गोरखपुर में आज दो मेडिकल कॉलेज, चार विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर संचालित हैं।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के कुल 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक शहरी के 11,508 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी एवं सहायक अध्यापक शहरी के पदों के लिए विज्ञापन के तहत 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 2,607 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगी। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत लखनऊ के चारबाग स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण आज से 12 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म 1 से 3 तक ब्लॉक लेगा। इस दौरान एयर कॉन्कोर्स का काम पूरा किया जाएगा। इस कारण 85 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर किया 25,000 रुपए प्रति माह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
4: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:31 हुए हैं। आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत रागों पर आधारित कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं राग छायानट के इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म जहांआरा से। इसे गाया है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत मदन मोहन का।

आइए अब सुनते हैं राग गुलकली पर आधारित ये गाना। इसे हमने लिया है फिल्म फ्री लव से। गाना लता मंगेशकर ने गाया है, असद भोपाली के बोल हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।
1: कहते हैं कि जब हौसलों में फौलाद और रगों में जीतने का जुनून हो तो कठिन से कठिन चुनौती घुटने टेक देती है। जापान के आइची नागोया की धरती पर आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में इसी की वानगी पेश करने के लिए भारतीय दल तैयार है। इस बार उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पिछली बार की तरह न सिर्फ पदकों का शतक पार करेंगे बल्कि मेडल्स के नंबर्स को उससे भी आगे ले जाएंगे। हमें इस बार सभी खेलों में न सिर्फ पदक बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। चार सालों की कठिन तपस्या और कड़ी चूर मेहनत से निकले पसीने की बूंदों से आची नागोया की जमीन को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग कुश्ती बॉक्सिंग तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास एक सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
2: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार

0: भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में, लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं वो रेसलिंग में हैं, और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे। आप देख सकते हैं दीपक पूनिया, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी अहलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं, जो कि 2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।
1: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं। आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल का बैरियर टूटेगा और हमारे खाते में स्वर्णिम सफलता भी आएगी?
2: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं, तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंघाल का बात करें तो वो 2-टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आई मीन पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पूनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफ़ी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
0: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापनीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा।
0: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे, साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही। सुजीत कलकल ने वहाँ पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता, और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है, इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है, जैसे दीपांशी फोगाट 50 केजी में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्राई

0: फाइनल्स में सबको सीजनड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपने दावेदारी पेश की है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी, पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 kg लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 kg एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है, तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा। और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है
1: जी। और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें, तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारीवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश भानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेंस ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेज सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेंस स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
0: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज़्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेते आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर, उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप

0: अमर, ईशा, एलाविनिल, तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगजो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे। अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
0: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना ये है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज्यादा मेडल लाए ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहाँ से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी हैं, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, ताई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेज़ हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ है, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
0: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहाँ से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुँच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफी है। पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे। हम लोग इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एले क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने का पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था और साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल यादव है जो कि नए प्लेयर है, लेकिन

0: वो काफ़ी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है, और यही वो फॉर्मेट है जहाँ पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है। तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आर्चरी के, क्योंकि दो तीन हैं, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं, उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है। ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे, तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। अब पर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जैसे लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 kg में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल। तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। और वैसे ही प्रिया खनगा से, ये नए टैलेंट है लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेन्स टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का, उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे, इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के 1 से 1 उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का जब गोल्ड मेडल जीता हो, जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफ़ी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा, 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए, इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफ़ी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैम्पियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 kg में, पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है, और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है।

0: है, तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है, हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम, वेलवन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेन्स टीम, अभय सिंह मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाज सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
2: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल। वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एलए ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
2: कंपटीशन काफ़ी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है एलए ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
0: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो, हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो, आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो। और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं।
1: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत कर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
0: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एलए ओलंपिक्स का ही रहेगा, मैं भी यही चाहूँगी कि मैं एलए ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
2: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स

0: मैं पटियाला में बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का अकोमोडेशन दिया ताकि वो एक्रोमेटाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहाँ पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में हैं। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: रहे थे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चेयर फॉर भारत।
1: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अभी आप सुन रहे थे जापान में होने जा रहे एशियन गेम्स 2026 पर विशेष प्रसारण चीयर फॉर भारत। न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत कुंजन।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804

जहाँ फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब आरंभ हो चुका है। इस वक्त आपसे रूबरू आपका रेडियो दोस्त आरजे विवेक सोनी। प्रोग्राम में पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विशाल मिश्रा, नक्श अजीज और अंतरा मित्रा की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब समाप्त होता है। न्यूज ऑन आईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार संध्या और उसके पश्चात ठीक 9:00 न्यूज़ एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। इसका 51,00,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति

0: विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में

0: प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने

कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना

0: लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district. And veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. The Prime Minister called for greater industry participation in skilling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence and quantum computing. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi said India should aspire to be among the early leaders in emerging technologies. He noted the significant progress made in the semiconductor sector and said the ecosystem is now moving from foundational efforts to a phase of greater scale and opportunity. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. He invited industry leaders to share suggestions on on policy and administrative measures and assure them that their inputs would be given due consideration in further strengthening the sector. He encouraged industry leaders to actively participate in the next phase of India's semiconductor growth. The CEOs appreciated the government's sustained efforts to develop India's semiconductor capabilities, noting that progress made in manufacturing, design, infrastructure and talent development. They expressed confidence in the opportunities emerging under

0: today launched the Swachhata Hi Seva campaign. The theme of this campaign is Swachhata Mein Sahbhag, Swachh Bharat Vikasit Bharat. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal, Kerala, Mahe, Tamil Nadu and parts of Northeast India tomorrow. The IMD has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan and Gujarat tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a partly cloudy sky tomorrow. Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. The Sensex gained 333 points to close at 74,336. The Nifty added 99 points to settle at 23,218. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Chiram Valley Maoist attack case in Bastar district, and veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. That is all in the news at night. Good night.
1: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब सुनिए गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल। कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपको सुनाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में और सुचित्रा सिंह की माफ कीजिएगा जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये मीठी सी गजल। लेकिन उससे पहले कुछ एक संदेश।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
6: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
0: मुझे तो मोतिया बिंद हो गया है।
2: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतिया बिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी। शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीवार्ड, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
3: क्या आपको तेज बुखार है? इसे नजरअंदाज ना करें।
2: तेज बुखार शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सही जांच और इलाज के लिए मिलें
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: मछली मंडी, नियावा, फैजाबाद, अयोध्या।
3: फोन करें 6386907006।
4: और अब सुनिए जसवंत सिंह की आवाज में ये गजल।

अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध।

0: कुछ एक संदेश। जगजीत सिंह की गाई इसी मीठी सी गजल के साथ ही गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल अब समाप्त होता है। न्यूज़ ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। आप सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या।

0: से, या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या। आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोक गीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: जी हां, संदेशों के पश्चात एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या लेकर। जी हां, हमारी फोन लाइन्स ओपन हैं 7376 80 40 90। इस वक्त आपसे रूबरू आपका रेडियो दोस्त आरजे विवेक सोनी। और देखिए, इस दौरान हमारे साथ कोई लाइन पर हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपना नाम बताएं।
3: सर, मेरा नाम पुष्पा यादव।
2: जी, कहाँ से बोल रही हैं?
3: पुष्पा यादव, अयोध्या जिला।
2: पुष्पा जी, क्या करती हैं आप इसे?
3: सर कुछ नहीं, बस हम हाउस वाइफ हैं।
2: हाँ हाँ, हमको ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं, प्रोग्राम में गीत कौन सा सुनेंगी पुष्पा जी?
3: सर, जिगर फिल्म का तुझे हंसते बाहर आ जाए।
2: अच्छा अच्छा, और परिवार में कौन कौन है आपके?
3: परिवार में सर मेरे 5 बच्चे हैं।
2: जी,
3: पति हैं।
2: हाँ हाँ, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में।
3: सर, बच्चे सब पढ़ाई करते हैं।
2: हाँ हाँ, बड़े हैं कि बच्चे भी छोटे हैं?
3: जी जी, नहीं छोटे नहीं है, सब बीए है और इंटर पास कर चुके हैं।
2: हाँ जी, देखिए आप बातचीत के दौरान हमने देखिए वो जिगर फिल्म का फोल्डर तो खोला है, लेकिन गाना आप कौन सा बता रहे थे एक बार फिर से बताएंगे तो थोड़ा सा खोजने में आसानी होगी। प्लीज
3: जी, तू जो हंसते बाहर आ जाए।
2: फिलहाल ऐसा तो कोई हमारे इसमें है नहीं। हम एक लोग बरसों जुदा होके जीते हैं, ये वाला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही हाल है हमारा और हमारे लिसनर्स का एक दूजे के बिन, कि हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और धड़ाधड़ कॉल्स पर कॉल्स आने लगती हैं। और देखिए, इस दौरान एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, ये बातें करते हैं उनसे और जानते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो, प्लीज़ अपना नाम बताइए।
1: हाँ सर, हमारा नाम रमेश वर्मा है।
0: हाँ वर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सर नवाबगंज से बोल रहे हैं।
0: हाँ ठीक है, और क्या करते हैं वर्मा जी, गाना कौन सा सुनेंगे? ये दो चीजें एक साथ फटाफट बता दीजिए।
1: गाना सर गदर टू का गाना सुनाइए।
0: गदर टू का गाना हम सुनाते हैं, आप ये बताइए करते क्या हैं?
1: हम काम करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, कौन सा काम करते हैं?
1: यही कंस्ट्रक्शन लाइन का।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और परिवार में कौन कौन है, कुछ बताएंगे अपने बारे में, परिवार के बारे में?
1: परिवार में मम्मी है, पापा है,
0: हाँ हाँ जी। क्या करते हैं माता पिताजी आपके?
1: सब घर पर ही रहते हैं, अपना घर।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का सुपरविजन करते हैं, आपको गाइड करते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने बातचीत जी, किस्मत की बात है और हमारी भी किस्मत है। देखिए, आपसे बातचीत हो रही है और आपने गोंडा से कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म गदर टू का ये प्यारा सा गीत हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय कीजिए इस नगमे को और फिर से कॉल कीजिएगा। थैंक यू।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा।
1: 20 सितंबर रविवार प्रातः 8:30 से 9:30 तक आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से सुप्रसिद्ध सूर्यकुंड मेला तथा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
0: सूर्यकुंड मेला का आंखों देखा हाल और स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान के साथ ये विशेष कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा। 20 सितंबर प्रातः 8:30 से FM 101.9 मोबाइल सेट न्यूज ऑन एयर और वेब्स OTT पर।
1: आकाशवाणी अयोध्या के इस अनूठे कार्यक्रम से जुड़े और भगवान सूर्य को समर्पित लोक संस्कृति के इस महान पर्व पर रेडियो के माध्यम से पुण्य लाभ प्राप्त करें।
2: संदेशों के बाद हम हाजिर हो चुके हैं लेकर अपना प्यारा सा प्रोग्राम हेलो अयोध्या सजीव फोन इन। जी हाँ, इस दौरान एक कॉलर और हमसे जुड़े हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो, प्रोग्राम में आपका स्वागत है, प्लीज अपना नाम बताइए।
3: पल भर की तन्हाई भी आपको नसीब ना हो, पल भर की
2: जी
3: तन्हाई भी आपको नसीब ना हो,
2: वाह वाह,
3: कोई भी गम आपके करीब ना हो
2: जी,
3: रब आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दे कि गमों का सही नामो निशान ना हो।
2: क्या बात है, गजब। अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए।
3: पालडा नाका इंदौर से आपका दोस्त मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ सर।
2: क्या बात है मोहम्मद रफी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिल्कुल आपने याद दिला दी पुराने वाले सुरों के सम्राट मोहम्मद रफी जी की, है ना। चलिए, प्रोग्राम में आपने कैसे कॉल किया है, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं, कुछ बताइए फरमाइश अपनी।
3: गाना भी उन्हीं की आवाज में है, मोहम्मद रफी साहब की।
2: हाँ,
3: उनका नाम है जानवर।
2: हाँ जी।
3: और गाने के बोल है, लाल सड़ी मैदान सड़ी क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी।
2: क्या बात है, तो लाल छड़ी मैदान खड़ी, ये तो गाना हमारे पास फिलहाल जानवर फिल्म का नहीं मिल रहा है, और कोई अगर फरमाइश हो तो बताएं।
3: स्वर्ग से सुंदर का मिल जाएगा।
2: स्वर्ग से सुंदर भी हम कोशिश करते हैं, और बताइए अपने बारे में कुछ।
3: सिलाई का काम करते हैं सर
2: हम। जी क्या बात है, तो दिन भर तो खुला रहता होगा रेडियो, नहीं?
3: अरे सर, रेडियो अगर ना साथ में हो तो भी समझे कि दिन सुना सुना लगता है।
2: ठीक है, और जो आपके जी जी, अच्छा वो जो कस्टमर्स आते हैं वो भी फिर आपके साथ ही सुनते होंगे, फिर आपकी तो उसकी बहुत दाद देते होंगे ना, कि हाँ भाई गजब का टेलर मास्टर है ये, है ना, दिन भर गाना भी सुनाते हैं, सिलाई भी करते हैं, नहीं?
3: चलिए, तारीफ होती सर हमारी।
2: हाँ जी
3: जी, बहुत तारीफ करते लोगों।
2: हाँ यही बात है। अच्छा, तो आपने कैसा मोबाइल वाला ट्रांजिस्टर वो रखा है, मोबाइल से ऐप से सुनते हैं या वैसे ही सुनते हैं?
3: नहीं, मोबाइल से सुनते हैं।

0: मोबाइल से भी बढ़िया आवाज आती है ना फर्स्ट क्लास ऐप से?
1: जी, बढ़िया।
0: चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या कोई स्पीकर वगैरह भी अरेंजमेंट कर रखा है, सिर्फ मोबाइल से ही एंजॉय करते हैं?
1: सर ज्यादा क्या है कि आवाज ज्यादा तेज हो जाती है, तो मोबाइल ही काफी, अगर कम पड़े तो अपन उसमें।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिल्म स्वर्ग से सुंदर का यह प्यारा सा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में जा रहा है आप तक, और गीत को आप एंजॉय कीजिए। हाँ जी,
1: आपके बरस बरसों के बाद प्यार करने का मौसम आया, ये गाना इसी का है।
0: अच्छा जी, बिल्कुल वही वाला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, प्यार करने का मौसम आया। ठीक है,
1: मन की पहचान ली
0: वो हमने पहले ही प्ले कर दिया, आप एंजॉय कीजिए इस गाने को। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जी हजूर, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरयू फोन इन। हेलो अयोध्या, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से जुड़ते हैं एक और कॉलर के साथ और बात करते हैं उनसे। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं वो। प्लीज अपना नाम बताइए। हेलो अयोध्या कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हेलो अयोध्या
0: जी, प्लीज अपना नाम बताइए।
1: क्या बात है जी, बिल्कुल कार्यक्रम का नाम भी गजब है। हेलो अयोध्या,
0: क्या बात है।
1: और हमारा लग गया फोन और हम हो गए जिज्ञासा तो बन गई योद्धा।
0: क्या बात है। बताएं अपना परिचय दीजिए।
1: नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, गांव रामनगर, तहसील बमोरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
0: जी, गाना कौन सा सुनेंगे सबसे पहले ये बता दीजिए तो हम।
1: विवेक सर बात कर रहे हैं ना।
0: जी, मैं विवेक सोनी बोल रहा हूँ, बताएं।
1: जी जी जी, बिल्कुल सर, आपका प्रोग्राम करने का अंदाज बड़ा अच्छा लगा मुझे। और गाना सुनना है फिल्म दिल है कि मानता नहीं, और वाकई में हमारा दिल ये है कि प्रोग्राम सुने बिना मानता ही नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, तो जान लीजिए कि एक एनर्जी डोज है ना।
1: हाँ, एनर्जी डोज है। और
0: क्या बात,
1: मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ
0: जी।
1: ये परसों की बात है।
0: हाँ,
1: तो क्या हुआ था, मैं ड्यूटी से आया तो थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, थोड़ा सा तेज बढ़ गया
0: जी।
1: तो जब प्रोग्राम आया ना
0: जी,
1: तो सिर दर्द गायब ही हो गया।
0: बिल्कुल ऐसा ही होता है म्यूजिक।

0: ऐसी चीज है कि उसमें आपका बहुत कुछ हीलिंग पावर होती है म्यूजिक में, संगीत में, और खासकर
1: हमारे दोस्त है राहुल जी वेन्यू से, उन्होंने बताया था देखना नरेश जी आप जैसे ही अयोध्या का प्रोग्राम आएगा आपका सिरदर्द दूर हो जाएगा।
0: क्या बात है। तो नरेश जी भी आप वो आपके मित्र जो हैं अभी वो भी आपके साथ हैं क्या?
1: हाँ वो भी कार्यक्रम में कॉल लगा रहे हैं। हाँ और उनका भी लगेगा।
0: हाँ, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आपने बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्यारा सा गीत फिल्म दिल है कि मानता नहीं से
1: हमारे भाई गजराज लोधी जी भी सुन रहे हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी स्वागत है और एंजॉय कीजिए गाने को। आपने जो फरमाइश की आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से कॉल कीजिएगा। थैंक यू।

0: फिर सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 8303991111 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: जी हाँ संदेशों के पश्चात हम फिर हाजिर हैं प्रोग्राम के साथ और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर। आइए बात करते हैं उनसे। जी हेलो प्लीज अपना नाम बताइए। हेलो हाँ हमें लगता है हेलो जी लगता है कॉल किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई है और उनसे बात नहीं हो पा रही है। फिलहाल प्रोग्राम

0: हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार जी, प्लीज अपना नाम बताएं।
1: सर मैं आरिफान मंसूरी बात कर रहा था।
0: कहाँ से बोल रहे हैं मंसूरी साहब?
1: सर मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा था। सर
0: वेरी गुड। आज मध्य प्रदेश के बहुत सारे श्रोताओं ने कॉल किया है और उनकी सबकी कॉल लग भी गई है ना, इत्तेफाक की बात है।
1: सर सब कॉल सुनते हैं सर, आपको प्रोग्राम क्या अच्छा लगता है, रैम भी के बहुत सुनते हैं और सभी फोन लगाते भी हैं सर।
0: जी जी, और लग भी जाता है ना।
1: सर मेहनत लगती है, अब देखिए ना मैं कब से लगा रहा हूँ, 20-25 मिनट में रेगुलर होगा, लगाते लगाते अब जाके लगाया। ऐसा नहीं है एकदम लगाया अपन और लग गया।
0: हाँ जी बिल्कुल सही बात है, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है ना।

0: अपन और लग गया।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बात है, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है ना, कीप ट्राइंग और उसके बाद में सक्सेस तो मिलती है अल्टीमेटली, है ना। अच्छा ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं मंसूरी साहब?
0: सर आप मुझे सुना दीजिए, फिल्म का नाम हिमालय की गोद में।
1: हिमालय की गोद में, चलिए हम कोशिश करते हैं कि ये गाना मिल जाए, हिमालय की गोद में फिल्म का फिल्म मिल जाए, उसके बाद में जो गाना आप चाहें वो गाना मिल जाए। फिलहाल ये बताइए आप करते क्या हैं?
0: सर मैं टेलर हूँ और अभी इस वक्त सिलाई कर रहा था और बीच बीच में ट्राई कर रहा था और सर मैं काम भी कर रहा, दोनों काम एक साथ कर दिया था सर मैं।
1: बिल्कुल सही बात है, ये एक जो रेडियो का हिसाब किताब है, रेडियो में एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम को करते हुए एंजॉय कर सकते हैं, रेडियो आपको कि आपके किसी काम में रुकावट पैदा नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात है ना। अभी आप वही टीवी
0: नहीं करता, बल्कि अभी नरेश जी का फोन आया तो कह रहे थे ना सर दर्द दूर हो जाता है।
1: हाँ
0: तो सर इसमें अगर आदमी डिप्रेशन में भी है, अगर टेंशन में भी है या कुछ थोड़ा गुस्सा भी है और अगर वो रेडियो सुन रहा है तो कोई बात ऐसी आ जाएगी कि वो उसका मन जो है हल्का हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ये प्रोग्राम आप ही के लिए तो है, आकाशवाणी आप ही के लिए बना हुआ है और आप इससे इतना प्यार, आप श्रोताओं का प्यार बना रहता है, आप कॉल करते हैं, हम गाने सुनवाते हैं, आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और इसी तरह सब एंटरटेनमेंट का सिलसिला चलता जा रहा है ना।
0: जी सर
1: हाँ ठीक है, तो गाना बताइए, आपने हिमालय की गोद फिल्म मिल गई हमको और गाना बता दीजिए कौन सा सुनना चाहते हैं।
0: गाने को बोले चांद सी महुआ हो बाहों मेरी, ये सब मैंने सोचा था।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया मुकेश जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत पहुंच रहा है आप तक, एंजॉय कीजिए इस प्यारे से नगमे को, कॉल करने के लिए बहुत बहुत।
0: हमारे दो मित्र हैं सर, उनका नाम ले दें।
1: बिल्कुल ले लीजिए सर, आपका प्रोग्राम है, मित्र लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी उनका भी स्वागत है प्रोग्राम में, एंजॉय कीजिए आप सब मिलकर के प्यारे से गीत को, फिल्म हिमालय की गोद में से।
0: जी सर थैंक यू सर,
1: वेलकम।

0: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंकें, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। इस वक्त आपके साथ आपका दोस्त है आरजे विवेक सोनी, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं उनसे। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी अपना नाम बताएं।
3: विवेक सर नमस्ते।
2: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए।
3: सबसे पहले आपको मेरा सने भरा नमस्कार सर। मैं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू पिलानी शहर राजस्थान से राहुल बात कर रहा हूँ।
2: राहुल जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं राहुल जी, कुछ बताइए अपने बारे में।
3: सर मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर रखा बीएड एमए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ।
2: वेरी नाइस।
3: और मैं खेलता भी हूँ।
2: क्या खेलते हैं सर?
3: फॉलो भी करता हूँ।
2: क्या खेलते हैं?
3: क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेल लेता हूँ।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया।
3: रनिंग करता हूँ डेली, सुबह वॉकिंग करता हूँ।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप हेल्थ के प्रति बहुत ही कॉन्शियस हैं।
3: वर्क भी करता हूँ, कठिन मेहनत भी करता हूँ।
2: अच्छा, वो किस सेंस में?
3: क्या सर?
2: मतलब कठिन मेहनत जो आप करते हैं, कैसे, पढ़ाई के सेंस में या फिजिकल वर्कआउट करते हैं?
3: पढ़ाई का तो है ही, इसके अलावा मैं फिजिकली भी करता हूँ।
2: अपने आप को फिट और स्ट्रांग रखने के लिए ना?
3: क्या कह रहे हो?
2: हम कह रहे हैं अपने आप को फिट और स्ट्रांग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए।
3: हाँ
2: हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है।
3: जी जी। और मैंने अभी कपास बो रखा है, तो कपास खेती का काम भी करता हूँ।
2: अच्छा, वहाँ पे कपास होती है राजस्थान में?
3: हाँ होती है, हमारे कपास को यहाँ दिल्ली एनसीआर की तरफ नरमा बोला जाता है सर, हरियाणा की तरफ।
2: अच्छा अच्छा, जी जी जी, चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और राजस्थान वैसे माना जाता है कि थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत कुछ ऐसा प्रदेश है, ऐसा टेरेन है जहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है ना, वहाँ रेगिस्तान है, तो वहाँ पर कपास जैसी फसल का उगना अपने आप में भी एक है ना। लेकिन आप लोगों ने मेहनत की है, आपने उस
3: वो पहले की बातें हैं। राजस्थान में ये मानो जो रेगिस्तान बता रहे हो ना, रेत हाँ वो बिल्कुल हाँ गायब हो गई। पिछले काफी सालों से काफी बारिश हो रही है। चलो अब की बार तो अल नीनो का प्रभाव हुआ है, इस वजह से बारिश नहीं हुई। लेकिन हमारा जो असली रेगिस्तान है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिले आते हैं, उनमें भी ये मानो पानी का दोबारा से उन पानी का दोबारा देखने को काफी पानी मिला है सर।
2: क्या बात है, तो ऊपर वाले की मेहरबानी उस मतलब कहा जाए तो उष्ण प्रदेश पर भी लगातार चल रही है ना।
3: और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, ये बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली की तरफ है एकदम।
2: अच्छा,
3: राजस्थान तो पूरा इधर रह जाता है।
2: जी,
3: मैं
2: जी,
3: तो
2: जी।
3: ये मानो इधर ही हूँ एकदम।
2: ओके जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। जो लोग भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे आपके माध्यम से,
3: हमारे ये राजस्थान की कला संस्कृति वेशभूषा खान पान।
2: जी बिल्कुल,
3: आपने सुना होगा दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी चूरमा।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत अच्छी बात हुई, आप मन कह रहा है कि आपसे

0: बातें करते जाएं, लेकिन गाना भी सुनवाना है तो गाना अपनी फरमाइश बता दीजिए आप।
1: मूवी का नाम है रावण
0: जी,
1: गाने बोले हैं दिलदारा दिलदारा
0: दिलदारा दिलदारा, क्या बात है। तो ये गीत हम अब तक भेज रहे हैं, एंजॉय कीजिए।
1: विवेक सर आपको डेडिकेट, अजीत सर को, विवेकानंद सर को, इसके अलावा अनु पांडे को, रिवांशी को, और इसके अलावा रिंकी पिंकी को, और जितने भी श्रोता सभी।
0: सर एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि
1: सर,
0: जी बिल्कुल थैंक यू है, और आपने कॉल कट कर दिया है, लेकिन हम श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे कि जिस गीत को बनाने में, जिस गीत को गाने में हमारा कोई मेहनत नहीं होती, हमारा कोई योगदान नहीं होता, उसको हम किसी दूसरे को डेडिकेट नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। दूसरे का क्रेडिट अपने आप क्यों लें, है ना। ये एक कहा जाता है एथिकल क्वेश्चन बनता है कि दूसरे ने जो कुछ बनाया उसको हम अपने ऊपर डेडिकेट करके उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं तोड़ सकते, और क्रेडिट तो हम ले ही नहीं सकते, लेना भी नहीं चाहिए, ईमानदारी तो यही है। फिलहाल राहुल जी राजस्थान से बात कर रहे थे, और उनकी फरमाइश का गीत फिल्म रावण से हम भेज रहे हैं उन तक और आप सब तक। इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, ये बात करते हैं। हेलो।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं।
1: श्रीवास्तव, जनपद अयोध्या।
0: जी
1: जी,
0: क्या करते हैं?
1: हम खेती करते हैं।
0: खेती करते हैं। इस वक्त आपने अपने खेतों में कौन सी फसल बो रखी है?
1: हमारे खेती में धान है और ये जानवर की चरी है सर।
0: अच्छा जी, चलिए, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में?
1: फिल्म का नाम है दीदी है तो ऐसी
0: जी।
1: गाने के वो है फूल गुलाब का।
0: फूल गुलाब का। परिवार में कौन कौन है, कुछ परिवार के बारे में भी बताएं।
1: हमारे भाई है, हमारी दीदी है, लड़के है, बिटिया है, भतीजी है।
0: जी, सारे लोग मिलकर के प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त?
1: नहीं सर, सब लोग तो आराम से लेते हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई लेटा है, कोई सो रहा है, हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, आप इतने दिल से प्रोग्राम सुन रहे हैं और बड़ा आनंद आ गया सुन करके। और जी जी, तो ये प्यारा सा गीत फिल्म बीवी हो तो ऐसी।

0: जी हाँ, प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और प्रोग्राम लाइव फोन इन चल रहा है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, प्रसार भारती के ऐप पर 101.9 एफएम के जरिए आप सुन रहे हैं। और हमारे साथ कॉलर एक और जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं उनसे क्या कह रहे हैं वो। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए।
1: बताए थे सर आपसे, हम नवाबगंज से बोल रहे हैं
0: विद्या सिंह जी। गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: ठीक है।
0: अच्छा जी,
1: अपनी पसंद का कोई सुना दीजिए। हाँ, लेकिन नए में सुनाइएगा।
0: अच्छा, गाना कौन, मतलब गाना तो आपने बता दिया कि अपनी पसंद का सुनाना है, क्या करती हैं वैसे आप?
1: कुछ नहीं, हाउसवाइफ
0: हैं। अच्छा जी, परिवार में कौन कौन है?
1: मम्मी है, पापा है, देवर है, जेठा है। हाँ। और बच्चे हैं।
0: आकाशवाणी के कौन कौन से प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे लगते हैं जो लगातार आप सुनती हैं?
1: जैसे हम टाइम जिस पाते हैं
0: वही
1: सुनते हैं कि तो ये हेलो अयोध्या सुनते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जो सुबह आता है।
0: हाँ हाँ,
1: वो सुनते हैं
0: जी।
1: मतलब जितने प्रोग्राम हैं जब टाइम पाते हैं तब सारे सुनते हैं
0: जी। बड़ी अच्छी बात है। और तो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कुछ उसमें नॉलेज भी मिलती होगी, एंटरटेनमेंट तो होता ही है ना
1: जी।
0: चलिए, आपने बातचीत की बहुत
1: मिलता है, तभी सुन पाते हैं, थोड़ा काम में अगर बच गए तो नहीं सुन पाते।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, जब मौका मिलता है आदमी तभी एंटरटेनमेंट की तरफ आदमी जाता है, थोड़ा सा जब एनर्जी डाउन होती है तब आदमी म्यूजिक की तरफ जाता है, एंटरटेनमेंट करना चाहता है कि नहीं?
1: वैसे तो सर मुझे गाना गाने का शौक शुरू से ही है, गाने का शौक हम बहुत अच्छे रखते हैं।
0: अच्छा, आप गाती भी हैं
1: जी?
0: अच्छा, तो अगर कुछ गुनगुनाना चाहें तो गुनगुना सकते।

0: सकती हैं ऑन एयर?
1: ये दो हम 2 महीने से मिला रहे हैं, आपका फोन ही नहीं लग रहा।
0: हाँ तो आज देखिए लग गया ना, आपने दिल से मिलाया, लग गया फट से। 1 महीने 2 महीने से जो आप मिला रहे
1: हैं, बहुत खुश हैं।
0: अच्छा जी, हम भी बहुत खुश हैं आपसे बातचीत करके। और आप प्यारा सा गीत हम आपको अपनी पसंद का भेज रहे हैं आप तक, एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, फिर से कॉल कीजिएगा। थैंक यू,
1: ठीक है सर, नमस्ते
0: नमस्ते जी।

0: जी हाँ, सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 FM और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, ये बात करते हैं उनसे। हेलो, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते जी, अपना नाम बताइए। कहाँ से बोल रही हैं? सन्नू जी,
1: रामपुर हलवारा से।
0: अच्छा, गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुना,
0: दिल है। इतना सैड गाना क्यों सुनना चाहती हैं आज?
1: मन कह रहा है सुनने को ना।
0: मन कह रहा है आपका सुनने को? अच्छा ठीक है, हम आपको निकाह फिल्म का गाना सुनवाते हैं। और परिवार में कौन कौन है?
1: सब परिवार में सब है, मेरे भैया, मेरे भाभी, मम्मी पापा, सब लोग हैं।
0: जी, सब लोग गाना यही गाना सुनना चाहते हैं कि सिर्फ आप सुनवाना चाहती हैं सबको?
1: नहीं सर, मैं सिर्फ सुनना चाहती हूँ।
0: सिर्फ आप सुनना चाहती हैं? अच्छा चलिए ठीक है, हम आप गाना सुनाएंगे। वैसे आप करती क्या सनो जी?
1: सर पढ़ाई करती हैं।
0: किस क्लास में पढ़ रही हैं?
1: 9th।
0: अभी 9th में पढ़ रही हैं और इतना सैड गाना सुनना चाहती हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं,
1: आप मत पूछिए ना।
0: हम मत पूछें? अच्छा ठीक है, आप नहीं बताना चाहती हैं, कोई बात नहीं है, हम नहीं पूछते हैं। आपने फरमाइश की है तो आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। ये प्यारा सा गीत फिल्म निकाह से आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: जी हाँ, हंसी और खुशी और इसके साथ आंसू जीवन के पहलू हैं, और निश्चित रूप से दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता ही है। तो फिलहाल ये गाना अभी आप सुन रहे थे, और इस दौरान हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, ये बात कर लेते हैं उनसे क्या कह रहे हैं वो, किस मिजाज का वो गीत सुनना चाहते हैं। हेलो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए। हेलो जी हाँ, हमें लगता है कि उनकी कॉल डिसकनेक्ट हो चुकी है, और हम जी हाँ, कॉल के डिसकनेक्ट होते ही इतना प्यार है, इतना जोश है कि तुरंत एक कॉल और हम तक पहुंच गई। जी प्लीज़ अपना नाम बताइए।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी बताइए, अपना नाम बताएं।
1: अमरनाथ।
0: अमरनाथ जी, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? प्रोग्राम में टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से बता दीजिए।
1: सर एक गाना सुना दो, गणपति बैठे हैं, गणपति का गाना सुना दो सर।
0: गणपति जी का गाना आपको सुनाना, फिल्म का नाम कोई बताएंगे?
1: फिल्म का नाम सुनाए बताए सकी साहब।
0: हाँ तो और कोनो गीत आप बताए देते तो हम सुनवाई देता आपका तुरंत है। अच्छा ठीक है, हम ठीक है, आपकी फरमाइश पर हम ये प्यारा सा गीत गणपति बप्पा की सेवा में पेश कर रहे हैं। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

गणपति बप्पा की स्तुति करता ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और इसी गीत के साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या से अपने इस दोस्त आरजे विवेक सोनी को दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार रात्रि के 10:30 हुए हैं। आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश